मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर और एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 9वीं तिथि, तदनुसार 26 मई 2026। समय प्रातः के 5:58 और 58 सेकंड हुए हैं। अब प्रारंभ होते हैं हमारे आज के प्रसारण।

0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर और एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं अब हिंदी समाचार प्रसारित होंगे। समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचारों के ठीक बाद एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्स पर हम रिले करेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशीमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताज़ा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई SOP जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, PPE किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर वन मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाश,
0: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है चिंतन। अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम और तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अभी आप सुन रहे थे चिंतन। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

हे ईश्वर, आप तो अविनाशी हो, अंतर्यामी हो, कण कण में समाए हो। आपके सगुण और निर्गुण हर रूप को हमारा प्रणाम।

अपने प्रभु के प्रति हमारी श्रद्धा अखंड बाती जैसी होनी चाहिए, ताकि वो हमें वो प्रकाश दे जो हमारे भीतर ही नहीं बल्कि आसपास भी उजाला बिखेर दे।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान से आज का प्रसंग।

पतित पावनी गंगा का सुहावना तट। अशोक वृक्ष के नीचे कुश और कोमल पत्तों की साथरी पर श्री राम तथा सीता रात्रि विश्राम कर रहे हैं। प्रभु को धरती पर शयन करते देख निषादराज का मन विषाद से भर जाता है। लक्ष्मण ने निषादराज की मनोदशा भांप उन्हें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उपदेश दिया। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। भले बुरे का योग, मिलन और वियोग, श्रुता, मैत्री तथा उदासीनता भ्रमजाल हैं। जन्म और मरण, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल इस जगत के जंजाल हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कान से आज का प्रसंग। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि की बातें।
1: किसान बहनों भाइयों, राम राम। कृषि की बातों में जिक्र करेंगे बेल वाली सब्जी फसलों की देखभाल। किसान भाइयों, सब्जी फसल हम कोई भी उगा लें, उसकी अगर सही प्रबंधन कर लें, सही देख रेख कर लें, यानी जैसे खाद का है, पानी का है, निराई गुड़ाई का है, और बाज़ार में भेजना है उसका वर्गीकरण करके फलों का, और देखो उससे पहले बढ़िया बीज लेना और उसकी किस्मों का पता करना, कितना खाद डाला, कैसे उसकी बिजाई कर, सारी चीज़ें हम करके चला तो इसमें बहुत ज़्यादा फायदा है। जो परंपरागत खेती करा है उससे तो कई गुना ज़्यादा फायदा हो जाए और हर रोज़ काम पाया रहे हमने। तो इसमें हमने खासकर जो कद्दू जाती या बेल वाली सब्जियाँ बात करा तो उसमें तो हमने और भी ज़्यादा फायदा उसके। और कई भाई तो ये देखा भाई, जो सर्दियों में अगेती लगा लें, वैसे तो इसका सब्जी का दही तो है, अगर या तो अगेती या पछेती बहुत ज़्यादा फायदा देती है। तो जिन भाइयों ने सर्दियों में लगा लिए थे अपने पॉलीथिनों में, उन भाइयों ने अपने फिर फरवरी में वो लगा लिए, अपने ज़मीन में लगा लिए, तो वो फसलें अब खूब आमदनी देने लग रही है। तो ये एक भैया यूँ कह सकें बहुत जागरूक किसानों की बात है। तो इस महीने भी अमीन की बिजाई वैसे कर सका है, इसमें अच्छी गोबर की गली छड़ी खाद मिला लें 6 टन के लगभग, और 15 किलो इसमें यूरिया, 10 किलो फास्फोरस और या 60 किलो इसमें यूँ कह सकें सिंगल सुपर फास्फेट, और 16 किलोग्राम रोटा पोटास इसमें लेकर और खेत में मिलाकर अच्छी तरह इसकी कर लें। और आगे की फसल की जिक्र करें इसमें फिर अपना ये कर सकें लाइना में बिजाई करें और डोली बनाकर डोली के दोनों लोगों से बिजाई कर लें और फिर पूरा का पूरा उसमें फासला भी रखें ताकि जो बेल है ना वो अच्छी तरह फले फूल और बढ़िया फूल दे। बात इसमें जो हमारी फसल खड़ी है उनके लिए बात करें तो इसमें एक तो फल छेदक मक्खी आ जाए वो बहुत ज़्यादा नुकसान करे, या यूँ कह इसका फल इसमें काणे हो जाए उसमें अंडे दे दे और फिर वो है वो बाजार में बेचने लायक नहीं रहते, यानी ग्राहक उनको नहीं लेता। तो इसमें हमने रोकथाम के लिए 400 मिलीलीटर मेलाथियान है, 50% ताकत की दवाई है, या और इसमें साथ में ये ध्यान जरूर रखें कि 1.25 किलो गुड़ और मिला लें और इन दोनों चीज़ों मिलाकर 250 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर हम इसका छिड़काव कर जाए तो जो फल छेदक मक्खी है इस टाइप पीछा छूट जाएगा। एक लालड़ी और है, ये भी काफी नुकसान कर रहे हैं, इसकी रोकथाम भी करना बहुत जरूरी है और इसके लिए हमने 25 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन है, 25% ताकत की आ रहेगी, या एक और दवाई ले इसका फेनवल रेट ये, और इसको दोनों में से एक कौन सी दवाई ले करने, जैसे फेनवल रेट है ये 30 मिलीलीटर है और 20% ताकत की, 100 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर छिड़काव कर जाएंगे। एक बीमारी और आ जाए इसमें सफेद चूनी रोग का नाम तो जाना उसने, काफी नुकसानदायक हुई और इसकी रोकथाम भी करना बहुत जरूरी है। इसकी रोकथाम के लिए ये बताया जाए 8-10 किलो हमने बारीक गंधक है उसका धूड़ा कर देना है, त्यां पर हर जगह धूड़ा दूर देना है। हाँ, खरबूजे पर नहीं करना, खरबूजे के लिए अलग से दवाई है, इसमें करना हमने 500 ग्राम घुलनशील गंधक है सल्फेक्स है, ये 200 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर छिड़काव कर देंगे। तो इसमें जो ये सफेद चूनी रोग है खरबूजे में नहीं आएगा, यानी इसमें खरबूजे में हमने 500 ग्राम घुलनशील गंधक है सल्फेक्स के नाम थे, ये 200 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करना है, सफेद चूनी रोग है इस पीछा छूट जाएगा और हमारी फसल बढ़िया हो जाएगी। तो इसमें भाइयों इब हमने ये देखना है जो बिजाई इस टाइम भी हम कर सका है उसमें जैसे घिया है, करेला है, तोरी है, टिंडा है और खीरा के भी कर सका है। तो इसमें घिया, करेला, तोरी और टिंडा इनका तो बीज लेना है हमने 1.5 से 2 किलो 1 एकड़ के लिए, और खीरे का बीज रहेगा 1 किलो 1 एकड़ के लिए, और जो ये बरसात की फसल है यानी खरीफ की फसल के लिए बहुत बढ़िया समय है, इसमें आप खेत की अच्छी बायसमारी करके ने और फिर उसके आप बिजाई कर सको। हाँ, ध्यान ये रखें नाली बनाओ, नाली के दोनों सिरा हमने ये लगानी है, वो समतल जमीन पे नहीं लगानी, डोलिया पर लगानी हमने, चाहे इसमें घिया हो, चाहे करेला हो, चाहे तोरी हो, चाहे खीरा भी हो, चाहे टिंडा भी हो, कौन से भी फसल हो हमने उसके ऊपर दोनों सिरा पर लगा देनी है। इन बातों का तो भाई हम ध्यान रखेंगे और साथ में एक भाई ये जो फल हमारे तैयार हो रहे हैं उस बाजार में ले जाए, उनका वर्गीकरण करके ले जाओ तो बहुत बढ़िया रहे, अच्छे भाव मिलेंगे और जाते हमारी जो बाजार में है वो बिक जाएगी। तो भाई इन मोटी मोटी बातों ध्यान रखेंगे तो सब्जी फसलों से अच्छी पैदावार ले लें।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि की बातें। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। हमारा अगला कार्यक्रम हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मू ह्यः राष्ट्रपतिभवने आयोजिते नागरिकालङ्करणसमारोहे षट्षष्टिः प्रमुखाग्रगण्यविभूतिभ्यः पद्मपुरस्कारान् प्रादात्। एतेषु द्वाभ्यां विभूतिभ्यां पद्मविभूषणं, षड्भ्यः पद्मभूषणं सहैव अष्टपञ्चाशद्विभूतिभ्यः पद्मश्रीः प्रदत्ताः। कलाक्षेत्रे विशिष्ट योगदानार्थं सुप्रसिद्धः चलच्चित्र अभिनेता धर्मेन्द्र सिंह देओल महोदयः मृत्योपरान्तं पद्मविभूषण सम्मानेन अलंकृतः। अभिनेतुः भार्या हेमा मालिनी एतं पुरस्कारं स्वीकृतवती। प्रख्यातः भारतीय सारंगी वादकः डॉ एन राजम अपि पद्मविभूषण सम्मानेन सुपूजितः। अस्मिन् अलंकरण समारोहे उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय मंत्री अमित शाहः, गजेन्द्र सिंह शेखावतः, एच डी कुमारस्वामी च उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य आरभ्य सिक्किम राज्यस्य त्रिदिवसात्मिकां यात्रां विधास्यति। सिक्किम प्रवासकाले सा विविधेषु कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति, अनेकानि स्थानानि च द्रक्ष्यति। राष्ट्रपति महोदया सायंकाले गंगटोक नगरे स्थिते नाइम्नॉल इंस्टीट्यूट ऑफ तिबेटोलॉजी इति संस्थां प्रति गमिष्यति। सिक्किम सर्वकारेण तस्याः स्वागताय विपुलाः प्रबन्धाः विहिताः। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो अथ युगांडा देशेषु इबोला संक्रमणं अन्ताराष्ट्रिय चिन्तायाः सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालत्वेन घोषितम्। एतदनन्तरं नगर विमानन महादेशालयेन विमान विपणीनां कृते एका मानक संचालन प्रक्रिया प्रसारिता। अत्रावधेयास्पदं वर्तते यत् विमानेषु अनिवार्यरूपेण पदक्षेपाः विहितव्याः भविष्यन्ति। यथा इबोला संकटं दृष्ट्वा यदि कस्यापि यात्रिणः ज्वरः, दौर्बल्यं, पीडा, शिरोवेदना, कण्ठदाहः, वमनमित्यादीनि लक्षणानि दृश्यन्ते तर्हि सः सद्यः एव विमानकर्मचारिभ्यः आगमानन्तरं चिकित्साविभागेभ्यः सूचयेत्। महानिदेशालयेन स्पष्टीकृतं यत् भारते आगमनात् एकविंशतिदिनानां मध्ये यदि एतादृशानि लक्षणानि उत्पद्यन्ते तर्हि यात्रिणः निर्दिष्टचिकित्सालयेभ्यः चिकित्सासाहाय्यं प्राप्नुयुः। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य यावत् मध्यप्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तरप्रदेश, विदर्भ क्षेत्रेषु उष्णस्थितिमुद्दिश्य रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीय सञ्चेतना प्रसारिता। विभागेन आगामि द्वित्रिदिनेषु हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तरप्रदेश, राजस्थान राज्येषु तीव्र उष्णतरंगस्य पूर्वसूचना प्रख्यापिता। एतादृशी एव स्थितिः अद्य यावत् छत्तीसगढ़, तटीय आन्ध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखण्ड, उत्तराखण्ड राज्येषु अपि भवितुं सम्भाव्यते। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधवः अवदत् यत् सर्वकारः योग प्राकृतिक चिकित्सा माध्यमेन कृत्स्नेहि देशे निवारक स्वास्थ्य सेवाः सुदृढीकरोति। नवदिल्ल्याम् आयुष मन्त्रालयस्य संसदीय परामर्शदात्री समित्याः चतुर्थ उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्री जाधवः अवचत् यत् योगः, प्राकृतिक चिकित्सा च समग्र निवारक स्वास्थ्य सेवायै भारतस्य शाश्वतं योगदानं वर्तते। अस्मिन् उपवेशने भारते योग प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रस्य विस्तारे, स्वास्थ्य संवर्धन सम्बद्धेषु प्रयासेषु च तथा च पारंपरिक चिकित्सा पद्धतीनां वैश्विक प्रसारे च विस्तरेण चर्चा अभवत्। सः अग्रे सूचितवान् यत् सम्प्रति विश्वस्य 90+ देशेषु अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः समारोहः आचर्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह का 29 मई को गुजरात जाने का भी कार्यक्रम है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रूपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरमिरल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। रिजर्व बैंक ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत लगातार 10 वर्ष तक बोर्ड में रहने वाले निदेशकों के लिए विराम अवधि लागू की गई है। इन संशोधन निर्देशों में आरबीआई शहरी सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 और ग्रामीण सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 शामिल हैं। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अब से थोड़ी देर बाद सुबह 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा, जिसमें आज सुनवाएंगे खेल वार्ता। वार्ताकार होंगे अमित कपूर।

शाम 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे वर्षाकालीन भिंडी की काश्त विषय पर डॉक्टर कुलदीप से की गई बातचीत।

ग्रामीण संसार कार्यक्रम प्रसारित होगा शाम 7 बजे, जिसमें आप सुनेंगे बच्चों में टीकाकरण क्यों आवश्यक विषय पर डॉक्टर पवन कुमार से की गई बातचीत।

0: लोक संगीत कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर गायक कलाकार होंगे श्यामलाल सांगी। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे। हमारी पहली प्रसारण सभा में सुबह 9:00 फिल्म संगीत कार्यक्रम में, दोपहर 1:10 पर चित्रपट संगीत कार्यक्रम में, शाम 7:30 पर कार्यक्रम फिल्म संगीत के तहत, रात 9:15 कार्यक्रम एक फिल्म से में, और रात 10:30 कार्यक्रम मनचाहे गीत के अंतर्गत। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा, जिसमें आज आप सुनेंगे खेल वार्ता। वार्ताकार हैं अमित कपूर।
1: सभी श्रोताओं को अमित कपूर का नमस्कार। दोस्तों, खेल वार्ता के इस अंक में मई महीने के कुछ खेल समाचारों के साथ मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। हालांकि हम सभी का सबसे प्रिय खेल क्रिकेट ही रहा है, लेकिन कुछ और खेल उपलब्धियों की बातचीत भी हम आज के इस कार्यक्रम में करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हरियाणा से ही। हरियाणा में, या यूं कह लीजिए कि हमारे प्रदेश में, पहली बार एक एकेडमी की स्थापना की जा रही है, जो कि सीधे रूप से खेलो इंडिया से जुड़ी होगी और ये खेलो इंडिया से मान्यता प्राप्त भी होगी। इसका मुख्य उद्देश्य उन ग्रामीण खिलाड़ियों को आगे लाना है जो कि

साइकिलिंग, फेंसिंग, रोइंग और टेबल टेनिस के खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन जिलों और गांवों को ये सबसे पहले लिया जाएगा या उन पर ध्यान केंद्रित रहेगा जहां किसी विशेष खेल का पारंपरिक आधार मजबूत हो। इसके लिए खेलो इंडिया सेंटर और स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वहां भी स्थापित किए जा रहे हैं। और अब बात करते हैं बैडमिंटन की, और वो भी हमारे अपने ही शहर रोहतक और अपने प्रदेश हरियाणा की। रोहतक की बैडमिंटन खिलाड़ी उन्नति हुड्डा ने विश्व रैंकिंग में 19वां स्थान हासिल कर लिया है। ये यहाँ की शटलर हैं और ये उनका सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग कैरियर है भारतीय बैडमिंटन के लिए। साइना नेहवाल और पीवी संधु के बाद इस मुकाम पर पहुंचने वाली वो केवल तीसरी भारतीय महिला शटलर हैं। उन्होंने एशिया चैंपियनशिप के विश्व नंबर 11 खिलाड़ी को सुपानिंदा कोटथोंग को हरा कर ये रैंक हासिल किया है। इसके बाद आते हैं 13 मई को थाईलैंड ओपन में भारतीय बैडमिंटन में कादम्बी श्रीकांत ने अंतिम 16 में अपनी जगह बना ली। पीवी सिंधु और देविका सिहाण ने भी अपने अपने मैच जीते हैं और महिला सिंगल्स में 6ठी वरीयता प्राप्त सिंधु ने ताइवान की तुंग सियो तोंग को सिर्फ 33 मिनट में 21-9, 21-12 से हरा कर ये स्थान हासिल किया। वर्ल्ड कप तीरंदाजी में भारत की दीपिका कुमारी ने भारतीय महिला रिकवर टीम ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप स्टेज 2 में गोल्ड मेडल जीता है। दीपिका, अंकिता भगत और 17 वर्षीय कुमकुम की तिकड़ी ने मेजबान चीन को शूट ऑफ में हरा कर ये सफलता हासिल की है। और इसके साथ कुछ और बातें कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में इटालियन ओपन में वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने इटालियन ओपन के अभियान में लगातार शानदार शुरुआत की है। इटली के सिनर ने ऑस्ट्रेलिया के सेबेस्टियन ओपनर को सीधे सेटों में 6-3, 6-4 से हराकर तीसरे दौर में प्रवेश किया। सिनर की ये लगातार 24वीं जीत है। और अब बात करते हैं फ्रेंच ओपन की। यूक्रेन की 23 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी मार्टा कोत्स्युक ने फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। दुनिया की 15वें नंबर की खिलाड़ी मार्टा ने पहले दौर के मुकाबले में रूसी मूल की स्पेनिश खिलाड़ी ऑक्साना को सीधे सेटों में 6-2, 6-3 से हराया। पहली बार स्पेन की ओर से ये ऑक्साना खेल रही है और ये मार्टा की क्ले कोर्ट पर लगातार 12वीं जीत रही है। पहली बार स्पेन की ओर से खेल रही मार्टा की क्ले कोर्ट पर लगातार ये 12वीं जीत रही। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह पहले स्थान पर रहे। वे 889 अंकों से शीर्ष स्थान पर रहे। और इसके अतिरिक्त बल्लेबाजी में इंग्लैंड के जो रूट ने 880 अंकों के साथ पहले स्थान कायम किया। भारत की तरफ से बल्लेबाजों में यशस्वी जायसवाल 750 अंकों के साथ 8वें स्थान पर रहे और 730 अंकों के साथ शुभमन गिल 9वें स्थान पर रहे। और वनडे में अगर रैंकिंग की बात की जाए तो आईसीसी की ताज़ा सालाना रैंकिंग अपडेट में भारतीय पुरुष टीम ने वनडे में शीर्ष स्थान अपना बनाकर रखा हुआ है। भारतीय टीम 118 रेटिंग अंकों के साथ दुनिया की नंबर 1 टीम बनी हुई है। भारत लगातार तीसरे साल सालाना रैंकिंग में सबसे पहले नंबर पर रहा है। वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया 109 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर मौजूद है न्यूजीलैंड, वो 113 अंकों के साथ है। चौथे स्थान पर है अफ्रीका, उसे 102 अंक मिले हैं। टॉप 10 में श्रीलंका, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, बांग्लादेश और वेस्टइंडीज की टीमें शामिल हैं। और अब बात करते हैं सबसे रोचक खेल क्रिकेट की। और सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम शनिवार को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए मुंबई से इंग्लैंड के लिए रवाना हो गई है। टूर्नामेंट 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड और वेल्स में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम को ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नीदरलैंड के साथ रखा गया है। भारत अपने अभियान की शुरुआत 14 जून को बकिंगम के एजबेस्टिन मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से शुरू करेगा। और आइए अब बात करते हैं आईपीएल के मैचों की। 28 मार्च से शुरू हुए इन मुकाबलों का समापन 31 मई को होगा, जहां फाइनल के विजेता का चयन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। अब तक अंतिम

0: चार टीमों का चयन हो चुका है। अंतिम चार टीमों में सबसे ऊपर के स्थान पे यानी सबसे पहले स्थान पर रही है बेंगलुरु की टीम। उन्होंने 14 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 9 जीते हैं, 5 में वो हारे हैं और उनके कुल अंक हैं 18। दूसरे स्थान पर है गुजरात, इनके पास भी 14 मैच खेलने का मौका रहा और इन्होंने भी 9 मैच जीते, 5 मैच हारे और इन्हें भी 18 अंक ही प्राप्त हुए हैं। तीसरे स्थान पर हैदराबाद है, उन्होंने भी 14 मैच खेले, 9 मैच जीते, 5 मैच हारे और उनके भी अंक 18 ही रहे हैं। और चौथे स्थान पर राजस्थान रहा जिसने कि 14 मैच खेले, 8 जीते, 6 हारे और उनके अंक रहे 16। पहली तीनों टीमों का जो अंक 18 18 18 रहा है उसमें रन रेट के आधार पर उन्हें पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है। जो राजस्थान रॉयल्स ने 2022 के सीजन के बाद पहली बार आईपीएल के अंतिम चार में जगह बनाई है। रविवार को मौजूदा सीजन के अपने आखिरी मैच में रॉयल्स ने मुंबई इंडियन को 30 रन से हरा दिया। इस रोमांचक मुकाबले में रॉयल्स ने 206 रन का लक्ष्य दिया था लेकिन मेज़बान टीम 175 रन ही बना सकी और उसके 9 खिलाड़ी आउट हो गए। राजस्थान ने 16 अंकों के साथ चौथी टीम के रूप में क्वालिफाई किया है। बुधवार को एलिमिनेटर मैच में रॉयल्स का मुकाबला तीसरे स्थान पर रही सनराइजर्स हैदराबाद के साथ होगा। वहीं मुंबई में ये सीज़न 9वें स्थान पर फिनिश किया उन्होंने अपना ये सीज़न। वानखेड़े में खेले गए रॉयल्स का बिना किसी अर्धशतक के 205 रन का स्कोर अब तक का सबसे ऐतिहासिक स्कोर रहा है। यह अब आईपीएल के इतिहास में इस तरह का 5वां सबसे बड़ा स्कोर रहा है जिसमें 50 रन किसी भी खिलाड़ी ने नहीं बनाए। इसमें यशस्वी ने 27, ध्रुव जुड़ैल ने 38, शनाका ने 29, आर्चर ने 32 रन बनाए। जवाब में मुंबई की टीम का शुरुआत कोई अच्छा नहीं रहा, वो जल्दी ही बिखर गई। सूर्या ने 60 रन बनाए, विल जैक्स ने 33, हार्दिक ने 34 और रोहित बिना कोई रन बनाए आउट हो गए। नमन धीर ने 6 और रिकेल्टन ने 12 रन का योगदान दिया। रॉयल्स की ओर से आर्चर ने सबसे ज़्यादा 3 विकेट लिए। और इसी दिन रविवार को खेले गए दूसरे मैच में 7 में से 6 जीत के साथ प्ले ऑफ में बने रहने के बाद कोलकाता दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने 40 रन से हराया। राजस्थान ने मुंबई को हराकर कोलकाता को पहले ही बाहर कर दिया था जबकि दिल्ली एक दिन पहले ही एलिमिनेट हो गई थी। इस तरह कोलकाता का स्थान रहा 7वां और उनका सीजन समाप्त हुआ और दिल्ली ने 6ठे स्थान पर 14 अंकों के साथ अपना सीजन समाप्त किया। अंतिम लीग मैच में दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 203 रन का स्कोर बनाया और उसके 5 खिलाड़ी आउट हुए थे। केएल राहुल ने अर्धशतक लगाया जबकि अक्षर ने 39 रन बनाए। मिलर ने भी अच्छी पारी खेली और 28 रन बनाए। जवाब में कोलकाता की टीम ने घरेलू ईडन गार्डन्स पर कुलदीप यादव की फिरकी की गेंदों में 3 विकेट लिए। कप्तान रहाणे 63 रन के अलावा कोई भी ज़्यादा देर और लंबे स्कोर नहीं बना सका। इस तरह टीम 163 रन पर ऑल आउट हो गई। अब पहला क्वालिफायर मैच 26 मई को मंगलवार को बेंगलुरु और गुजरात के मध्य होगा। ये होगा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। दूसरा क्वालिफायर मैच शुक्रवार 29 मई को चंडीगढ़ में पहले क्वालिफाइंग मैच के नंबर 2 के साथ होगा। ये था इस माह में हुए कुछ खेल समाचारों की समीक्षा। इसी के साथ ही आपसे आज्ञा चाहता हूँ। अमित कपूर का नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा जिसके तहत आपने सुनी खेल वार्ता। वार्ताकार थे अमित कपूर। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

श्रोताओं, इस समय उत्तर भारत और दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। तेज धूप, गर्म हवाएं, बढ़ता तापमान लोगों की परेशानी को बढ़ा रहा है और इसी बीच नौतपा भी प्रारंभ हो चुका है, जो 2 जून तक रहने वाला है। नौतपा के दौरान सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा तेज महसूस होती हैं, जिनकी वजह से तापमान इन दिनों सामान्य दिनों की तुलना में काफ़ी अधिक हो जाता है। ऐसे में लू लगने, डिहाइड्रेशन, चक्कर आना, कमजोरी जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ जाती हैं। नौतपा के दौरान सेहत का खास ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही हमारे स्वास्थ्य पर काफ़ी गंभीर परिणाम हमें दे सकती है। इन दिनों के दौरान सुबह 11 बजे से 4 बजे तक हमें तेज धूप में निकलने से बचना चाहिए। अगर ज़रूरी हो घर से बाहर जाना पड़े तो सिर को ढक कर रखें, टोपी, गमछे या छाते का इस्तेमाल ज़रूर करें। साथ ही दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें, भले ही हमें प्यास का आभास ना हो। इस समय पर पानी के अलावा दूसरी ड्रिंक्स का इस्तेमाल भी हम अपने शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए कर सकते हैं। साथ ही भीषण गर्मी में भारी कपड़े पहनने से हमें बचना चाहिए। इस दौरान सूती और हल्के रंग के कपड़ों को पहनना चाहिए ताकि शरीर के तापमान को हम नियंत्रित कर सकें। साथ ही किसी काम के लिए घर से बाहर निकलने से पहले ध्यान रखें कि आप खाली पेट घर से बाहर ना जाएं। भूखे पेट धूप में निकलने से कमजोरी और चक्कर आने का खतरा बढ़ सकता है। हमेशा हल्का भोजन ज़रूर करें। गर्मी के दौरान अधिक तला भुना और मसालेदार खाने से भी हमें बचना चाहिए। इस दौरान हल्के और घर के बने खाने का इस्तेमाल करें। भरपूर मात्रा में पानी लें। खीरा, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, दही जैसे फूड्स का सेवन भी इस समय पर हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। घर को ठंडा रखने के लिए कूलर, पंखे या एयर कंडीशन का इस्तेमाल करें। कमरे में वेंटिलेशन ज़रूर हो, इस बात का खास ख्याल रखें। अगर घर में बड़े या बुज़ुर्ग हैं तो इस समय उनका खास ध्यान रखें। उन्हें डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो, इसके लिए भरपूर मात्रा में पानी दें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने आसपास घरों के छतों पर या घर के दरवाजे पर खुले बर्तनों में पानी ज़रूर रखें ताकि आसपास घूम रहे पशु पक्षी उसमें पानी पीकर अपने प्यास को बुझा सके। इस तरह से हम खुद को भी गर्मी से बचा पाएंगे और अपने आसपास के जीव जंतुओं को भी गर्मी से बचाव करने में उनकी सहायता कर सकेंगे।

श्रोताओं, समय के महत्व को हम सब समझते हैं, हम सब जानते हैं कि ये सीमित है और जो समय एक बार, जो पल एक बार बीत जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। समय को खोने का सही मायने में अर्थ ये है कि हम संभावनाओं को नष्ट कर रहे हैं। समय का सही उपयोग करने से हम एक संगठित जीवन जीने का आनंद ले पाते हैं। समय का सही प्रबंधन करना एक ऐसी कला है जो हमारे जीवन को जीने में आसानी दे देती है, उसके जीवन की आधी समस्याएं खत्म हो जाती हैं जो जीवन में समय का प्रबंधन करना सीख जाता है, और यही सफलता की सीढ़ी भी बन जाता है। साथ ही हमें मन इच्छित ऊंचाइयों को छूने में हमारी मदद भी करता है। श्रोताओं, जो लोग समय का सही प्रबंधन नहीं करते हैं उनका जीवन अस्त व्यस्त रहता है, वो खुद भी दुखी होते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी दुखी रखते हैं। सफलता पाने के लिए ज़रूरी है कि समय का हम सही से प्रयोग करें। हम सब के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ज़रूरी है कि हम अपने समय सारणी का निर्धारण ज़रूर करें और उस समय सारणी के अनुसार ही दिन भर कार्य करें, जिससे हम समय पर अपने कामों को पूरा कर सकेंगे और व्यर्थ के तनाव से खुद को बचा सकेंगे। हम सब ने अक्सर सुना है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करे को कब। यानी समय रहते अगर हम अपने काम को कर लेते हैं तभी हम समय का उपयोग कर पाते हैं, अगर समय बीत जाए तब किया गया काम फिर बेअसर हो जाता है। ऐसी ही एक और कहावत है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी खेती सूख जाने के बाद अगर बारिश होती है तो उस बारिश का कोई लाभ नहीं होता है। तो इन सब से हमें सीख लेनी चाहिए और व्यवस्थित ढंग से हम अपने जीवन को जी सकें इसके लिए ज़रूरी है कि हम समय का प्रबंधन सीख सकें, क्योंकि जीवन हमें हर दिन हर पल नई चुनौतियों का सामना करवाता है और इन चुनौतियों से अगर हमें जीतना है तो हमें समय के प्रबंधन को सीखना होगा।

श्रोताओं, तेज गर्मी, चिलचिलाती धूप एक साथ मिलती है तो गर्मियों की तपिश सिर्फ असुविधा ही लाती है, साथ ही आंखों को भी प्रभावित करती है। हम गर्मी में अपनी त्वचा की सुरक्षा के लिए टोपी, उच्च HPF वाले सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आंखें भी हम सब के लिए उतनी ही ज़रूरी हैं, बहुत संवेदनशील होती हैं। यूवी किरणें, धूल और निर्जलीकरण इस समय पर सबसे बड़ी समस्या होती है। आंखों में सूखापन, जलन, संक्रमण, दीर्घकालीन नुकसान हमारी आंखों को पहुंचा सकते हैं। अत्यधिक तापमान शरीर में पानी की मात्रा को प्रभावित करता है। हम सब जानते हैं कि हमारी आंखें मुख्य रूप से पानी से बनी होती हैं, इसलिए शरीर के सबसे पहले प्रभावित अंग के रूप में सबसे ज़्यादा निर्जलीकरण का प्रभाव हमारी आंखों पर ही पड़ता है। निर्जलीकरण से आंखें सूख जाती हैं, लाल हो जाती हैं, उनमें किरकिराहट महसूस हम करते हैं। इसके अलावा लू के दौरान अधिक यूवी किरणें आंखों के लिए अधिक खतरनाक होती हैं, इसलिए गर्मी में अपनी आंखों का ख्याल रखना, उन्हें धूप से बचाना बेहद ज़रूरी होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम असरदार तरीकों को अपनाएं, धूप का चश्मा पहने, यूवी किरणों से जो हमें सुरक्षा प्रदान करें। गहरे रंग के चश्मे यूवी किरणों, धूल और शुष्क हवाओं से हमारे आंखों को बचाते हैं, उन्हें नुकसान होने से बचा सकते हैं। पूरी तरह से आंखों को ढकने वाले चश्मों को चुनें, ये सुनिश्चित करें कि लेंस यूवी और यूवीबी दोनों प्रकार की किरणों से हमें बचा सके। इस समय पर खूब पानी पिएं, आपके शरीर के लिए भी अच्छा है और हम सब जानते हैं कि हमारी आंखों के लिए भी पानी बेहद ज़रूरी है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से आंसू बनते हैं, जिससे हमारी आंखें नम और आरामदायक महसूस करती हैं। इस स्थिति में शरीर से पानी तेजी से निकलता है, इसलिए पानी का सेवन बढ़ाने का प्रयास करें। धूप के चश्मे के अलावा चौड़ी किनारी वाली टोपी या छाता भी हमें किरणों से और शारीरिक सुरक्षा प्रदान कर सकता है। सीधे धूप में रहने से यूवी किरणों से आंखों को होने वाले नुकसान की संभावना बढ़ जाती है, तो इस समय पर चश्मे या चौड़ी किनारी वाली टोपी छाते का इस्तेमाल ज़रूर करें। सूर्य की सबसे तीव्र किरणें सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच पड़ती हैं, तो इस समय पर पराबैंगनी किरणें तीव्र होती हैं। बाहरी गतिविधियों को सुबह या दिन के बाद के समय में करने की सलाह इस समय पर दी जाती है, ताकि हम अपने आप को गर्मी से बचा सके। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि गर्मी के कारण हमारे हाथ गंदे और बैक्टीरिया से भरे होते हैं, तो आंखों में खुजली महसूस होने पर अपनी आंखों को अपने हाथों से ना मलें। ऐसा करने से बैक्टीरिया हमारी आंखों में चले जाते हैं और इससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। लू से पराग, धूल और प्रदूषण बढ़ सकता है, इससे हमें एलर्जी हो सकती है, जिससे हमारी आंखों में खुजली, पानी आना और या लालिमा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर ऐसी कोई समस्या आप देखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। गर्मी के मौसम में हम घर के अंदर बंद रहते हैं, जिसके कारण हम सब स्क्रीन से चिपके रहते हैं। स्क्रीन का अत्यधिक उपयोग करने से हमारी आंखों में रूखेपन की समस्या बढ़ जाती है। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम नामक समस्या को हम सब इसके जरिए जन्म देते हैं, तो इस समय पर हमें 20-20-20 नियम का पालन करना चाहिए, यानी हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फिट दूर देखने की कोशिश करें। इससे आंखों के तनाव को कम करने में मदद मिलती है, और समय समय पर स्क्रीन से ब्रेक लें, गर्मी में अपनी आंखों को धोएं। पूल या पानी में जाते समय ध्यान रखें कि क्लोरीन जैसे पानी से अपनी आंखों को हमें बचाना होता है, साथ ही ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन इस समय पर ज़रूर करें। साथ ही पत्तेदार सब्जियां, खट्टे फलों का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए, इससे भी हमारे स्वास्थ्य और आँखों को अच्छा महसूस होता है। स्वास्थ्य समस्याओं को हम इस समय पर कम कर सकते हैं। साथ ही अपनी आंखों में किसी भी तरह की समस्या महसूस करने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, इसी तरह से हम अपनी आंखों को बचा सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय जब हम अपने जीवन में अपनाते हैं, तो अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी खूबसूरत आंखों को भी बचा सकते हैं। ये आंखें ही हैं जो इस संसार की खूबसूरती देखने में हमारी सहायता करती हैं।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: श्रोताओं, स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश जो है वो प्रारंभ हो चुका है, तो इस समय पे ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के लिए सही समय सारणी बनाएं ताकि वो उसके अनुरूप काम कर सकें और अपने समय को व्यवस्थित कर सकें। अब समय हो गया है आपसे अनुमति लेने का। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 8 बजने को हैं। अब समाचार प्रसारित होंगे, पहले हिंदी में, 8:15 पर अंग्रेजी में। समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। डीजीसीए ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
6: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटोक।
4: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह दो दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
7: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
4: दिल्ली में सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतों गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
4: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
9: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
4: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
10: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे, जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
4: अमरीकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नाव को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमरीका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है, जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61 करोड़ 75 लाख अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
11: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए, प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स डबल्स में तनीषा क्रस्टो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
4: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
12: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है, पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं, ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, एनटीए ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्ता ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और AI में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
4: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम CNG की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Quad Foreign Ministers meeting to be held in New Delhi today. President Draupadi Murmu to embark on a 3-day visit to Sikkim beginning today. More than 300 tourists stranded in Gulmarg gondola in Jammu and Kashmir rescued after technical snag halted its operations. DGCA issues directives for airlines after Ebola outbreak declared health emergency by WHO. CNG price hiked by 2 rupees per kg in Delhi. India thrashed Maldives 11-0 in their opening Group B match of SAF Women's Football Championship at Margao in Goa. And in IPL cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru to take on Gujarat Titans in Qualifier 1 in Dharamshala this evening. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshi Mitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meeting. The ministers will

रमन की बात बता दूं और कर तोड़े जानू सू इस हनुमान ज्योतिष का कति न छोड़ जानू सू बारह रास जन्म।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: आकाशवाणी रोहतक से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आज गायक कलाकार हैं श्याम लाल सांगी।

आड़वी मेरे शीश पे पत्ती पांड रही, मेरा शेर पर कै बुलारी मैं सीढ़ी बड़ी साड़ रही, अरे गुण

गाता द्रौपति कांग्रेसी बाने का तड़कला उसीआलेगा एक दिन पुत्र सिंह ने दाने का अरे तेरा जमाई दूर तक

पराने नए पैर लिए दूजा ढंग बदलिया था काला पनकती दूर करा उन्हें गोरा अंग बदलिया था आलिया लक्ष्मी रूप बना।

ਨਾ ਲਾਈ ਗਿਆ ਵਿਚਾਲ ਸਰ ਕੇ ਗਣ ਡੰਗ ਜਾਣੇ ਥਾ ਛੜੀਆ ਗਣ।

इसी के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आज गायक कलाकार थे श्याम लाल सांगी। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत में आप सभी को सुनवा रहे हैं बेवफा सनम फिल्म का गीत। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और नितिन मुकेश की।

बेवफा सनम फिल्म से गीत आपने सुना अनुराधा पौडवाल और नितिन मुकेश की आवाज़ों में। अगला गीत सुनवा रहे हैं अलका याग्निक की आवाज़, फिल्म आ अब लौट चले से।

0: समीर का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे आ अब लौट चले फिल्म से। आवाज़ थी अलका याग्निक की, संगीत नदीम शर्मन का।
1: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज़ आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक

अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज़ में प्रीतम के संगीत के साथ, ए दिल है मुश्किल फिल्म से। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में, दिल है कि मानता नहीं फिल्म से।

दिल है कि मानता नहीं फिल्म से गीत आपने सुना। आवाज़ें थी अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की। अगला गीत सुनवा रहे हैं अलका याग्निक, उदित नारायण।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ, 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले?
2: ना, पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और?
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में छैला बाबू फिल्म से गीत आपने सुना। अगला गीत सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर उदित नारायण की आवाज़ों में दिल तो पागल है फिल्म से, शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत उत्तम सिंह का।

राहत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ में सुल्तान फ़िल्म का गीत आपने सुना। अगला गीत आवाज़ एक बार फिर राहत फ़तेह अली ख़ान की, फ़िल्म इश्कियां से। गीत लिखा गुलजार ने, संगीत दिया विशाल भारद्वाज ने।

0: कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में ये गीत आपने सुना परदेसी बाबू फिल्म से। इसी गीत के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 10 बजने को हैं, अब समाचार प्रसारित होंगे, पहले हिंदी में 10:05 पर अंग्रेजी में। समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति अपनी यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा करेंगी और गंगटुक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को झंडी दिखाएंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में से 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
3: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से बातचीत की और रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इस संबंध में जानकारी दी है। रूस के विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया है कि यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हालिया रूसी हमले यूक्रेन सरकार द्वारा रूसी क्षेत्र में शांतिपूर्ण आबादी और नागरिक स्थलों पर लगातार हमलों का सीधा जवाब है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के हिजबुल्ला पर हमले तेज करने की घोषणा के बाद इसराइल की सेना ने पूरे लेबनान में हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइल के रक्षा बलों ने बताया कि उन्होंने पूर्वी लेबनान में बेका घाटी और कुछ अन्य क्षेत्रों में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया। फुटबॉल में भारत ने कल गोवा के मडगांव में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। 5 बार की चैंपियन भारत का अगला मुकाबला रविवार को मौजूदा विजेता बांग्लादेश से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani. The news read by Nina Rakel. The Quad Foreign Ministers meeting is underway in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar is hosting the meeting. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and U.S. Secretary of State Marco Rubio are participating in the meeting. In his opening remarks, Dr. Jaishankar said that during the meeting, the foreign ministers will be discussing and deciding the shared activities and will take into account many challenges and opportunities in the world. He said that primary focus of the meeting will clearly be on the Indo-Pacific, and at the global level, deliberations will address issues like supply chain, resilience, manufacturing and resource concentrations, and gaps in critical infrastructure. President Draupadi Murmu will undertake a three-day visit to Sikkim beginning today. During her stay in Sikkim, she will attend various events and visit several places, a report.
5: President Draupadi Murmu will visit Namgyal Institute of Tibetology today on the first day of her visit to Sikkim. President Murmu will also visit the Orchidarium and flag of pink buses for the women in Gangtok. Tomorrow, she will visit the Nathula Pass and also attend the convocation of the Sikkim University at Gangtok. Nearly 14,000 degrees will be awarded in the ceremony. On the last day of her visit, President Murmu will present the President of India's Police Colour Medal to the Sikkim Police at Paljor Stadium in Gangtok. Manas Pratim Sharma, Akashvani News, Gangtok.
4: Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal addressed an interactive session at a reception hosted by his Canadian counterpart Maninder Sidhu in Ottawa, Canada today. In a social media post, Mr. Goyal said that during the interaction, he highlighted India's remarkable growth journey, driven by the aspirations of its people, a thriving entrepreneurial spirit, a vast talent pool, and great market opportunities. The minister also emphasized the significant contribution of the Indian diaspora in deepening economic, cultural and people-to-people relations. Defence Minister Rajnath Singh has said that the successful rescue of 300 tourists stranded in cable cars in Gulmarg by a joint rescue team comprising the Indian Army, Jammu and Kashmir Police, NDRF, SDRF and civil administration reflects the swiftness, professionalism, courage and coordination of India's disaster response agencies. In a social media post, Mr. Singh lauded the efforts of the joint team for carrying out the challenging operation with efficiency and resolve. The Defence Minister noted that the nation acknowledges and applauses the dedication and service of all personnel involved in this rescue operation. Union Home Minister Amit Shah will visit India's border regions over the next few days and hold security-related meetings. Mr. Shah reached Bikaner in Rajasthan last night. Home Minister will visit BSF's Sanchu border outpost this morning, where he will interact with the security forces personnel and inaugurate welfare schemes for them. In the afternoon, he will review the security situation in the border region in Bikaner. Millions of people from across the world, including India, will perform Hajj in Saudi Arabia today, marking the beginning of five-day Hajj rituals. Pilgrims converged at tent city of Mina yesterday. After offering pre-dawn prayers, they will proceed to plains of Arafat today for the main ritual of Hajj reciting prayers. The Indian Meteorological Department has issued a yellow alert for heat wave conditions today in Delhi. Severe heat wave conditions are also likely today in places over Haryana, Chandigarh, East Madhya Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, Vidarbha and West Rajasthan. Similar weather conditions will persist during the day in parts of Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, East Rajasthan, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Jharkhand, Odisha, Telangana, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Madhya Pradesh, Gangetic, West Bengal, Konkan and Goa, Saurashtra, Kutch, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal are expected to experience hot and humid weather today. In football, India thrashed the Maldives 11-0 in their opening Group B match of the SAF Women's Championship in Margao, Goa yesterday. In IPL playoff cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru will take on Gujarat Titans in qualifying one in Dharamshala today. And that is the end of
0: नमस्कार। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। सुबह के 10:10 और 16 सेकंड हुए हैं। इसी के साथ संपन्न होते हैं हमारी पहली सभा के प्रसारण। एफएम बैंड 103.5 मेगा हर्ट्स पर विविध भारती के कार्यक्रमों का रिले जारी रहेगा। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर दोपहर 12:30 पर हमारी दूसरी प्रसारण सभा में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए अनुमति।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:30 और 12 सेकेंड हुए हैं। अब हमारी आज की दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए ये प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया। योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
2: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
3: योगेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
2: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा
3: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी,
2: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है,
3: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
3: जी मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
2: बिल्कुल,
3: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
2: अजीत जी आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
3: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
2: जी श्रोताओ, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
3: जी विमलेश जी, ठीक वैसे ही ना जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
2: बिल्कुल सही, जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
3: विमलेश जी आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा
2: जी,
3: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है।
2: अजीत जी, चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
3: विमलेश जी एक और बेहद रोचक बात मैंने इन फूलों के विषय में पढ़ी थी, और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
2: जी बिल्कुल सही, और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी अब आपकी बारी।
3: जी श्रोताओं, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
2: जी
3: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग क्या करते हैं।
2: इस समय शहरों, गाँवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियाँ दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि
3: इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
2: जी
3: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
2: जी दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं
3: जी,
2: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं, जिनमें विशेष है सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
3: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा।
2: जी।
3: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
2: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही हैं। इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसके पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
3: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं।
2: जी।
3: ये एक से दो सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
2: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है।
3: जी।
2: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
3: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें।
2: जी।
3: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है, और हाँ, वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है।
2: जी बिल्कुल। तो श्रोताओ, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
3: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
3: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
2: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की। सुनते हैं कार्यक्रम।
3: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू, सिंगिंग द पोएम। श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत इस गीत में मजेदार ढंग से बच्चों की चिड़ियाघर की यात्रा का वर्णन है। पशु पक्षियों की आवाजों को शामिल करके गीत को और भी अधिक रोचक बनाया गया है।
4: चिल्ड्रन, हैव यू एवर विजिटेड अ जू?
5: अ जू?
4: यस, अ जू।
5: Oh yes.
4: All right. So tell me, what do you see in a zoo?
5: Tiger.
6: Lion.
4: Yes.
6: Monkey. Birds of different kind.
4: Very nice.
6: Camel. Giraffe. And so on.
4: Oh wow. So, here is a child like you. Who wants to go to a zoo? Now, let's recite this poem and you all repeat after me. Ready?
5: Ready!
4: The poem goes like this. We are going to the zoo to see a kangaroo.
5: We are going to the zoo to see a kangaroo.
4: And a lion too.
5: And a lion too.
4: We are going to the zoo.
5: We are going to the zoo.
4: The monkeys swing and climb.
5: The monkeys swing and climb.
4: They know it's feeding time.
5: They know it's feeding time.
4: The polar bear and seals.
5: The polar bear and seals.
4: Enjoy their fishy meals.
5: Enjoy their fishy meals.
4: Yes, we are going to the zoo.
5: We are going to the zoo.
4: The snakes all slide along.
5: The snakes all slide along.
4: The skunk just makes a pong.
5: The skunk just makes a pong.
4: The tiger gives a roar.
5: The tiger gives a roar.
4: He wants to eat some more.
5: He wants to eat some more.
4: We are going to the zoo.
5: We are going to the zoo.
4: Yes, we are going to the zoo.
5: We are going to the zoo.
4: For children, you all have listened to this poem just now. Hope you have enjoyed, isn't it?
5: Yes!
4: All right. So now, what will we do?
5: We will hum and we will sing along.
4: Yes, we will hum and sing along.
5: Yay!

0: Dear friends, you have just heard the sounds of different animals in this song. Now, listen to the sounds again and try to identify them by yourself. This was elephant. This was monkey. And this was tiger. This was polar bear. And this was skunk. And this was kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
2: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी,
3: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
4: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
5: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
6: वीर जोरावर की
7: जय।
6: वीर जोरावर की
7: जय।
6: जय जेरापुर, जय भारत।
7: जय जेरापुर, जय भारत।
4: राजा जोरावर सिंह।
8: हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
9: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
8: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
9: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया, ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
10: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं। लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा, ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।
11: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
10: जी।
11: वहां के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
10: जी महाराज। महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
11: बिल्कुल।
10: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
11: जी मंत्री जी।
10: जी महाराज।
4: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
6: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
12: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह।
13: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
11: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
13: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
11: देखिए निजाम साहब।
13: जी फरमाइए।
11: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं
13: जी।
11: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा, ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
13: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
11: जी।
13: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
14: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
4: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहां के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
9: जी हाँ, जेरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
14: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
12: बिल्कुल।
14: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साय की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
12: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
14: लेकिन जरा होशियारी से।
12: जो हुकुम सरकार।

0: Bana...
1: तुम चारों तरफ से घिर चुके हो।
0: ये क्या है?
1: You are under arrest.
0: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ। आओ सामने।
1: बहुत हो गई तुम्हारी बहादुरी। फौजियों,
2: हुजूर,
1: बांधो इस बच्चे को जंजीर से।
2: जी।
3: हाँ। छोड़ो मुझे।
1: हाथ
3: मत लगाओ मुझे। मुझसे हाथ हटाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से।
1: शाबाश, शाबाश, सारा जंग। मैं खुश हुआ। तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा।
4: हुजूर।
0: अच्छा, तो ये सब इसकी कारस्तानी है। एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है। लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है। लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था।
3: छोड़ो मुझे।
5: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए। उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया, उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए, तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों ना गंवानी पड़े।
6: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
7: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।
0: अप्पा, ये नहीं हो सकता।
7: देखो देखो, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
0: ये नामुमकिन है।
7: वाय?
0: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे। अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
7: तो तुम नहीं मानोगे। देखो देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा।
0: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
7: Actually, you are a fool.
5: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
6: काला पानी की सजा?
5: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
6: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
5: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
0: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।
6: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
2: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
8: आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है, चुटकी घड़ी में एक बजे।
9: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीरों पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा, फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
10: Economic resilience should be promoted.
11: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
9: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। संयुक्त प्रेस बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश को प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 76,327 जबकि निफ्टी 19 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर था। ओस्लो में नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा और डी गुकेश ने क्लासिकल मुकाबला ड्रॉ रहने के बाद बेहद रोमांचक टाई ब्रेकर में जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में प्रज्ञानंद ने टाई ब्रेकर में वेस्ली सो को हराया, गुकेश ने विंसेंट कीमर को पराजित किया। आईपीएल क्रिकेट में आज क्लासिक क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मानसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने कहा कि इस साल मिजोरम, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मानसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
8: आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है, आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिन्हें चंडीगढ़ केंद्र से रिले किया।
12: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा में गोस्वामी समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुबोध गिरी की अगुवाई में 2 दर्जन से अधिक नेताओं व कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ौली ने पंचकुला स्थित प्रदेश कार्यालय पंचकमल में डॉक्टर सुबोध गिरी सहित सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी का पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस अवसर पर श्री बड़ौली ने कहा कि भाजपा समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। वहीं डॉक्टर सुबोध गिरी ने कहा कि भाजपा की राष्ट्रवादी सोच और संगठन की कार्यशैली से प्रभावित होकर उन्होंने साथियों सहित भाजपा में आने का निर्णय लिया। करनाल में महर्षि कश्यप जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। कल इस उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यक्रम की शुरुआत महर्षि कश्यप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर की। इस अवसर पर श्री हरविंदर कल्याण ने कहा कि महर्षि कश्यप भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा के महान ऋषियों में से एक थे। उनका जीवन समाज को ज्ञान, सद्भाव और सेवा का संदेश देता है।
13: महर्षि कश्यप जी जो सप्त ऋषि में से एक थे, उन्होंने समाज की एकता का सूत्र पर्यावरण के नाते अगर हम देखें कि उनकी जो सीख है, जो एक दृष्टि जो है, जो एक परिवार वसुदेव कुटुंबकम, ये एक हमारे महापुरुषों की सोच रही है हमारी प्राचीन संस्कृति में। और आज के परिदृश्य में अगर हम देखें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के अंदर ये भाव होना चाहिए कि हम समाज की एकता के ऊपर बल दें और हम अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए समाज को सही दिशा में आगे बढ़ाने का काम करें और अपनी भावी पीढ़ियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए काम करें। और उसके लिए पर्यावरण की रक्षा ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है।
12: श्री कल्याण ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को महापुरुषों के आदर्शों से प्रेरणा लेकर समाज और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने शिक्षा, सामाजिक एकता और आपसी भाईचारे पर जोर देते हुए कहा कि समाज तभी आगे बढ़ता है जब सब लोग मिलकर काम करते हैं। श्री कल्याण ने सभी को ऋषियों के बताए मार्ग पर चलते हुए पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन की अपील भी की। हरियाणा सरकार ने अपनी अनुग्रह वित्तीय सहायता योजना का दायरा बढ़ाते हुए सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों के दिवंगत अंशकालिक कर्मचारियों के परिवारों को भी 3 लाख रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ये लाभ पहले केवल एडहॉक दैनिक वेतनभोगी और अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के परिवारों को दिया जाता था। अब सरकार ने इस योजना में अंशकालिक कर्मचारियों को भी शामिल करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, उपमंडल अधिकारियों, नागरिक, विश्वविद्यालयों तथा विभिन्न बोर्डों और निगमों को निर्देश जारी किए हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अभी 2 दिन तक गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 28 मई से मौसम में बदलाव से भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिक शिवेंद्र सिंह ने बताया कि 28 मई के बाद तापमान में गिरावट आएगी।
14: देखिए, जो आने वाले 2 दिन है उनमें तो एक गर्मी बरकरार रहेगी। ये हीट वेव वाली कंडीशंस जो है हमारे रीजन में कंटिन्यू करेंगी, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में। उसके बाद 28 तारीख से हम एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मॉइस्चर फ्लक्स जो आ रहा है ईस्टर्ली विंड्स के चलते, उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ेगी। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी 28, 29, 30 को रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा फेली वाइड रेनफॉल एक्टिविटी होगी, जिसके चलते हमारे जो करंट अबव नॉर्मल टेम्परेचर फॉल कर जाएंगे और हमारा हीट वेव हटने के चांसेस है पंजाब हरियाणा से।
12: हरियाणा के कृषि व किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कल करनाल में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को उनके शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री ने बताया कि बैठक में रखे गए 14 मामलों में से 9 मामलों का समाधान कर दिया गया, जबकि 5 मामलों को लंबित रखा गया है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिन देशों से भारत तेल खरीदता है वहां आपसी विवाद चल रहा है, विवाद समाप्त होने के बाद कीमतों में सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि तेल के दाम मांग और आपूर्ति पर निर्भर करते हैं तथा कंपनियां भी इस दिशा में प्रयास कर रही हैं कि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। खाद की उपलब्धता को लेकर मंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसानों को यूरिया और डीएपी की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
8: मीडियन वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:10 और 12 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्र पर संगीत और कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं अभिमान फिल्म के इस खूबसूरत से गीत के साथ जिसे गाया है लता मंगेशकर और मनहर ने। बोल है वजरू सुल्तानपुरे की और संगीत है एस डी बर्मन का।

सुरेश वाडेकर की आवाज़ में आई, आपको सुनाते हैं प्रेम रोग फिल्म का ये गीत, जिसके बोल लिखे हैं संतोष आनंद ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार के स्वरों में। फिल्म का नाम है प्यार छूटता नहीं। इस गीत का संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: enhanced reliability. A book titled Apnapan, Narendra Modi Sang Mere Anubhav, was launched by former Vice President M. Venkaiah Naidu and former Prime Minister H. D. Devegowda in New Delhi today. The book is written by Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan. Addressing the gathering, Mr. Chauhan said the book is based on his decades of experience with Prime Minister Narendra Modi.
1: I have shared a journey of 35 years with him, and during this time, I have seen him dedicate every moment of his life to the service of the nation. Every step he has taken has been aimed at the progress and development of the country. The people of India deeply admire and are inspired by him. I have been fortunate to work with him on many fronts.
0: President Draupadi Murmu has arrived in Gangtok on a three-day visit to Sikkim. During her visit, the president will inaugurate pink buses dedicated for women aimed at improving safe and accessible transport facilities in the state. She will also visit the orchidarium at Ridge Park to witness Sikkim's rich ecological and floral heritage. Later in the day, she is scheduled to visit the Namgyal Institute of Tibetology, known for preserving rare manuscripts and Buddhist cultural artifacts. Millions of people from across the globe, including India, are performing Hajj in Saudi Arabia today, marking the beginning of the five-day annual pilgrimage yesterday. Hajj pilgrims spent the night at Mina. They are now converging at Plains of Arafat for the main ritual of Hajj, reciting prayers. They will spend the day there praying and asking for God's forgiveness. The pilgrims will listen to the Khutbah-e-Hajj or Hajj sermon at Nimra Mosque and offer midday and afternoon prayers together before leaving for Muzdalifah in the evening. The India Meteorological Department, IMD, has issued a yellow alert for heatwave conditions today in Delhi. Heatwave conditions in the national capital are expected to continue till tomorrow, with maximum temperatures remaining between 44 and 46 degrees Celsius. IMD also predicted severe heatwave conditions in places over Haryana, Chandigarh, East Madhya Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, Vidarbh and West Rajasthan today. Meanwhile, the southwest monsoon is expected to reach Kerala today or tomorrow. An official declaration on the onset of the monsoon is expected from the Met Department. More from our Thiruvananthapuram correspondent.
2: The IMD has issued an yellow alert for isolated heavy rainfall today in the districts of Thiruvananthapuram, Kollam and Alappuzha in Kerala. The southwest monsoon will be officially declared over Kerala once at least 60% of the 14 weather monitoring stations across Kerala and Lakshadweep record a minimum of 2.5 millimeters of rainfall for two consecutive days after May 10. Wind speed and inset satellite data will also be considered before confirming the onset of the monsoon. While districts from Thrissur northwards have not received significant rainfall since this morning, several southern regions continue to witness steady showers. Places including Kochi, Moonar, Kumaragam, Nilakkal, Kummali, Shabarimala, Varkala and Ponmudi have recorded around 5 millimeters of rainfall since 10 o'clock this morning. Nidhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
0: On sports, the playoffs in IPL cricket are beginning today with Gujarat Titans taking on defending champions Royal Challengers Bengaluru in qualifier 1 in Dharamshala this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. The winner of the match will directly advance to the final, while the losing side will get another opportunity in qualifier 2. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chairs Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi. Quad commits to stable and secure energy markets. India and the US sign key agreement to strengthen supply, mining and processing of critical minerals and rare earths. Union Home Minister Amit Shah visits Sanchu border post in Rajasthan, launches Vibrant Villages Program 2 in border regions of the state. Millions of pilgrims begin main ritual of Hajj pilgrimage in Saudi Arabia. And in the IPL qualifier 1, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in Dharamshala this evening. And with that, we end the midday news.
3: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: Economic resilience should be promoted.
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
3: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
4: As democratic nations,
5: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
4: Will become even more important to the world.
3: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमरीका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
6: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
3: जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री

0: www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं, बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष

0: के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मीना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वाशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मानसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के कल तक पहुँचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पोरमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 और 15 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेत खलिहान।

0: खेत खलिहान कार्यक्रम सुनने वाले सारे भाण भाइयों ने आनंद भाई की राम राम। और भाइयों फिलहाल अपना खास तौर पर टेम की अगर बात करी जाए तो भाई वो खुशनुमा अपना लगभग 2-3 दिन का है, परंतु जो अपना 29 तारीख आओगी उसने भाई फिर अपना थोड़ा मौसम में बदलाव होगा कि तय गरज चमक के साथ बूंदाबांदी है, तेज हवाएं हैं और 2-3 दिन अपना बिल्कुल भाई खुशनुमा टेम्परेचर ज़्यादा है। और ये देखे हैं कि भाई आगे चाल की बहुत से किसान भाइयों चाहे वो परंपरागत फसलें हमारी हैं या फिर हम यूँ देखे हैं कि भाई टाइम हमारा जो है ख़ास तौर पर महंगाई का चल रहा है, आधुनिक युग आ रहा है, आधुनिक युग में भाई देखम देख किसान भाई खर्चे इतने कर बैठे हैं कि भाई ठेके बटाई की महंगी ज़मीन हो रही है, ठेका बहुत महंगा हो रहा है और आधुनिक यंत्राम चाहे भाई वो ट्रैक्टर की बात करें हैं हमको या रो कल्टीवेटर रोटावेटर शिपर सीडर आजकल बहुत से कृषि यंत्र आधुनिक नए नए हैं और साल दर साल नए नए ईजाद होते जा हैं और भाई खर्चा किसान भाई ने समझीते ज़्यादा कर बैठे हैं। तो खेती आजकल वो बात नहीं रह रही है भाई, पुराना वक्त हो रहा पुराना टाइम होया करता भाई खर्चे कम होया कर दे, अपने पास निरोगी खेती होया कर दी, घर की खाद होया कर दी भाई, पशुधन होया करता। लेकिन आज वो पुराना वक्त वाली सारी ही बातें जो है नहीं रही हैं, क्योंकि जो बनीम भाई अपने पशु खुलया कर दे, बहुत सा अपने घर ने पशुधन का गोबर होया करता, देसी खाद होया कर दी, अपने बल्दा तें खेती होया कर दी, तो खर्चे बहुत कम थे। लेकिन आज सारा टाइम भाई महंगवाड़ा का है, चाहे वो डीजल पेट्रोल की बात करो हो कृषि यंत्रा की बात करा हाँ, तो भाई अपना सोच बूझ कर की आवश्यकता अनुसार न्यू देखें भाई अपनी फसल का किसान भाई ने बेरा होना चाहिए। थोड़ा टेक्निकल का जमाना आ रहा है आजकल भाई, चाहे फसल ना अपनी ने संभाले हैं, उसके लक्षण हम पहचाने हैं, खेत में हांडे फिरें भाई अपना जो दिनचर्या के काम हैं भाई खेती बाड़ी में थोड़ा सूझबूझ के साथ खेती करेगा किसान भाई। और ख़ास तौर पर थोड़ा हा जो अपनी परंपरागत फसलें हैं उस तय अगर अटकी कुछ साथ में अपनाओगा तो आमदनी ठीक ले पाओगा। और आजकल न्यू देखे हैं सूझबूझ का बात जब आव है तो भाई परंपरागत फसलें भाई अपनी साल दर साल अपना गेहूँ है कितने धान है कितने बाड़ी का इलाका है, तो इससे थोड़ा अटकी भाई कोई हमने प्रॉपर तरीके से कोई सहायक धंधा के बारे में सोचना है या फिर कोई सहायक धंधा साथ में अपनाना है तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एकली खेती की अगर बात आओ है तो चाहे भाई वो अपनी प्राकृतिक मार के ली हैं या फिर कोई और अन्य दिक्कत ऐसी आ जाए है, कई बार फसल भाई जमाव नहीं हो पाता, कई बार भाई कोई कीट पतंगा है फिर बीमारी ले बैठे है, तो सहायक धंधा फिर किसान भाई ने न्यू देखे हैं कि पाचे तो थोड़ा बहुत उसके चाहे वो हम कोई सा भी अपना रहे हों भाई न्यू देखे हैं कि भाई अकेला खेती तो हमारा काम नहीं चल रहा, तो इसमें सहायक धंधा थोड़ा पच्छा तो किसान भाई ने उभार दी है और होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज से बहुत से भाई तकनीकी युग का ज़माना है, फ़ोन में इंटरनेट है, माध्यम है, सब कुछ हमारे पास तत्काल जानकारी है, तो हम कोई ना कोई सहायक धंधा की बशर्ते कोई ट्रेनिंग वगैरह भी निकलती रहे हैं। और आजकल देखे हैं कि तकनीकी युग के साथ साथ हमारे पास जानकारी इतनी है, मीडिया माध्यम की हम बात कर रहे हैं, कोई किताबा की बात कर रहे हैं, रेडियो की बात कर रहे हैं, तो ये देखे हैं कि जो भी किसान भाई थोड़ा बहुत कोई चाहे वो, क्योंकि आजकल न्यू देखे हैं कि कृषि के साथ साथ बारहमासी काम धंधे भी ऐसे जुड़ रहे हैं, चाहे वो मशरूम की अगर बात कर रहे हैं तो बारहमासी मशरूम भी आजकल आए हैं, क्योंकि सीजनली तो अलग हो है और इसके अलावा जब बारहमासी की बात करी जाए तो एक अलग तो है। इसी तरीके से चाहे वो हमारी सब्जी फसलें हों या फिर कोई पोली हाउस की खेती हमारे पास है, फिर कोई सहायक धंधा हम भाई कितने बहुत से भाई अपने डेयरी फार्मिंग भी कर रहे हैं, कितने मुर्गी पालन का काम कर रहे हैं, कितने मछली पालन का काम कर रहे हैं, तो थोड़ा मोड़ा कोई जागरूकता के साथ किसान भाई ने सहायक धंधा अपनाना बहुत ज़रूरी है। एकला खेती के ऊपर निर्भर नहीं है मरव है, क्योंकि महंगाई का टाइम है, महंगाई का टाइम में भाई थोड़ी मोड़ी अगर कोई प्राकृतिक मार लग जाए किसान भाई के तो बहुत दिक्कत आओ इसमें। और इस टाइम के ऊपर तो न्यू देखे हैं कि चाहे वो कोई सी फसल भी हमने आगे चल के चाहे तैयारी कर रखी हो या फिर कितनी DSR विधि द्वारा बहुत से किसान भाई इसमें धान भी लगाऊँ हैं जिससे पानी की भी बचत हुआ है ऊपर स्प्रे करते हैं जिस तड़ंगा का हेड जम है। तो ऐसी ऐसी जो तकनीकें हैं खेती की, जो बारीकियां हैं, वो हमने बेरावना चाहिए। और जब भी हम खेती करें हैं, कोई बिजाई हम करें हैं, चाहे वो नर्सरी में करें हैं चाहे फिर खेत में करें हैं, तो एक जो अपना बीज का उपचार है वो बहुत ही ऐसा ज़रूरी है कि फसल ना अपनी ना शुरू से लेकिन और आखिरी ती बचाव है। और बहुत से किसान भाई बीज उपचार तो कर ले हैं लेकिन वो सही जो विधि है, सही जो तरीका है, उसने नहीं अपना दे। जब उसने हम नहीं पढ़ाऊँगे और पूरा एक न्यू देखे हैं कि भाई काम चला हुआ हमने चला दिया, तो ईसा या गचाल की फिर फसल अपनी वो रिजल्ट देगी। पूरा प्रॉपर तरीके से सूझबूझ के साथ भाई अपनी खेती पर जब इतनी हम मेहनत कर रहे हैं, छः महीने खेती हो है, सारा दारमदार उसके ऊपर लुटा दी हैं, तो ढंग भी हमने सही अपनाना पड़ेगा। और इन दिनों में तो भाई बहुत से भाई की तरह कोड़ी का काम चल रहा खाली खेता में, भाई लेजर ले उधर एक सार भी करवाओ अपने, साल दर साल लगवा ले हैं ताकि पानी की खपत ज़्यादा ना हो। और गहरी जो जुताई है उसका भी अपना एक अलग महत्व है भाई खाली खेता में। और जड़े पर्याप्त पानी है भाई भाइयों पर नू देखे हैं दारमदार पानी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आंदी, तो भाई बहुत से किसान भाइया ने हरी खाद भी अपने ले हुए हैं, चाहे वो मूँग की बात कर रहे हैं, चाहे वो डच्चे की बात कर रहे हैं, चाहे फिर उसमें गुवार मिला दी हैं। अगर मिश्रित हरी खाद हम ले लिया हाँ, तो जो ज़मीन की ताकत है वह जो की तो अपनी बनी रहे। पुराना वक्ता की अगर बात आई थी तो भाई पहले टेम ऐसा व्यारदा कि अपने पशुधन व्यारदा गोबर पर्याप्त मात्रा में व्यारदा, पुरानी करूड़ी व्या कर दी, आज वह बात नहीं रह रही है। और भाई खाली खेत हम तो यो जरूर करें कि भाई कम से कम छः भी नाम नहीं तो साल भर में अपनी जो मिट्टी पानी की जांच है उसके आधार पर भी हमने खेती करनी पड़े है। क्योंकि अनसमझी में जो किसान भाई खर्चे कर बैठे है उसने जो मिट्टी पानी की जाँच है उनमें बहुत सी कटौती आ जाए है। सही तरीके से हमने मालूम हो जाए कि पानी फसल ने चाहे पानी जो धरती माता है उसने कौन से पोषक तत्व की कमी है उसमें, एक क्या हमने उसमें डालना है, तो एक ये सूझबूझ के साथ अपना खेती करना हो गया तो ये ज़रूर करवाऊँ भाई। खाली खेत जब हमारे यूँ हैं तो पानी की या फिर मिट्टी की हम जाँच ज़रूर करवा के चलें। और ये देखे हैं कि चाहे बारूमासी खेती में भाई चाहे अपनी मूली की है या फिर सब्जी फसल में है, तो ऐसी ऐसी जो आधुनिक खेती है उसकी हम जानकारी ज़रूर ले के आए हैं। और जब भाई बैठे हैं कितने बैठक में चौपाल में इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि युवा वर्ग का भी टाइम बहुत सा हुआ है कि भाई आप सर बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा जिक्र हम चलावें कि भाई किसान भाई का थोड़ा बहुत कितने कितने फ़ायदा होता हो, कोई खेती तो ऐसी बातें जुड़ रही हों जोड़े काम की बात हो, तो इन बातों में हिस्सा ज़रूर ले हुएँ। क्योंकि अपना ये देखा जाए कि जब युवा वर्ग इकट्ठा हो है भाई कितने कोई चौपाल के बाहर खड़े हों हैं या फिर कितने बैठक के बाहर या फिर कितने स्टेडियम में ग्राउंड में हम जावे हैं, उड़े भाई कितने भाई की बात दौड़न की चाल लगी, कितने नौकरी पेशे की चाल लगी, तो एक थोड़ा हा अपनी संगत का अनुसार भी भाई थोड़ा न्यू देखे हैं कि कोई ख़राब बालक है या फिर कोई और ऐसी दिक्कत नहीं है उनके, तो समझाऊँ या फिर उसने थोड़ी ही सकारात्मकता के साथ बुद्धिमत्ता के साथ भाई अच्छी बातें में डालने की कोशिश करें और बुरी संगत से बचने की कोशिश करें। इसी तरीके से भाई अपना जो खेती में है सूझबूझ के साथ किसान भाई खेती करेगा अपनाओगा उसने तो लाभ जरूर मिलेगा। तो आज बात थोड़ी बहुत शकरगंदी की करेंगे भाई, शकरगंदी की काश्त के बारे में, लेकिन भाई टाइम काफ़ी हो रहा है तो भैया ने रागनी सुनवाऊँगे बलबीर सिंह बोबला और साथियों की गाई हुई।
1: रागनी उस मौके की है जब अंजना नहीं बोलती है और सखिया कहती है कि तेरे काबिल नहीं है यू, ये तेरे पिता की गलती है, क्या कहती है सखिया?

0: तो ये सुनी भैया ने बलबीर सिंह की आवाज़ में रागिनी की शाथा अंजना पर उनका एक रागिनी की ओर सुनवाऊंगे। लेकिन भाई अपना जो जिक्र चल रहा था खेती बाड़ी में ये जो शकरकंदी है इसकी काश्त के बारे में, क्योंकि शकरकंदी की अपनी एक इनू देखे हैं कि भाई पूरा भारतवर्ष में लगभग अगर किस्मा की बात करी जा तो भाई दुनिया भर में लगभग 400 से ज़्यादा इसकी किस्में उपलब्ध हैं। भारत में इसकी खेती भाई मुख्य रूप से सफ़ेद, हल्के पीले, गुलाबी और नारंगी जो गुद्दे वाली किस्में हैं इनके साथ करी जा है। और भारत में शकरकंदी की जो कुछ खास बढ़िया किस्में हैं भाई, इसमें पूसा सफ़ेद है, इसकी त्वचा हल्की सफ़ेद और गुद्दा भी सफ़ेद हुआ है, यह खाण में काफ़ी स्वादिष्ट हुआ है। इसके अलावा फिर पूसा सुनहरी के नाम तो भाई इस किस्म के जो कंद हैं वह थोड़े सुनहरे रंग के हुए हैं, या विटामिन ए और बीटा कैरोटीन तो भरपूर हुआ है। और फिर इसके अलावा फिर इसमें देखा जा के श्री भद्रा का नाम तो भी एक बहुत उन्नत और उच्च उपज देने वाली किस्म है जो कि किसान के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। और फिर इसके अलावा श्री अरुण और श्री वरुण ये और किस्म है भाई अपनी बहुत बढ़िया। ये केंद्रीय कंद अनुसंधान संस्थान CTCRI द्वारा विकसित करी गई है और श्री अरुण जल्दी पक है। और इसके अलावा फिर कोंकण अश्विनी का नाम तो है, ये भी बहुत बढ़िया किस्म है। ये देखे हैं कि महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र के लिए भैया एक कम अवधि में पकने वाली और बेहतरीन उपज देने वाली किस्म है। अन्य लोकप्रिय किस्में भाई इसमें वर्षा है, राजेंद्र है, शकरकंद पांच के नाम तो है, और काल मेघ और श्री वर्धिनी का नाम तो है। तो बहुत सी इसमें किस्में हैं भाई। यदि आपने देखा कि शकरकंद की खेती या फिर उन्नत किस्म के बीजा के बारे में आपने न्यू देखे हैं कि ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी हो तो भाई राष्ट्रीय बीज निगम के माध्यम से हम ऑनलाइन बीज ऑर्डर भी कर सके हैं। जब तक हमने बीज खरीदना है तो भाई हम बिल्कुल ऑनलाइन बीज का बीज मिल जाओ किसान भाई ने। भाई खेती न्यू देखे हैं कि अब अपनी बढ़िया ज़मीन हो हमारे पास खेत में, जल निकास वाली भूमि इसमें हो, जब जाके जो हर एक किस्म है वह ठीक पैदावार देगी। खेत की तैयारी की अगर बात करी जा है तो भाई वह बात है कि बढ़िया दो तीन गहरी जुताई करके मिट्टी ने नरम बना के फिर इस नाम ने बिजाई करनी है। देसी खादा की अगर बात आ जाए है तो सबसे बढ़िया यही रवा है कि भाई कुरड़ी की जो 5-7 ट्रेली है परे पास पुरानी खाद है वह गेर लें तो ठीक है। पुरानी खाद का मतलब यो है कि भाई लगभग 2-2.5 साल पुरानी, जिसमें बिल्कुल कालापन हो, बदबू इतनी नहीं आंदी हो तो तैयार खाद वह मानी जाए। और आजकल की कह रहे हैं किसान भाई कुछ जो रास्ते पर कुरड़ी पड़ी है या फिर कोई व्यवस्थित ढंग से हमने गोबर नहीं गिर रखा है, वर्षा में वैसे ही ऊपर का पानी चला जा उसके पोषक तत्व धूजा हैं, या ऊँ फिर की तकूण खोबा में गिर रखा है 6 महीने पुराना गोबर है वो दिक्कत करे आगे चाल की डिमक लिया हो तो ये ज़रूर ध्यान रखें। तो टाइम एक रागनी का फिर हो रहा तो भैया एक रागनी और सुनवाऊंगे। गायक कलाकार फिर एक बार फिर परवीर सिंह बोबला।
1: बात उस मौके की है जिस टाइम पवन अपनी फौज को सजा कर लड़ाई करने के लिए चल देता है और रास्ते में फौज ठहर जाती है। रात का टाइम हो जाता है और चकवा चकवी बोलते हैं और पवन उनकी बातों को सुनकर अंजना की याद आ जाती है और क्या कहता है, ये रात चकवा चकवी

या तो सुनी भैया नरागनी और देख लें घड़ी का नहीं भाई शिरागनी के साथ खेत खलिहान कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त हो रहा है। तो लेंगे सारे भण भैया ने राम राम।

अभी आपने सुना कार्यक्रम खेत खलियान। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब हमारे आज की ये दूसरी सभा यहीं समाप्त होती है। शाम को 5:30 बजे आपसे तीसरी सभा में फिर भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स, न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 5:30 हुए हैं। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की तीसरी प्रसारण सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवाओं के लिए दैनिक कार्यक्रम युवा संसार।

नमस्कार, युवा संसार सुन रहे सभी साथियों का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम लेकर मैं हूँ आज आपकी अपनी रेडियो दोस्त नंदिनी। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मधुर वाणी केवल शब्दों की मिठास नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने की सबसे सुंदर कला है। एक मीठी बोली जहाँ रिश्तों में प्रेम बढ़ाती है, वहीं कठोर वचन मन को चोट पहुँचा सकते हैं। और आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे कि मधुर वाणी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो आपको बता दें कि मधुर वाणी का मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मीठी और विनम्र वाणी न केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती है बल्कि समाज में प्रेम, सम्मान और सौहार्द भी बढ़ाती है। कहा जाता है कि शब्दों में अपार शक्ति होती है, वो किसी के मन को प्रसन्न भी कर सकते हैं और आहत भी। मधुर वाणी से बोले गए शब्द लोगों के हृदय में अपनापन और विश्वास उत्पन्न करते हैं। भारतीय संस्कृति में सदैव विनम्र और शिष्ट भाषा के प्रयोग पर बल दिया गया है। संत कबीर दास जी ने भी कहा है कि मीठे वचन मनुष्य के क्रोध को शांत कर देते हैं और संबंधों में मधुरता लाते हैं। तो वहीं परिवार, विद्यालय, कार्यस्थल और समाज, हर जगह मधुर वाणी व्यक्ति की पहचान बनती है। जो व्यक्ति नम्रता और प्रेम से बात करता है वो सभी का प्रिय बन जाता है। मधुर वाणी केवल अच्छे संस्कारों का प्रतीक नहीं है बल्कि सकारात्मक सोच, धैर्य और संवेदनशीलता को भी दर्शाती है। कठोर शब्द जहाँ रिश्तों में दूरी पैदा करते हैं, वहीं मीठी वाणी टूटे हुए संबंधों को भी जोड़ने की क्षमता रखती है। इसलिए हमें सोच समझकर विनम्रता और सम्मान के साथ बोलना चाहिए, क्योंकि मधुर वाणी ही मानवता और अच्छे चरित्र की सच्ची पहचान है। और एक बार हम फिर से कह सकते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। और कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और सुनवाते हैं आपको ये पहला गीत, जो है फिल्म जॉनी मेरा नाम से। आवाज़ें हैं किशोर कुमार और उषा खन्ना की। गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने और संगीत दिया है कल्याण जी, आनंद जी ने।

साथियों, अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत जो था फिल्म जॉनी मेरा नाम से। आवाज़ें थीं किशोर कुमार और उषा खन्ना की। गीत के वो लिखे थे इंदिवर ने और संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। अब कार्यक्रम में बात कर लेते हैं कि समय हमारे जीवन का सबसे अनमोल धन है। जो व्यक्ति समय की कद्र करता है सफलता भी उसी के कदम चूमती है। इस बात में कोई दोराय नहीं है साथियों। अब बात कर लेते हैं कि समय का हमारे जीवन में क्या महत्व है। समय एक ऐसी अमूल्य संपत्ति है जो एक बार बीत जाने के बाद कभी वापस नहीं आता। धन, वस्तुएं और अन्य संसाधन दोबारा प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय लौट कर नहीं आता। इसलिए कहा जाता है कि समय ही जीवन है। मनुष्य के जीवन में सफलता, अनुशासन और प्रगति का आधार समय का सही उपयोग ही होता है। जो व्यक्ति समय की कीमत समझता है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। विद्यार्थी के लिए समय पढ़ाई और भविष्य का निर्माण माध्यम है और किसान के लिए समय खेती का आधार है। और हर कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए समय सफलता की कुंजी है। समय हमें ये सिखाता है कि हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि आलस्य और टाल मटोल व्यक्ति को पीछे कर देते हैं। महान व्यक्तियों ने भी समय के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। साथियों, समय प्रकृति की तरह निरंतर चलता रहता है, वो किसी के लिए नहीं रुकता। और समय का पालन करने वाला व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। आज के आधुनिक युग में समय का महत्व और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि तेजी से बदलती दुनिया में वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है जो हर क्षण का सही उपयोग करना जानता हो। और ऐसा कहा भी गया है कि बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए हमें हर पल का सही उपयोग करना चाहिए। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं अपने इस अगले गीत के साथ, जो है फिल्म नया दौर से। गाया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। गीत के बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया है ओपी नैयर ने।

साथियों, अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत जो था फिल्म नया दौर से। आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। गीत के बोल लिखे थे साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया था ओपी नैयर ने। तो आज के कार्यक्रम में हमने बात की कि मीठी बोली का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अब बात कर लेते हैं कि संस्कार और शिष्टाचार भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और संस्कार और शिष्टाचार मानव जीवन की वो अमूल्य धरोहर हैं जो व्यक्ति के चरित्र, व्यवहार और व्यक्तित्व को सुंदर बनाते हैं। संस्कार हमें अच्छे विचार, नैतिकता, अनुशासन, बड़ों का सम्मान, छोटों से प्रेम तथा समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का ज्ञान देते हैं। और उम्मीद करते हैं साथियों, आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे आपसे किसी और कार्यक्रम में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा संसार, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर पर। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।
1: आप सुन रहे हैं AIR रोहतक और अब समय हो गया है ऑर्गन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक उपहार का।

0: नमस्कार, मैं मीनू ऑर्गेन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में आपका स्वागत करती हूं। ऑर्गेन इंडिया दिल्ली की एनजीओ पराशर फाउंडेशन की पहल है जो अंगदान, उत्तक दान और देहदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम करती है। आज के कार्यक्रम में हम अंगदान से जुड़ी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आए हैं।
1: दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ और मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है राजेंद्र देवरा और ये माउंट आबू के पास सिरोही जिले से आते हैं। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। राजेंद्र जी, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपके बारे में पूरा तो नहीं बताया, बट थोड़ा सा बताया कि आप एक किडनी रिसिपिएंट हैं और कुछ साल पहले आपको किडनी फेलियर का सामना करना पड़ा था, तो थोड़ा सा आप पहले अपने बारे में बताइए। आप टीचर हैं, क्या पढ़ाते हैं, आप कहाँ रहते हैं, कौन कौन आपकी फैमिली में है, और फिर आप अपनी किडनी की कहानी बताइए कि कैसे ट्रांसप्लांट तक बात पहुंची, कैसे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई।
2: मेरा नाम राजेंद्र सिंह है सर, मैं राजस्थान सिरोही जिले से हूं। अभी राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर मैं एज ए प्राइमरी टीचर गांव के अंदर ही पद स्थापित हूं। मेरे परिवार में मेरे फादर मदर और एक ब्रदर और एक सिस्टर है। 2017 के अंदर सर मुझे ये प्रॉब्लम है किडनी फेलियर का, वो फेस करना पड़ा। उससे पहले भी प्रॉब्लम थी लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। जब 2017 में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और मैंने चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी जो किडनी है दोनों वो श्रिंक हो गई है और बीपी भी उस समय हाई रहता था और सर कई तरह की और भी कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम मुझे देखनी पड़ रही थी। तो 2017 में फाइनली डॉक्टर ने बताया कि ट्रांसप्लांट के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। मेरे लिए ये शॉकिंग था कि सबसे जो एक नशा कह सकते हैं वो नशा मेरा था खेलने का
1: जी।
2: स्कूल टाइम से मैंने फुटबॉल नेशनल खेला है और कई ऐसे गेम्स हैं जो वॉलीबॉल क्रिकेट भी मैं रेगुलर खेलता और अपनी फिटनेस पे खूब ध्यान रखता था। तो ये शॉकिंग था, लोग भी कहते हैं कि ये नशा करने से ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, तो इस तरह की व्यसन की मेरी कोई आदत नहीं थी तो मुझे भी लगा कि ऐसे कैसे हो गया। फिर अलग अलग डॉक्टर से राय लेने के बाद गुजरात अहमदाबाद अपोलो हॉस्पिटल के अंदर मैंने मेरा ट्रांसप्लांट करवाया और उसमें मेरे फादर है उन्होंने मुझे किडनी डोनेट किया।
1: कोई डॉक्टर ने कोई स्पेशल वजह बताई कि बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन फिजिकल एक्टिव रहने के बिना किसी
2: सर डॉक्टर से मैंने भी सलाह की तो उन्होंने बताया कोई ऐसा विशेष रीजन नहीं है। तो जब मैं मेरी प्रॉब्लम लेके गया तो मेरा बीपी है वो 180-190 रहता था लेकिन सर 180-190 के अंदर भी मैं नॉर्मल फील करता था। तो फाइनली ये निष्कर्ष पे निकले कि डॉक्टर का कहना है कि आपकी बॉडी के अंदर बीपी है वो कम से कम 3-4 साल से रहा होगा। तो मैं भी ये अंदाजा लगाता हूँ कि सर 3-4 साल पहले 2017 से पहले मेरे मदर है वो थोड़े बीमार रहे, साल भर मैंने उनको हैंडल किया तो हो सकता है स्ट्रेस की वजह से वो बीपी बॉडी में आया और उसका कोई सिम्टम्स है वो मुझे देखने को नहीं मिला लेकिन अंदर ही अंदर किडनी को डैमेज कर गया।
1: फैमिली में भी कोई हिस्ट्री नहीं थी?
2: नहीं सर, फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं है।
1: श्रोताओं, मैं ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चले कि बीइंग अ स्पोर्ट पर्सन या फिजिकल एक्टिव रहने के बावजूद, सब चीजें सही करने के बावजूद भी कभी कभी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, तो ये कभी भी हो सकता है। इसीलिए हम ये शोज ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि आपको हमारे बताने से शायद इतना फर्क ना पड़े लेकिन जिसने ये सब कुछ सफर किया है उसके बताने से आपको जरूर फर्क पड़े। चलिए हम अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो आपको ये बताया गया डॉक्टर के द्वारा एंड ऑब्वियसली डाउट तो आया होगा कि हो सकता है कुछ रिपोर्ट में गलती हो, कहीं डॉक्टर की गलती हो या कुछ और।
2: मुझे लगा कि ऐसे नहीं हो सकता और कुछ मिराकल हो जाए या ऐसे मेरी किडनियां ठीक हो जाए। वैसे एक पढ़ा लिखा होने के बाद और एक टीचर के बाद में थोड़ा बहुत नॉलेज रखने के बाद मुझे पता था कि ये चीजें जो है वो मेडिकली है और दवाइयां से ठीक हो सकती है। तो मैंने अलग अलग डॉक्टर से कंसल्ट किया और एक सबकी एक राय निकल के आई कि आपको ट्रांसप्लांट करवाना ही पड़ेगा। फाइनली सर फिर मैं ट्रांसप्लांट के लिए गया।
1: राजेंद्र जी, जब आपको फाइनली आपने डिसाइड कर लिया कि आप किडनी ट्रांसप्लांट ही करवाना है, तब क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ी उस टाइम पर?
2: सर ये फैमिली के लिए भी शॉकिंग था, बाकी मेंबर्स है वो नर्वस हो गए थे जब उन्होंने ये सुना कि किडनी डैमेज होना, उसका ट्रांसप्लांट होना। मतलब ट्रांसप्लांट क्या होता है सर, ये बेसिक ये डेफिनेशन भी किसी को पता नहीं थी। तो एज ए स्पोर्ट्स पर्सन मैं मेंटली और फिजिकली काफ़ी मजबूत था और ये समझा कि जो भी प्रॉब्लम है वो भगवान ने दी है और उसको फेस करना ही है। तो मेंटली फिजिकली काफ़ी स्ट्रांग रह के परिवार के जो बाकी मेंबर भी जो इमोशनली कमज़ोर पड़ रहे थे उनको भी मैंने मोटिवेट किया, ये जो पीड़ा है या इससे हम बाहर निकल जाएंगे लेकिन एक बार इसको अपने को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो इसका इलाज है वो लेना ही पड़ेगा। तो सर फाइनली मतलब मैंने अपने आप को खूब मजबूत बनाए रखा और परिवार का, मित्रों का, रिश्तेदारों का भी मुझे खूब सपोर्ट मिला और इस वजह से मेरा ट्रांसप्लांट है वो सक्सेस हुआ।
1: आपने कभी कैडेवर के बारे में नहीं सोचा, कैडेवर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में?
2: सर कैडेवर के बारे में मुझे पता था और मैंने फाइनली जब ये तय किया काफ़ी लोगों से चर्चा के बाद कि मुझे गुजरात के अंदर ही ट्रांसप्लांट करवाना है, तो सर बॉडी है वो लगभग साल भर मेरा जो डायलिसिस चला तो उसमें डायलिसिस भी मुझे ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा था, हर दूसरे दिन तीसरे दिन मुझे बेहोशी हो जाती, तो ये डॉक्टर का भी कहना था कि आप जितना जल्दी हो सके ट्रांसप्लांट करवाएं। तो सर मुझे 2-3 डेट मिली ट्रांसप्लांट की, तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे, इस तरह से डेट भी है वो आगे पोस्टपोन होती रही, क्योंकि जब भी ट्रांसप्लांट की डेट दी जाती कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाता और मुझे दूसरे डॉक्टर के पास रेफर कर दिया जाता है, और इस तरह से टीबी भी डिटेक्ट हुआ, उसके बाद दांत के अंदर टीथ के अंदर कैविटी पाई गई, तो इस तरह से मेरा ट्रांसप्लांट है वो सर साल भर के लिए पोस्टपोन हो गया और मुझे लंबे समय तक हॉस्पिटल स्टे करना।
1: आपने बताया कि आपके फादर फाइनली रेडी हुए थे डोनेट करने के लिए, तो क्या एज थी फादर की उस टाइम?
2: उस समय सर फादर की एज लगभग 51-52 के आसपास थी, और फादर का कोई वैशन नहीं है, वो फिजिकली फिट है, उनको शुगर बीपी किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक कि वो चाय भी नहीं पीते हैं, सुबह वॉकिंग करना वगैरह, फिजिकली फिट, योगा, उस हिसाब से बाकी मेंबर भी रेडी थे, लेकिन जब वो मैचिंग ब्लड मैचिंग वगैरह ग्रुप के

0: हिसाब से फाइनली ये तय हुआ कि फादर ने बोला कि मैं किडनी दूँ।
1: किस तरह का पेपर वर्क करना पड़ा आपको इसके लिए?
0: सर पेपर वर्क में काफ़ी कठिनाई आती है आजकल फ्रॉड की ये चीज़ें देखते हुए। पहले कई खबरें देखने को मिलती थी कि किडनी है उसकी खरीद फरोख्त हो गई है,
1: जी
0: तो इस तरह के मामलों को रोकने के लिए विशेषकर मैंने जो गुजरात के अंदर सर अनुभव किया है कि सारा काम है वो फेयरली होता है। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बनाने में कम से कम 3 महीने लग जाते हैं। हाई
1: जी
0: कोर्ट के जज की कमेटी बैठती है, डॉक्टर्स बैठते हैं, साइकोलॉजिस्ट है, वो डोनर रिसिपिएंट का अलग अलग उनका इंटरव्यूज लेते हैं और फाइनली डॉक्यूमेंट तैयार होते सबमिट होते, तो इस प्रक्रिया में लगभग 3 महीने लग जाते हैं।
1: दोस्तों, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर फैमिली में से भी कोई डोनेट करने तैयार होता है तो भी आपको बहुत सारे परीक्षाएं देनी पड़ती हैं और उसके बाद ही परमिशन दी जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और अंगों की खरीद फरोख्त को बढ़ावा देते हैं, जो कि हमारे इंडिया में और लगभग लगभग सारी दुनिया में पूरी कानूनन जुर्म की श्रेणी में आता है, कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। तो जब भी कभी किसी को किडनी या लीवर की ज़रूरत होती है, वो लोग सोचते हैं कि हम तो पैसे देकर किडनी या लीवर ले लेंगे, बट जो कि कानूनन जुर्म है और बिल्कुल गलत है, हमें इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ऑनलाइन हम देखते हैं कि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आपको देखने मिल सकते हैं, अगर कभी किसी को ज़रूरत ऐसी हो और वो ऑनलाइन सर्च करें तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आपको देखने मिल जाएंगे कि किडनी के इतने रुपए में मिल जाएगी किडनी, या फिर आप किडनी डोनेट करने की कोशिश कर रहे हो कोई लोन चुकाने के लिए या अपने परिवार की स्थिति सुधारने के लिए, तो आपको ऐसे हज़ार एडवर्टाइजमेंट्स मिल जाएंगे, विज्ञापन मिल जाएंगे, क्योंकि ये प्रॉमिस करते हैं कि आपको इतना अमाउंट मिलेगा। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि सब कुछ स्कैम है, फ्रॉड है, ऐसा कुछ एक्चुअली में नहीं होता है। आपसे रजिस्ट्रेशन या डॉक्यूमेंटेशन की फ़ीस के चार्ज पर, फीस के नाम पर कुछ चार्ज अमाउंट चार्ज किया जाएगा और वो अमाउंट जब आप दे देंगे उन्हें तो वो लोग गायब हो जाएंगे, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको अल्टीमेटली आप और परेशानी में बढ़ जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को अवॉइड करते हुए हमें अंगदान के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अंगदान के लिए आगे आएँ और ऐसे मरीजों की जान बचा सकें, उन लोगों को अंग जल्दी से जल्दी मिल सके, ताकि वो ऐसे इलीगल कामों के लिए आगे जाने की कोशिश ही ना करें। बात कर रहे थे कि उनके किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में और कई अच्छी चीज़ें हमें पता चली, जैसे कि लीगल वर्क क्या होता है और कितने महीने लगते हैं इसमें और कैसे किडनी खराब हो सकती है। तो चलिए हम इस चर्चा को जारी करते हैं आगे राजेंद्र जी के साथ। राजेंद्र जी, आप तो बहुत लकी थे कि आपको फैमिली में हमारे डोनर मिल गया और कैडेवर के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ा, लेकिन हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं अंगदान को लेकर, बहुत सारे कुप्रचार हो रखा है इस चीज़ के बारे में, जिसके कारण लोग अंगदान के लिए आगे नहीं आते। तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी?
0: सर ऐसे लोगों के लिए मेरा मैसेज यही है कि जैसे मैं मेरा एग्जांपल दूं तो मेरे फादर मेरे डोनर हैं। मेरा ट्रांसप्लांट होने के बाद मेरे गांव के आसपास 10-20 किलोमीटर की रेंज में ऐसे पेशेंट मिले जिनको किडनी फेलियर का सामना करना पड़ रहा है। तो सर एज ए स्पोर्ट्स पर्सन और सोशल वर्कर भी हूँ मैं, तो आसपास के लोग मुझे जानते हैं। जब उनको पता लगा कि मेरा ये किडनी ट्रांसप्लांट हो रखा है तो आसपास यहाँ तक कि सर 100 किलोमीटर के दायरे में भी किसी को प्रॉब्लम हुई है मेरे पास फोन आते हैं, और एज ए सोशल वर्कर मैं उनके साथ हॉस्पिटल भी जाता हूँ, कन्विंस भी करता हूँ। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा सर, मेरे एक फ्रेंड थे, पहले से मैं उनको जानता था और उन्हें किडनी फेलियर का सामना करना पड़ा और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम है वो जो फोन से मुझे शेयर की, बोला कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ कि आगे क्या किया जाए, कैसे होगा। मैंने उनको बोला कि आप मुझे नहीं मिलिए, मैं आपके घर पे आता हूँ। सर मैं उनके घर पे गया और उनको सारी चीज़ें हैं वो क्लियर बताई कि आपको ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा इसकी, या ये प्रोसेस है, आप अपने घर से कोई डोनर तैयार कीजिए। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि उनकी फैमिली में उनके फादर है वो बिल्कुल स्वस्थ थे, किडनी दे भी सकते थे, लेकिन उनकी फैमिली में उनको एज ए डोनर कोई तैयार नहीं हुआ। मैं उनके फादर से 2-3 बार मिला तो फाइनली उन्होंने ये बोला कि मैं डोनेट करूंगा और मैं मर जाऊंगा। तो सर बड़े दुर्भाग्य से कहता हूँ कि उसके 1-2 साल बाद दीपावली के दिन जो मेरे मित्र थे उनकी डेथ हो गई डोनर नहीं मिलने की वजह से, पर जस्ट 27 ईयर ओल्ड। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अपने आसपास के जो डोनर हैं उनसे आप मिलिए, एज ए डोनर आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। भगवान ने हमारे को 2 किडनियां दी है, जितना 2 किडनियां काम करती है उतना ही काम 1 किडनी करती है। तो एज ए डोनर आप अगर किसी की जान बचा सकते हैं तो जरूर बचाएं, डोनर को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ रिसिपिएंट जो जिसने भी ऑर्गन लिया है उसको लाइफ टाइम कुछ मेडिसिन और प्रिकॉशंस है वो रखने पड़ते हैं। दूसरा ये है कि के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट को भी जो डोनर है उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, इस तरह की कुछ एक्टिविटीज लोगों को प्रेरित कर सके, इस तरह के आयोजन है वो अगर हम बढ़ाएं और लोगों के अंदर जागरूकता लेके आए तो अंगदान के प्रति है वो निश्चित रूप से जागरूकता है वो लोगों में आ सके।
1: बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, आपने हमें इतना समय दिया।

0: और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां दी। दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं और हम आशा करते हैं कि हमारे शो ने आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में हेल्प जरूर की होगी, और हम आशा करते हैं कि आप भी अंगदान के लिए जरूर आगे आएंगे। अगर आप अंगदान के लिए रजिस्टर होना चाहते हैं तो आप www.organindia.org पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और एक डोनर कार्ड हासिल कर सकते हैं, जो कि आपको बाद में आपकी फैमिली को अंगदान करने के लिए जो कोऑर्डिनेशन होता है उसमें बहुत हेल्प करेगा, बहुत इजी बना देगा प्रोसेस। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। अगले शो में जल्दी से हाजिर होंगे हम एक नई कहानी को लेकर, एक नई प्रेरणा लेकर। धन्यवाद।
1: फिर लौटेंगे ऑर्गन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में।
2: दोस्तों, अंगदान से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप ऑर्गन इंडिया की वेबसाइट organindia.org पर जा सकते हैं या उनके टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-120-3648 पर संपर्क कर सकते हैं। अंगदान के बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सबको प्रेरणा दें।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें, अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: धन्यवाद। नमस्कार।
2: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन, ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क, पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन, उसके मालिक, कर्मचारी, प्रबंधन, प्रायोजक एवं सहयोगी, जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है, वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते।
3: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम ऑर्गन इंडिया, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। शाम की 6 बजने को हैं, अब हिंदी समाचार होंगी। समाचार हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली से।

0: समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल तथा समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों के बारे में दृश्यों के साथ जानकारी को लेकर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक प्रायोगिक आधार पर बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। क्वाड देशों ने भारत अमरीका महत्वपूर्ण खनिजों की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका क्वाड साझेदारी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग ने कहा कि क्वाड ने क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अब तक की सबसे मजबूत प्रतिबद्धता की घोषणा की है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। उन्होंने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृह मंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण की भी शुरुआत की। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंत राय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक आज लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 419 अंक गिरकर 76,010 पर बंद हुआ। निफ्टी 118 अंक गिरकर 23,914 पर आ गया। IPL क्रिकेट में आज पहले क्वालिफायर में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ पर। शाम के 6:05 और 10 सेकंड हुए हैं। अब आपको दे दें कार्यक्रम विवरण।

शाम 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर कुलदीप से बातचीत का विषय रहेगा वर्षाकालीन भिंडी की काश्त। 7 बजे ग्रामीण संसार में बातचीत आप सुन पाएंगे डॉक्टर पवन कुमार से, बच्चों में टीकाकरण क्यों आवश्यक। फिल्म संगीत सुनिएगा शाम 7:30। 8:25 पर सुगम संगीत आप सुन पाएंगे। रात्रि 10:30 मन चाहे गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे, जो कि रहेगा आप श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम। और एक फिल्म से कार्यक्रम सुनिएगा रात 9:15 पर। ये थे आज के शेष कार्यक्रम।

आज के शेष कार्यक्रम आपने जानी और अब आपको बता दें कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में चर्चा का विषय। यह कार्यक्रम सुनिएगा कल रात 9:30 बजे, जिसे रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रातः 7:15 पर हमारी सेहत कार्यक्रम में डॉक्टर योगेंद्र यादव से भेंटवार्ता पाएंगे। 7:25 पर सुबह सवेरे कार्यक्रम प्रसारित होगा। दोपहर 2:45 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां। शाम 5:30 बजे युवा संसार में करियर काउंसलिंग विशेष सुना जा सकता है।

शाम 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में भेंटवार्ता एक किसान से। आप सुनेंगे ग्रामीण संसार में शाम 7:00 बालक मंडली फोन इन कार्यक्रम प्रसारित होगा। दोपहर 2:30 पर खेत खलिहान में चर्चा रहेगी टमाटर फसल की देखभाल।

श्रोताओं, पत्रों पर आधारित मनचाही गीत कार्यक्रम लेकर आएंगे रात्रि 10 बजे आपके अनुरोध पर। पत्रों पर आधारित एक और फिल्म संगीत का कार्यक्रम प्रसारित होगा दोपहर 1:10 पर। फिल्म संगीत सुनिएगा शाम 7:30 बजे, सुगम संगीत रात्रि 8:25 पर और मन भावन फिल्म संगीत कार्यक्रम सुबह 9 बजे। एक फिल्म से कार्यक्रम होगा रात्रि 9:15 पर। ये थी कार्यक्रम रूपरेखा।

0: 6:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर।

0: हरियाणा के मेधावी विद्यार्थियों को इसरो की दुनिया से रूबरू करवाया जाएगा। विद्यार्थियों में विज्ञान, तकनीक और नवाचार के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए विशेष योजना तैयार की गई है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा, आतंकवाद से निपटने के लिए आतंकवादी रोधी दस्ते का गठन किया जाएगा। और लेफ्टिनेंट जनरल अजीत सिंह साही ने चंडीमंदर सैन्य स्टेशन में पश्चिमी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार ग्रहण किया। अब समाचार विस्तार से। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि ये पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवनी नहीं है, बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि ये पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्हें बधाई दी।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना, और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गत 12 वर्ष भारत का स्वर्णिम काल सिद्ध हुए हैं। इस दौरान देश ने विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है। देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई है और जनता का शासन में विश्वास बढ़ा है।
2: ये जो हिंदुस्तान के 12 साल नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में पूरे हुए हैं, ये भारत का स्वर्णिम युग है। इसमें हर क्षेत्र में भारत ने तरक्की की, जन विश्वास बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, डिजिटल क्रांति आई है, हमारी आर्थिक व्यवस्था को 11वें नंबर से उठा के 5वें नंबर पर कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान का जो इमेज था, डब्बू का इमेज था, आतंकवादी आते थे, गोलियां चलाते थे, मारते थे, और हमारे नेता केवल श्रद्धांजलियां दे के अपने अपने ड्राइंग रूमों में चले जाते थे, उसको बदला है। अब अगर उन्होंने हरकत की है तो पाकिस्तान में घुस के मारा है, सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हैं।
0: हरियाणा की शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा आज पंचकुला स्थित शिक्षा सदन में शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट में विशेष प्रावधान करते हुए मेधावी विद्यार्थियों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की दुनिया से रूबरू कराने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा विद्यार्थियों में विज्ञान, तकनीक और नवाचार के प्रति रुचि बढ़ाने हेतु वर्ष 2026-27 के लिए यह विशेष योजना तैयार की गई है। इस पहल का उद्देश्य बढ़ाना है। योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों, शिक्षकों और अन्य मेधावी छात्रों को इसरो के विभिन्न केंद्रों का भ्रमण कराया जाएगा, जहां वे अंतरिक्ष विज्ञान, सैटेलाइट तकनीक और रॉकेट प्रणाली जैसी आधुनिक तकनीकों की जानकारी प्रत्यक्ष रूप से हासिल कर सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को आधुनिक विज्ञान और तकनीक से जोड़ने के लिए लगातार नए प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि हरियाणा में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी बच्चों को सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है।
2: तो हमारे बच्चे जिन्होंने 10वीं में और 12वीं में टॉप किया, हमने आज ऐसे बच्चों को सम्मानित किया शिक्षा विभाग ने, जो कुल मिला के 22 बच्चे बने प्लस टू से भी और 10वीं से, उनको सम्मानित किया आज।
0: उन्होंने 2026 के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों में बेटियों द्वारा शानदार प्रदर्शन करने पर खुशी व्यक्त करते हुए सभी छात्राओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा है कि आतंकवाद से निपटने के लिए आतंकवादी रोधी दस्ते का गठन किया जाएगा। श्री सिंघल आज पंचकुला पुलिस मुख्यालय में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। श्री सिंघल ने इस बारे विस्तृत जानकारी देते हुए कहा,
3: एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का गठन किया जा रहा है हरियाणा में, शायद 1 जून से ही लागू हो जाए, जिसमें हम जितने भी टेरर रिलेटेड केस है उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड ट्रेंड वेल इक्विप्ड फोर्स बनाएंगे जो कि एमएचए की गाइडलाइंस के हिसाब से काम करेगी, और जिसमें एक थाना हम पंचकुला और एक थाना हम गुड़गांव बनाएंगे और सारे टेरर रिलेटेड केसेज हम उसमें शिफ्ट करेंगे।
0: पुलिस महानिदेशक ने बताया कि पुलिस विभाग को 750 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है, इससे अगले 2 वर्षों में पुलिस संरचना को मजबूत करने पर खर्च किया जाएगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2024 के आंकड़ों पर उठ रहे सवालों को लेकर श्री सिंघल ने कहा कि हरियाणा में हर प्रकार के अपराध की FIR दर्ज की जाती है जिससे आंकड़े अधिक दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में बिजली चोरी और लापता मामलों में FIR दर्ज नहीं होती, जबकि हरियाणा में ऐसे मामलों को भी रिकॉर्ड में लाया जाता है। उन्होंने बताया कि दादरी, यमुनानगर और झज्जर के चर्चित हत्याकांड मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं राम नरेंद्र सिंह के घर में सेंधमारी मामले में भी 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने आंकड़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर हरियाणा को अपराध में 4थे या 5वें स्थान पर दिखाने की कोशिश की। पुलिस महानिदेशक के अनुसार यदि बिजली चोरी और लापता मामलों को अलग कर दिया जाए तो हरियाणा अपराध के मामले में 9वें या 10वें स्थान पर आता है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 से 5 साल में हरियाणा में अपराध का ग्राफ कम हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल हरजीत सिंह साही ने आज चंडीमंदर सैन्य स्टेशन में पश्चिमी कमान मुख्यालय के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत आहूजा का स्थान लिया है जिन्होंने सेना मुख्यालय में महानिदेशक रणनीतिक योजनाकार का पदभार संभाला है। पंजाब पब्लिक स्कूल अनाभा और भारतीय

0: सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल शाही को दिसंबर 1988 में राजपूत रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन प्राप्त हुआ था। उन्हें उत्तरी पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों सहित सियाचिन ग्लेशियर में व्यापक अनुभव प्राप्त है। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज पंचकुला में PGIMER व शिव कांवड़ संघ के संयुक्त तत्वाधान से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिले भर से आए नौजवानों और पुलिसकर्मियों ने बढ़ चढ़ कर योगदान दिया। समाचार लिखे जाने तक लगभग 310 से अधिक रक्तदाता रक्तदान कर चुके थे। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव अजय कुमार घनगस ने बताया कि रक्तदान शिविर न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल के मार्गदर्शन में लगाया गया।
1: आज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस दीपक सिब्बल साहब और मेंबर सेक्रेटरी जगदीप लोहान साहब की अध्यक्षता में हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के प्रांगण में एक कैंप लगा है। हमें PGI चंडीगढ़ की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि नॉर्मली मई और जून के महीने में ब्लड की काफी कमी हो जाती है, जिससे पेशेंट्स का जो मेडिकेशन है वो अफेक्ट होती है। उस रिक्वेस्ट के बाद आज ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है और मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा। अभी तक 250 से ज्यादा जो लोग हैं वो ब्लड डोनेट कर चुके हैं। इसी एंथुजियाज्म के साथ जल्द ही हम दूसरा ब्लड कैंप भी लगाएंगे और इस कैंप के साथ ही हमने जो लीगल एड है और जो अदर सर्विसेज हैं उसके बारे में भी हमने लोगों को जागरूक किया है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 वर्ष का काल भारत का स्वर्णिम काल सिद्ध हुआ है। हरियाणा के मेधावी विद्यार्थियों को इसरो की दुनिया से रूबरू करवाया जाएगा। विद्यार्थियों में विज्ञान, तकनीक और नवाचार के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए विशेष योजना तैयार की गई है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंगल ने कहा, आतंकवाद से निपटने के लिए आतंकवादी रोधी दस्ते का गठन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
2: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर, न्यूज ऑन AIR और DTH पर। शाम के 6:20 और 13 सेकंड हुए हैं। आइए सुनते हैं कृषि जगत कार्यक्रम।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सारे भण भाइयों ने आनंद भाई की राम राम। और ये देखे हैं कि भाइयों फिलहाल मौसम की अगर बात करी जा तो भाई तापमान अपनी चरम सीमा पर है, गर्मी बहुत है। और जो आने वाला टाइम है भाई, 2-3 दिन मौसम खुशनुमा है, बिल्कुल साफ है, तापमान में बढ़ोतरी है। लेकिन भाइयों अपनी जो 29 तारीख है उसमें ये देखे हैं कि लगभग पूरा हरियाणा प्रदेश में कितने बादलवाई, कितने गरज चमक के साथ बूंदाबांदी। तो भाई इस हिसाब से अपनी जो भी दिनचर्या की फसल बाड़ी के काम हैं तो उनका अपने भाई कितने पानी देना है, कितने स्प्रे करनी है तो ध्यान रख के चलें। और ये देखे हैं कि भाई गर्मी बहुत सी पड़ रही है, यूँ देखे हैं कि भाई जो पशुधन है उसकी भी बहुत संभाल ज़रूरी है, क्योंकि

0: साथ साथ भाई खनिज मिश्रण की जो मात्रा है 60 बाखर बंटा है वो हमने मिश्रित देना है, ताकि पशु की तासीर जो की तो बनी रहे और दुधारू पशु में कमी नहीं आन पावे। और इसके साथ साथ है जो भी खेती बाड़ी के काम है भाई, दिनचर्या के काम है, कि तय खाली ज़मीन है, खाली ज़मीन में भाई इस टाइम के ऊपर क्योंकि जेठ का बिना है, और अब की बार तो भाई ये भी बताऊँ कि दो जेठ्स हैं, तो जो देखें कि जो खाली ज़मीन है उसमें भाई बिल्कुल ही गहरा बान गहरी जुताई अगर हम कर दी हैं तो जो नीमाटोड की समस्या है वह काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। और नीमाटोड है, सूत्रकृमि है भाई, गहरे बान की अपने अलग महत्व है, क्योंकि गर्मी का टाइम में तेज़ हवा तो इपकड़ा चल रहे हैं और आगे भी थोड़ी चलने की संभावना है, तो भाई उडार का रेत की तय खुड्डा में भरेगा। अपने बुजुर्ग कह कर दे कि भाई जो उडार का रेत है अगर वो खुड्डा में भरेगा, गहरा बान में डले पाटेंगे और लू लागेंगी ज़मीन के, तपिश लागेगी, तो उसमें जो ख़ास तौर पर इन्हें देखे हैं कि चाहे वो कोई खरपतवार के बीज हों उसमें, या फिर कोई सूत्रकृमि की समस्या हो, कोई कीड़ा बीमारी हो, तो ज़मीन की काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। और भाई टाइम टाइम पर आपने ये देखे हैं कि खाली ज़मीन में बहुत से काम करने के हों हैं, चाहे वो किसान भाई की तो गोड़ी का काम भी चल रहा है, कि तो लेजर लेवलर का काम भी चल रहा है, खेता नेक सार कर रहे हैं, ताकि जो आने वाला टाइम है भाई उसमें कितने भाई धान लगाओगे तो पानी की जो किल्लत है वह कम हो जाएगी। कुछ भाई नई तकनीक है अपनी भाई DSR विधि से भी धान की बिजाई कर रहे हैं, तो ध्यान जरूर रखें। और कितने न कितने भाई अपना हरी खाद का भी महत्व तो अलग हो है, किसान भाई दौरे जड़े पर्याप्त पानी है उड़े हरी खाद भी किसान भाई ले रहे हैं, तो उसने भाई डेढ़ डेढ़ दो दो फुट की होंदी है भाई, ज़्यादा दिन ना लगाऊँ हमने अभी ना, डेढ़ एक महीने की उसने हम बाकी ज़मीन में दबा दें, ताकि वह गली सड़ी खाद है अच्छे तरीके से वह काम कर जावे। और भाई भैया ने बातचीत भी सुनवाऊंगे तो कुछ बाजार भाव आ रहे हैं भैया, तो ये बता दी हैं गेहूं का भाव रहा है हरो तक की मंडी में 2560, पानीपत में रहा है 2540, गुड़गांव में 2510 रुपये प्रति क्विंटल का। चने के भाव रहे हैं हरो तक में 6300 रुपये, पानीपत में 6900 और गुड़गांव में 6800 रुपये प्रति क्विंटल का। जौ के भाव रहे हैं भाई रोहतक की मंडी में 2350 का, पानीपत में 2350 और गुड़गांव में 2500 रुपये प्रति क्विंटल का। और मूंग के भाव रहे हैं भाई रोहतक की मंडी, मूंग रही है 9750 रुपये, पानीपत में रही है 9850 रुपये, गुड़गांव में रही है 9900 रुपये प्रति क्विंटल का। तो ये कुछ बाज़ार भाव थे भाई। और ये देखे हैं कि भाई जो ई आने वाला टाइम है, क्योंकि बरसात का टाइम भी आओगा, बरसात का टाइम में भाई जिन भैया ने कुछ देखे हैं कि पर्याप्त ताल है और जो भिंडी फसल है वह अपनी बहुत बढ़िया पैदावार दे दे, तो एक पूर्व प्रसारित बातचीत है इसके ऊपर, वर्षाकालीन भिंडी की कास्ट, डॉक्टर हंसराज जी अपने चौपाल में आए थे, तो भैया ये बातचीत सुनवा दे हैं।
1: भाई आज एक बातचीत करांगे वर्षाकालीन भिंडी की कास्ट और जानकारी देने खातिर अपने स्टूडियो में रहे हैं डॉक्टर हंसराज जी। आप हैं सहायक वैज्ञानिक सब्जी विज्ञान विभाग हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार तापा। तो डॉक्टर साहब स्टूडियो में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद अशोक भाई।
1: डॉक्टर साहब बात है, क्योंकि वे बरसात शुरू हो जाएगी,
2: हाँ जी,
1: और उसमें हमने मान लिया हम खाद्य फसलों का भी बात करा हाँ, चाहे उसमें हमने सब्जी की बात करा, चाहे हम तिलनी दलनी किसी भी
2: हाँ
1: फसल
2: जी,
1: की बात करा,
2: हाँ
1: तो
2: जी,
1: उसमें किसान भाई ने तैयार रहना चाहिए।
2: बिल्कुल जी,
1: और आज का हमारा विषय है कि वर्षाकालीन भिंडी का,
2: हाँ जी,
1: तो इसमें हमने क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि किसान भाई अपना सही मुनाफा उसमें कमा ले। तो इसमें बताओ डॉक्टर साहब।
2: इसमें यह है जी, वैसे तो हम भिंडी के महत्व की अगर बात करें तो ये भिंडी मुख्यतः है, मतलब जो हम प्रयोग करते हैं ये
1: हाँ
2: सब्जी और सूप में प्रयोग होते हैं,
1: अच्छा, सब्जी
2: और
1: और
2: इस,
1: सूप में भी।
2: हाँ जी, हाँ जी, इसको ये जो भिंडी है विटामिन ए बी और जैसे मिनरल खनिज मिलन है, मिनरल है,
1: अच्छा
2: कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम का एक प्राकृतिक स्रोत है, जैसे हम कई बार आर्टिफिशियल जैसे डॉक्टर देते गोली वगैरह,
1: जी,
2: तो ये एक प्राकृतिक स्रोत है इनका।
1: यानी खाने में स्वाद के साथ साथ
2: हाँ,
1: इसमें गुण बहुत गणे हैं।
2: गुण बहुत गणे हैं जी, मतलब
1: अच्छा
2: इसकी मतलब मेडिसिनल वैल्यू भी है, मतलब
1: ठीक
2: हाँ
1: है
2: जी,
1: डॉक्टर साहब,
2: हाँ
1: ठीक
2: जी।
1: है।
2: तो और इसकी अगर हम एरिया की बात करें तो हरियाणा में है लगभग अपने यहाँ पे जो 509 हेक्टेयर
1: में वो,
2: हेक्टेयर, हाँ जी,
1: अच्छा, पूरा
2: हाँ
1: हरियाणा में यानी
2: हाँ
1: 509 हेक्टेयर के लगभग इसमें इसकी
2: हाँ जी, हाँ
1: खेती
2: जी,
1: करी जाए अपने
2: हाँ जी, हाँ
1: किसान
2: जी,
1: भाई करें जी।
2: हाँ जी, हाँ जी,
1: ठीक है डॉक्टर साहब, इसमें
2: हाँ जी,
1: खासकर जो बात है हम देखा कि भाई एक तो बीज की बात ली जाए,
2: हाँ जी हाँ जी
1: क्योंकि बीज आप है जिस तरह वर्षाकालीन का है हमारा, और
2: हाँ जी
1: दूसरे
2: हाँ जी
1: इसमें सर्दकालीन भी है वो हैं,
2: हाँ
1: तो
2: जी
1: हमने एक तो वर्षाकालीन की, एक तो उनकी किस्में बता दो डॉक्टर साहब, ये
2: हाँ जी
1: कौन
2: हाँ
1: कौन
2: जी
1: सी किस्में हैं
2: हाँ
1: जो
2: जी
1: कि इस टाइम की शायद बात ना हो कि भाई किसान भाई साहब कि सर्दकालीन के एक बीज ले ले
2: हाँ
1: और
2: जी
1: उसकी बिजाई कर
2: हाँ
1: दे,
2: जी
1: फिर
2: हाँ जी
1: उसमें फिर आमदनी तो होनी है ना,
2: हाँ जी
1: उसमें पैदावार होगी कि
2: हाँ
1: नहीं।
2: जी।

0: हाँ किसान भाई, भिंडी है जो दो समय पर बिजाई कर सकते हैं। जैसे
1: अच्छा जी
0: तो एक तो गर्मी में, जैसे फरवरी मार्च वाला महीना था, और
1: ठीक है,
0: एक है ये अपना सर्दी वाला, जो
1: हाँ
0: सर्दी नहीं गर्मी, जो बारिश का
1: वर्षा
0: महीना,
1: कालीन,
0: वर्षा
1: हाँ
0: कालीन, जो इसकी
1: ठीक है
0: आज
1: ठीक
0: जो
1: है,
0: विषय अपना है इसमें।
1: हाँ
0: इसमें किसान भाई है जो किस्में हैं इनके लिए अलग अलग है, क्योंकि जो वर्षा कालीन जो फसल होगी
1: हाँ
0: उसमें
1: जी
0: बीमारियाँ कीड़े ज़्यादा आते हैं, और
1: सही
0: खासकर
1: बात
0: जो मुख्य समस्या है भिंडी में वो पीलिया रोग की है,
1: जी,
0: वो बहुत ही ज़्यादा आता है। अगर उसको हम किसान भाई उसका ध्यान ना रखें और उसकी रोगरोधी किस्में ले लें, तो उसमें किसान अपना काफ़ी फायदा अपना कर सकते हैं, जैसे स्प्रे वगैरह का बचा सकते हैं।
1: जी
0: इसके लिए उन्नत किस्में हैं, जैसे वर्षा उपहार है, अपने एचएयू हिसार से सिफारिशशुदा किस्में हैं ये।
1: अच्छा वर्षाकालीन की बता रहे हो डॉक्टर
0: हाँ
1: साहब,
0: वर्षा उपहार, मैं सिर्फ एक बात
1: हाँ
0: वैसे बता दूंगा, लेकिन वर्षाकालीन की ही ज़्यादा बात करेंगे।
1: ठीक ठीक है
0: हाँ
1: डॉक्टर
0: जी,
1: साहब,
0: तो
1: बिल्कुल
0: वर्षा उपहार है, जैसे नाम ही बताता है इसका, कि ये
1: हाँ
0: बारिश के सीज़न के लिए बहुत ही बढ़िया किस्म है।
1: जी
0: पीलिया रोग रोधी क्षमता है इसके अंदर। हाँ
1: जी
0: जी, 3 से 4 जो गांठ है ना इसके ऊपर से, मतलब इसके
1: हाँ
0: फल
1: पौधा
0: शुरू,
1: तीन चार
0: फल
1: गांठ शुरू हो जाए, उड़े तो
0: वहीं
1: लागू
0: पे फल
1: शुरू
0: शुरू हो जाते हैं इसके।
1: जी,
0: ठीक है, इसमें महत्व तो होता है जी कि हर गांठ पे इस पे फल आता है भिंडी
1: अच्छा
0: में,
1: जी
0: तो जिसके गांठ की दूरी जितनी कम हो या उसकी हाइट कम रहेगी, ऊंचाई कम
1: यानी
0: रहेगी,
1: फासला कम होगा
0: हाँ
1: उनमें
0: फासला कम
1: गट्ठा में,
0: होगा,
1: तो
0: क्योंकि
1: उनमें
0: हर गांठ के
1: ज़्यादा
0: ऊपर
1: फल
0: फल लगना
1: लगेगा
0: है, ज़्यादा फल लगेंगे उसमें।
1: जी,
0: हाँ जी, तो इसमें मैं 5 कोर होते हैं, मतलब 5 उसके ऊपर फल के ऊपर देखेंगे ना,
1: दारी होंगी
0: हाँ
1: उसमें
0: पांच
1: जी,
0: धारियाँ होती है उसके
1: ठीक
0: ऊपर,
1: है जी,
0: और इसकी जो पैदावार है 40 क्विंटल के आसपास है जी,
1: 40 क्विंटल के
0: प्रति
1: आसपास
0: एकड़,
1: एक एकड़ में
0: एक
1: है
0: एकड़ में जी।
1: जी।
0: हाँ जी, एक हमारी संकर किस्म है हिसार से ही है, HBH 142।
1: HBH 142
0: हाँ जी,
1: जी,
0: हाइब्रिड भिंडी हिसार के नाम से,
1: हाइब्रिड
0: HBH है,
1: भिंडी
0: जैसे HBH
1: हिसार
0: है, हिसार 142 के नाम से, ये
1: जी,
0: संकर किस्म है।
1: अच्छा जी
0: संकर किस्म की पैदावार अपने औसत जो दूसरी किस्में हैं उनकी बजाय थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसकी
1: ज़्यादा
0: पैदावार
1: जी,
0: है 53 क्विंटल है इसकी प्रति
1: अच्छा
0: एकड़
1: जी
0: के हिसाब से।
1: जी
0: ये भी पीलिया रोग रोधी किस्म है और वर्षा ऋतु के लिए बिल्कुल उपयुक्त है ये जी।
1: जी
0: हाँ जी, एक किस्म है हिसार नवीन,
1: इशार नवीन
0: नवीन हाँ जी, ये
1: जी
0: भी पीलिया रोग रोधी है। और जैसे किस्में हैं जो हमने दो बताई,
1: जी
0: इसमें लगभग एक एक कितना आता है इसमें,
1: जी
0: और लेकिन इसमें जो हिसार नवीन है इसमें 3 से 4 तने आते हैं।
1: अच्छा जी
0: हाँ जी, मतलब शाखाएं आती है इसमें, ज़्यादातर भिंडी में एक तना होता है, इसमें
1: जी
0: तीन चार
1: इसमें
0: शाखाएं
1: तीन
0: होती हैं।
1: चार, तो डॉक्टर साहब ये
0: हाँ जी,
1: पैदावार भी ज़्यादा देती होगी
0: हाँ न
1: प्रति
0: पैदावार लगभग उतनी है, लेकिन इसकी किस्म का गुण है कि 3-4 शाखाएं आती है इसमें,
1: शाखा जी,
0: पैदावार
1: अच्छा
0: इसकी 35 से 40 क्विंटल ही है, और
1: अच्छा
0: ये
1: जी
0: भी रोग रोधी किस्म है,
1: पीलिया
0: पीलिया
1: रोग
0: रोग
1: रोग
0: रोधी किस्म है जी।
1: जी
0: हाँ जी, और जो दो किस्में और हैं जो कि वैसे तो ग्रीष्म ऋतु के लिए हैं,
1: जी
0: लेकिन वो भी अगर किसान भाई, बल्कि ये किस्में लगाएं जो हमने बताई है।
1: हाँ ये डॉक्टर साहब ठीक है ना,
0: हाँ जी,
1: क्योंकि उनके अगर जब मान लिया लगा लेंगे तो फिर पैदावार पर असर
0: हाँ,
1: पड़ेगा
0: बल्कि ये
1: जो
0: किस्में
1: उनका,
0: लगाएं उनमें पीलिया रोग रोधी जो क्षमता है इस ज़्यादा है इनके अंदर।
1: अच्छा डॉक्टर
0: हाँ
1: साहब
0: जी,
1: ये तो होगी इनकी किस्मों की बात
0: हाँ
1: होगी,
0: जी,
1: अब इनकी जो बीज की है बात है,
0: हाँ
1: बीज
0: जी,
1: की मात्रा कितनी लगेगी एक एकड़ श्याम
0: हाँ
1: जी
0: जी,
1: जिस तरह बिजाई करें भाई,
0: हाँ जी, इसमें ये है जी कि जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें तो बीज लगता है ज़्यादा, क्योंकि हमें स्पेसिंग थोड़ी सी कम रखनी पड़ती है
1: जी
0: पौधे से पौधे की, लाइन से लाइन की, लेकिन ग्रीष्म इसमें जो बारिश वाली किस्में हैं इनका
1: जी
0: फैलाव ज़्यादा हो जाता है, मौसम इनके लिए मतलब अनुकूल होता है, इस टाइम पे
1: अच्छा जी,
0: फैलाव ज़्यादा
1: यानी
0: होता है,
1: वनस्पति की बढ़वार अच्छी नहीं
0: बढ़वार
1: होती
0: अच्छी
1: है
0: होती है,
1: जी,
0: तो इसलिए उनमें दूरी ज़्यादा है इसमें, तो इसमें
1: अच्छा
0: पौधे से पौधे की जो दूरी है 1.5 से 2 फीट रखें,
1: वर्षा काल में ही फैला
0: हाँ
1: जाती
0: लाइन
1: है,
0: लाइन से लाइन की दूरी 1.5 से 2 फीट,
1: अच्छा
0: और
1: जी
0: पौधे से पौधे की 1 फीट पे बिजाई करेंगे,
1: जी
0: और इसमें समतल क्यारियों पे बिजाई करेंगे, उस जो
1: अच्छा,
0: गर्मी
1: डोल
0: वाली,
1: डालियाँ बनी करना
0: हाँ
1: होगा
0: डोली
1: समतल,
0: वाली जो गर्मी में है वो डोली डोलियों पे करते हैं,
1: अच्छा जी
0: और जो वर्षा के टाइम पे है ये हम इसमें समतल क्यारियों पे बिजाई करते हैं।
1: जी
0: हाँ जी,
1: अच्छा जी, ये
0: और पाँच
1: तो
0: से छः किलो भी जिसके लिए बहुत होता, एक एकड़ के लिए
1: अच्छा
0: काफ़ी होता है
1: पाँच
0: जी।
1: से 6 किलो, डॉक्टर साहब जिस तरह आपने एक हाइब्रिड बताई थी किस्म,
0: हाँ जी,
1: उसका भी कितना लेना पड़ेगा, उसका
0: ये
1: तुलना
0: स्पेसिंग अभी सिफारिश उनकी भी ऐसी है जी कि इतने ही सही है उनमें पौधे उनके। हाँ
1: अच्छा अच्छा
0: जी,
1: जी,
0: मतलब
1: तो
0: 1.5 से 2 फीट उसकी दूरी, लाइन से लाइन की और पौधे से पौधे की 1 फीट।
1: अच्छा जी डॉक्टर साहब फिर इसका जो सही समय रहेगा जो बिजाई
0: हाँ
1: का
0: जी,
1: वो कौन सा रहेगा जी,
0: उसका सही समय अगर सही अशोक भाई बात करें तो अब बिल्कुल सही समय चल रहा है जी इनका, जून
1: अच्छा जी
0: जुलाई ही सही समय है इसका।
1: जून जुलाई
0: हाँ जी, क्योंकि वो फिर ज़मीन पे निर्भर करता, कई बार जैसे मानसून शुरू हो जाए तो
1: जी
0: उसके बाद हो सकता है कि आपका खेत तैयार ना कर सको आप, तो
1: जी
0: उसे बिजाई उससे पहले हो जाए तो सबसे बढ़िया है जी।
1: अच्छा जी,
0: हाँ जी, तो ये
1: तो
0: सही
1: जुलाई
0: टाइम है
1: में
0: जो
1: कहाँ तक जाओ जी डॉक्टर साहब,
0: पूरे जुलाई में कर सकते हैं जी, इसमें
1: अच्छा
0: इसमें
1: जी
0: कोई दिक्कत नहीं है जी, लेकिन अगर वो आपकी ज़मीन अगर तकड़ी है, चिकनी मिट्टी है, तो कई बार बारिश के बाद आपकी तैयारी करने में और थोड़ा सा लेट हो जाते हैं जमींदार भाई, तो अगर बिजाई मानसून से पहले अगर कर लें तो
1: अच्छा
0: बढ़िया
1: जी,
0: जी।
1: तो जी जिस तरह ये तो किस्म की बात होगी बीज की बात होगी,
0: हाँ
1: तो
0: जी,
1: डॉक्टर साहब इसमें एक चीज़ और चाहूँ, पहले खेत की तैयारी किस तरह कर लें अपने,
0: हाँ खेत की तैयारी के लिए इसमें है जी कि लगभग हर किस्मों में हर फसलों में ऐसी सिफारिश की जाती है कि अब जो तैयारी है ना जी, अगर हो सके तो 15-20 दिन पहले अपना खेत अगर खाली है
1: जी
0: तो उस टाइम पे तैयारी करें जी। खेत को एक बार थोड़ा सा चला के गहरा जुताई कर दें, एक बार
1: गहरी जुताई।
0: हाँ जी
1: ठीक है जी।
0: उसके बाद में एरो कल्टीवेटर से उसको थोड़ा सा भुरभुरा बना लें और उस टाइम पे जो गोबर की खाद होती है ना जी, हाँ जी, वो सिफारिश होती है ज़्यादातर ऐसे ही होती है सिफारिश की 2 से 3 हफ्ते पहले वो अपने खेत में डाल के और मिला देनी चाहिए ज़मीन के अंदर
1: जी,
0: ताकि अगर थोड़ी बहुत वो कच्ची है तो वो थोड़ी सी गल जाए और तैयार हो जाए।
1: अच्छा जी।
0: हाँ जी। और जब गोबर की खाद की बात आए ना अशोक भाई, तो कभी भी ये कच्ची नहीं होनी चाहिए
1: जी।
0: जब मतलब ये जमींदार भाई है मतलब गांठ बांध ले कि ये हमारी गली सड़ी बिल्कुल तैयार ही होनी चाहिए, नहीं तो आपके खेत में ये बाद में एक बार नाइट्रोजन की कमी कर देती है या फिर कीड़े की दीमक की समस्या बढ़ती है इनसे।
1: अच्छा जी।
0: और एक बार टेम्परेरी एक बार नाइट्रोजन की भी कमी कर देती है जब ये गलती है, अगर कच्ची डाल दें तो।
1: अच्छा, नाइट्रोजन की भी कमी कर देती है।
0: हाँ, बाद में फसल में करेंगे जी।
1: अच्छा जी।
0: और इसके लिए तैयार करते समय करें जी कि अगर उसमें अगर टाइम है जमींदार भाइयों के पास तो उसमें डाल के अगर पानी लगा सकें
1: जी,
0: पानी लगा के छोड़ दें, क्योंकि अब बारिश के सीजन में खरपतवार की समस्या ज़्यादा आएगी
1: जी।
0: तो एक तरीका ये भी है खरपतवार को नियंत्रण करने का कि गोबर की खाद डालने के बाद उसमें कुछ खरपतवार के बीज अपने नॉर्मल साधारणतया होते हैं
1: जी,
0: तो उसमें कुछ बीजों का जमा हो जाएगा, 5-7 दिन छोड़ दें और फिर उसको ट्रैक्टर चला के तैयार कर ले तो उसमें अपने कुछ खरपतवार का मतलब फायदा आगे रहेगा।
1: हाँ,
0: कम आएंगे,
1: फायदा होगा क्योंकि वो खरपतवार उग जाएंगे,
0: उग जाएंगे बीज उनका।
1: हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, फिर अब ये जिस तरह हमने बीज का एक बात आओ डॉक्टर साहब, उपचार की बात है।
0: हाँ जी।
1: क्योंकि हमने बीज ले लिया, भरोसे जगह से बीज लिया डॉक्टर साहब, इसमें बीज फिर हमने इसमें हिसार यूनिवर्सिटी से मिला या कितने और भी मिल सके बीज के?
0: नहीं, मेरे को लगता है जी कि हिसार यूनिवर्सिटी में भिंडी का बीज हमारे पास मिल जाएगा, अच्छी किस्में है ये।
1: अच्छा।
0: और वहीं पर मिल जाएगा, और कहीं से भी अगर लें तो मतलब विश्वास की जगह से लें और बिल किसान भाई जरूर लें उनका
1: जी।
0: तो बिल लेने के बाद में वो जो किस्म वगैरह उस पर बिल पर लिखते हैं ना, कई बार वो गलत आ जाती है तो बिल पर लिखेंगे तो बिल जरूर लें किसान भाई, और सिफारिशुदा किस्में लें अगर। और इसके अलावा अगर कोई ले तो ज़रूर ऐसा देखें कि कोई अड़ोसी पड़ोसी ने अगर देखा है उनके पास अगर अच्छी किस्म कोई हुई है तो वो लें देख के पहले।
1: वो ले लें।
0: हाँ जी।
1: तो डॉक्टर साहब, भी जिस तरह मान लिया बीज हमने एसआर यूनिवर्सिटी से लेना है, क्या उपचारित बीज मिलेगा वो हमें
0: ना? यूनिवर्सिटी से जो है जी बीज उपचारित नहीं मिलेगा।
1: अच्छा जी।
0: तो किसान भाइयों को खुद उपचार करना पड़ेगा उसका
1: जी। हाँ, वो
0: और बिजाई से पहले ये सिफारिश भी है जी कि उनको 10-12 घंटे भिगो लें।
1: जब पहले भिगो ले भी।
0: हाँ जी, रात को मतलब भिगो दें
1: जी,
0: और सुबह के टाइम पे है जिसे रेतेला चेपे के लिए भी फायदेमंद रहता है वो
1: जी।
0: इमिडा क्लोप्रिड दवाई आती है,
1: एक बार डॉक्टर दवाई का नाम फिर बताओ।
0: हाँ जी, इमिडा क्लोप्रिड है।
1: इमिडा क्लोप्रिड,
0: क्लोप्रिड,
1: क्लोप्रिड।
0: हाँ जी,
1: ठीक डॉक्टर।
0: वो 5 ग्राम दवाई प्रति किलो बीज के हिसाब से।
1: अच्छा जी।
0: या फिर थायामेथोक्जम है, जैसे एक तारा के नाम से आती थी दवाई एक
1: जी।
0: हाँ जी, या फिर वो दवाई है वो 5.7 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से, जैसे शाम को भिगोया वो बीज है सुबह उस पर मतलब बराबर छिड़काव करें और पूरे में मिला के और आधा घंटा सुखा के उसको और फिर बिजाई करें।
1: यानी डॉक्टर साहब, उसने 12 घंटे आपने बताया जिस तरह भिगो लिया।
0: हाँ,
1: भिगो कर और फिर आपने सुबह निकाल के ने और एक कपड़ा भी उसने।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: अच्छा, छदा ले।
0: बिल्कुल जी।
1: और फिर उसके बाद आपने जिस तरह ये दवाई बताई है, दवाइयां उनका छिड़क कर दे, मिला छिड़क कर और फिर मिला दे,
0: मिला के और फिर आधा घंटा सुखा, छाया में सुखाएं जी।
1: डॉक्टर साहब, फिर जिस तरह ये कराया जाए, मान लिया सादा हाथ क्रश का मिला सका या कोई दस्ताने वगैरह पहन के?
0: नहीं, ये सावधानी के लिए अच्छा सवाल है अशोक भाई आपका कि दस्ताने वगैरह इस्तेमाल करें तो बढ़िया बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं केमिकल तो है ही
1: वो। और जाए।
0: हाँ, हाँ, हाँ जी, अगर अच्छी बात है अगर दस्ताने पहने जमींदार भाई तो अच्छी बात है।
1: अच्छा अच्छा। फिर डॉक्टर साहब, इसने हमने इसका बीज का उपचार कर लिया, चलो ठीक हो गया। ये भी इसकी जो बिजाई की बात बता दी, जिस तरह भी हमने समतल जमीन पर करनी है उसमें डोड़िया बनी करनी है।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: लाइन टू लाइन का फासला बता दिया, जिस तरह आपने 1.5 फीट का रखना और पौधे पौधे का
0: 1 फीट का।
1: तो डॉक्टर साहब, जिस तरह मान लिया बिजाई कर लिया किसान भाई ने, फिर उसमें सिंचाई की बात आ गई
0: जी,
1: वो सिंचाई किस तरह करें जी, फिर कितने दिन में करें?
0: सिंचाई का वैसे ज़्यादा बारिश के मौसम में ज़मीन पे निर्भर करता है जी। आपकी हल्की ज़मीन है, जैसे दोमट मिट्टी है, बालू है, तो आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है
1: जी।
0: नहीं तो देखो, सब्जियों में रेगुलर अपने को सिंचाई चाहिए
1: जी।
0: तो बारिश के मौसम में तो एक आपको ये ध्यान ही रखना पड़ेगा कि ज़रूरत के अनुसार ही सिंचाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कभी बारिश कम हो जाए, कभी ज़्यादा हो जाए। अगर कम बारिश हो तो सिंचाई करते रहे उसके 5-6 दिन में, अगर बारिश ना हो तो
1: जी,
0: और नहीं तो फिर बारिश के हिसाब से।
1: हाँ,
0: सूखने नहीं दे
1: जी। डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ और रहेगी, जिस तरह हम खाद ही बात करें, हमने देसी खाद की तो कर ली, कूड़िया खाद की।
0: हाँ जी, हाँ
1: तो रासायनिक खाद है उनका। हाँ, किस तरह हमने वो करना है और किस किस टाइम पर वो डालने हैं?
0: हाँ जी, रासायनिक खादों का ऐसा है जी कि वैसे तो सिफारिश है कि भाई हम अपनी मिट्टी टेस्ट करवाएं, उसके हिसाब से जितना मिट्टी में जितनी ताकत है, कौन सी नाइट्रोजन कम है ज़्यादा है उसके हिसाब से डालें। लेकिन एक औसत ज़मीन के लिए 10 टन जैसे हमने बताया ना खेत तैयार कर, गोबर की खाद उसी टाइम पे डालें, सिफारिश है 10 टन के लिए, लेकिन उसी टाइम पे डाल दें जिस टाइम खेत तैयार करते हैं, मतलब 2 से 3 हफ्ते पहले।
1: अच्छा,
0: हाँ जी। और जहाँ रासायनिक खादों की बात है, इसके लिए 40 किलो नाइट्रोजन, 24 किलो फास्फोरस।
1: 40 किलो नाइट्रोजन यानी 85 किलो यूरिया होगा इसमें।
0: हाँ, इसमें मैं दो तरीके हैं जी, देखो
1: जी।
0: कई बार हम डालते हैं जमींदार भाइयों के पास, वो भी हो जाती है दिक्कत की, भाई आप DAP मिल रही है, SSP नहीं मिल रही, ऐसी दिक्कत है। तो ये मैंने थोड़ा सा उनका कैलकुलेशन की है इसकी, तो जमींदार भाई, हाँ जी, मैंने कैलकुलेशन DAP और SSP के साथ दोनों के हिसाब से कर रखी है इसकी, कि जो जमींदार भाई, क्योंकि DAP में नाइट्रोजन भी होती है और फास्फोरस भी होती है, तो हम उसको जो फास्फोरस है उसको आधार मान के चलते हैं, क्योंकि अपने को 24 किलो फास्फोरस देनी है
1: जी।
0: तो उसके साथ अगर हम 24 किलो फास्फोरस के लिए हमारे को 52 किलो DAP डालनी पड़ेगी।
1: अच्छा, DAP हमने डाल रहे हैं 52 किलो।
0: 52 किलो अगर DAP से हमारे पास अवेलेबल उपलब्ध है तो
1: जी।
0: हाँ जी, लेकिन उसके साथ हमारा जो इसके अंदर 8.5 किलो अपनी 9.4 किलो नाइट्रोजन चली जाएगी DAP के साथ, 9.5 किलो नाइट्रोजन इसके साथ चली जाएगी।
1: अच्छा,
0: हाँ जी। लेकिन हमारी सिफारिश है कि जो उसमें 1/3 जैसे नाइट्रोजन का था ना 40 किलो है, उसका 1/3 डालना है बिजाई के टाइम पे। हाँ जी, तो 9.5 किलो नाइट्रोजन तो अपनी यहाँ से होगी और 9.5 किलो तो नाइट्रोजन चलेगी और 8.5 किलो यूरिया और डाल देंगे बिजाई के टाइम पे DAP के साथ में। तो अपने को जो बेसल डोज है जो बिजाई के टाइम पे हम करते हैं, वो हमारी नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी, नाइट्रोजन की पूर्ति होगी इससे।
1: और DAP तो करना,
0: DAP 52 किलो और 8.5 किलो यूरिया, उससे अपने नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों की पूर्ति बेसल डोज के उसमें होगी। लेकिन जमींदार भाइयों, अगर कई बार ये होता है कि DAP नहीं है उपलब्ध,
1: हाँ
0: तो SSP मिलती है फिर
1: जी।
0: तो SSP के 3 बैग चाहिए जी,
1: 150 किलो
0: 150 किलो SSP चाहिए। उस केस में जैसे आपने बताया था कि 87 किलो यूरिया हो जाएगी
1: जी।
0: हाँ जी, 87 किलो के हम 3 हिस्से बनाएंगे, 29, 29 और 29। हाँ जी, शुरू में 29 किलो डाल देंगे बिजाई के टाइम पे और दूसरी जो आधी आधी जो डोज है 29 और 29 है वो हम 21 दिन बाद और उसके बाद लगभग फूल आने शुरू हों उस टाइम पे, ये 3 बार देंगे जी यूरिया।
1: ये उसमें खाद की बात आई,
0: पोटास का है जी। अगर आपकी ज़मीन में कमी है, ज़्यादातर अपनी ज़मीनों में कमी नहीं थी पहले तो
1: जी,
0: लेकिन आजकल काफ़ी जो ज़मीनों में कमी होने लग गई, तो ये तो सिफारिश है कि अगर टेस्ट करवा लें जमींदार भाई, अगर सिफारिश है उसमें आती कमी तो पोटास भी डालें।
1: तो डॉक्टर साहब, वैसे तो किसान भाइयों ने भी खूब कहे जहाँ, जिस तरह आप भी कह रहे हो संदेश दिया है कि वह अपनी मिट्टी पानी की जांच करवा ले तो सबसे बढ़िया है।
0: बिल्कुल जी।
1: तो ये किसान भाई उसमें वैसे गौर भी कर रहे हैं, जागरूकता भी आ रही है, खूब कर लाग रहे हैं और भी कहेंगे हम कि वह ध्यान देंगे उसमें ज्यादा। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह मान लिया तेल पानी की बात आ जाए, इसमें पानी जब मान लिया तेलिए हो तो फिर उसका प्रयोग कर सके।
0: हाँ जी, इसमें तेलिए पानी का कई जगह अपनी ज़मीनों का पानी जो है जी तेलिए है। तेलिए पानी की पहचान जमींदार भाई वैसे मोटे तौर पे कर सकते हैं
1: जी,
0: कि जैसे हम हाथ वगैरह धोते हैं ना तो उसमें संतुष्टि नहीं होती, चिकना सा लगता है वो
1: जी,
0: इसलिए तेलिया पानी बोलते हैं उसके उसको।
1: अच्छा,
0: तो उसको है कि अगर टेस्ट करवा लें उसके अंदर, लेकिन आपको ये जो ये बिजाई है आपको उसकी टेस्ट की रिपोर्ट के हिसाब से ही कर सकते हो। उसकी एक यूनिट होती है मापने का कि भाई आपका तेलिए पानी है तो कितना है। हाँ जी, उसकी एक यूनिट होती है कि एक उसमें दिखाएगा वो 1 मिली इक्विलेंट।
1: अच्छा जी।
0: मिली तुल्यांक प्रति लीटर कुछ ऐसे यूनिट आएगी उसके जो वो टेस्ट करवाएंगे
1: जी।
0: अगर उनके पानी की जो यूनिट 1 है
1: जी,
0: तो उसमें 32 किलो सल्फर,
1: सल्फर
0: हाँ जी,
1: जी
0: 80% शुद्ध मानते हैं इसको, 80% वाली होती है उसके अंदर मतलब
1: जी।
0: हाँ जी, तो उसको 32 किलो सल्फर और प्रत्येक पानी के साथ और प्रत्येक एकड़ में, एक एकड़ में।
1: अच्छा जी।
0: हाँ जी, अगर मान लो 5 पानी लगते हैं अपने तो समझो कि 160 किलो 5 बार में डालेंगे,
1: 32 किलो,
0: तो उसके बाद जो फसल पे है जो विपरीत प्रभाव है वो कम दिखेगा पैदावार पे।
1: इस तरह आपने भी बताया सल्फर 32 किलो देना, ये पानी के साथ देना या पानी के बाद देना या
0: पानी से पहले? पानी के साथ दे, इसके पानी के साथ देते हैं
1: इस तरह, ना कम छोड़,
0: हाँ ना कम छोड़ दे, इस तरह करते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, इसका क्या तरीका हो जब मान लिया ना कम करें तो इसमें?
0: इसमें या तो जी ये है कि मान लो पाउडर आता है, हाँ ओध में डाल दें। हाँ जी,
1: जी
0: हाँ जी, या फिर उसको अगर छिड़क सके यूरिया की तरह तो ऐसे छिड़क के ऊपर से पानी लगा दें।
1: छिड़क कर फिर
0: हाँ, हाँ जी, जमीन में जाना चाहिए, अगर बराबर चला जाए किसी भी तरीके से बराबर चला जाए जमीन में
1: जी,
0: तो बढ़िया जी।
1: करें लेकिन पानी से पहले,
0: हाँ पानी के साथ, क्योंकि वो जो पानी के साथ मिलके ही फायदा करता है जी।
1: अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह ये फिर आओ इसमें बात है खरपतवार, जो कि किसान भाई ने बहुत ज्यादा तंग करे एक तो ये हो गया, जल मान लिया खरपतवार ना पहले तो बात यह कि भाई में खूब अपने वो कर लिया और उसके बाद भी खरपतवार आ जाए तो उन पर किस तरह नियंत्रण करेगा?
0: इसमें यूँ है जी कि जो सब्जियों में है ज़्यादातर जो आप कह रहे हो ऐसी सिफारिश कम है जी, जैसे अपने गेहूं में धान में होती है कि उगने के बाद हम स्प्रे कर सकते हैं।
1: अच्छा जी।
0: तो सब्जियों में जो सिफारिश है वो ये है कि जी हम बचाव के तौर पर ही करते हैं
1: जी, मतलब यानी फसल को
0: हाँ
1: बचाओगे तौर पर
0: अभी
1: रखें।
0: बचाओगे तो स्प्रे ऐसा कर दें कि जिससे खरपतवार ना उगे।
1: हाँ जी
0: जी, तो इसमें फ्लूक्लोरेलिन दवाई है जी, वो बिजाई से पहले करते डालते हैं हम।
1: डॉक्टर साहब दवाई फ्लूक्रो
0: बसालिन के नाम से मिलती है,
1: बसालिन। हाँ
0: बसालिन के नाम से मिलती है, और 900 ml दवाई 1 एकड़ के लिए।
1: एक एकड़ के लिए 900 ml रहेगी।
0: हाँ, 200-250 लीटर पानी में मिला के और छिड़काव कर दे जमीन के ऊपर
1: और
0: बिजाई से पहले।
1: बिजाई से पहले जमीन
0: हाँ
1: के ऊपर छिड़काव कर दे।
0: बिल्कुल।

0: और उसके बाद हल्की सी जुताई कर दे, मतलब 3-4 सेंटीमीटर में उसको मिक्स कर दे।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह ये करा जाए, मान लिया
0: रेक्सा लगा,
1: काटा सुहागा, वो
0: हाँ हाँ इस तरह मला लगा दे,
1: या फिर किसान भाई का ये देखे कुछ छड़ा छड़ा है वो
0: हाँ
1: लगा
0: हाँ
1: दे, क्या वो भी
0: हाँ
1: ठीक
0: बिल्कुल
1: रहेगा?
0: बिल्कुल ठीक है जी।
1: अच्छा
0: या फिर
1: जी
0: बिल्कुल जो एरो से करें तो बिल्कुल कम लगे, मतलब वो ऊपर
1: जी
0: 3-4 सेंटीमीटर में मिक्स करना। तरीका उनका जमींदार भाई जैसे रैक से घुमाएं या आप कैसे सड़ा करें उस तरह घुमाएं,
1: अच्छा अच्छा
0: लेकिन 3-4 सेंटीमीटर में मिक्स हो जाए वो।
1: जी,
0: हाँ जी
1: यानी ये दवा, ये बासालीन है,
0: हाँ जी
1: 900 मिलीलीटर है ये
0: हाँ जी हाँ जी।
1: एक
0: लेकिन दो
1: एक
0: सौ 250 लीटर पानी जरूरी है जी।
1: पानी
0: पानी की
1: जरूरी
0: मात्रा
1: है।
0: जमींदार के इसमें
1: हाँ,
0: खरपतवार
1: उसमें
0: नाशी
1: कोताही
0: में
1: बरत देते हैं, लेकिन
0: जरूर
1: हाँ
0: ध्यान रखे जी
1: अच्छा,
0: जमींदार।
1: 200-250 लीटर पानी
0: हाँ
1: जरूर
0: जी
1: लेना पड़ेगा।
0: एकड़ के हिसाब से जी।
1: अच्छा, डॉक्टर
0: हाँ
1: साहब,
0: जी
1: तो अब ये हो गया। डॉक्टर साहब, ये भी फिर जो मान लिया हमारे आगे आई बात, वो कई बार ऐसा हो जी कि फल ज़्यादा हो,
0: हाँ जी
1: उसके लिए भी कोई अलग से सिफारिश है? जिस तरह कहिया मत, ये बेल वाली सब्जी है, उनमें
0: हाँ जी
1: तो वृद्धि नियमों को प्रयोग करा जाए, क्या
0: बिल्कुल
1: इसमें भी
0: जी।
1: है कोई इस तरह की जी
0: नहीं
1: बात?
0: ऐसा नहीं है जी, इसमें अगर ज़मींदार भाई सिफारिश शुदा किस्में यूज़ करें, प्रयोग
1: जी
0: करें, खाद और पानी ठीक से देते रहें,
1: जी
0: निराई गुड़ाई ठीक करें,
1: अच्छा
0: तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जी। बीज पैदावार ना होने की या कम फल ना लगने की,
1: जी
0: पैदावार अपने आप अच्छी होती है। लेकिन ऐसी सिफारिश नहीं है जी कि किसी केमिकल से मतलब पैदावार बढ़ जाएगी।
1: अच्छा अच्छा
0: हम DAP यूरिया पोटास अगर सिफारिश शुदा डालें तो उसमें अपने
1: यानी
0: आप
1: जितनी
0: बढ़िया रहेगी
1: सिफारिश
0: जी।
1: की जाए
0: हाँ
1: उतनी
0: मतलब
1: डालना,
0: उसको
1: ज़्यादा
0: हाँ
1: नहीं
0: ज़्यादा
1: डालना।
0: मतलब इनके चक्कर में पड़ने की ज़रूरत भी नहीं है कि भाई कई बार क्या ये धक्के से कोई ना कोई बोल देता कि ऐसे कर दो जी ऐसे कर दो। अगर आपका ज़मीन ठीक है,
1: जी
0: खाद पानी ठीक है, तो पैदावार बिल्कुल ठीक होगी जी।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें भी फिर ये है अगर, क्योंकि हमने बिजाई कर दी, फिर खरपतवार कर दी, कीड़े बीमारी हो रहा हूँ डॉक्टर साहब
0: हाँ
1: इनमें
0: जी
1: बहुत ज़्यादा हो रहा था, कि ये देखा जाए कि किसान भाई को किसी प्रकार का नुकसान ना हो,
0: हाँ जी
1: पहले अपना संभाल ले कुछ है, जिस तरह मान लिया बीज का उपचार करा डॉक्टर साहब, कुछ
0: जी
1: बीमारियाँ पीछा छूटेगा उस दिन जी?
0: बिल्कुल बिल्कुल जी।
1: अच्छा जी,
0: तो इसमें भी किसान भाई है जी थोड़ा सा सावधानी रखें कि एक तो है कि क्रॉप जो है ना
1: जी
0: फसल चक्कर अपनाएं किसान भाई,
1: अच्छा
0: ये
1: जी
0: हर फसल के लिए फायदेमंद है। चाहे सब्जियों में लगा लो, सब्जियों में भी वही सिफारिश है
1: जी
0: कि फसल चक्कर अपनाएं। जैसे खासकर जैसे निमेटोड एक नई समस्या आने लगी आजकल,
1: जी
0: सूत्रकृमि है चाहे कीड़े हैं चाहे बीमारी है, क्योंकि वो
1: हाँ
0: एक ही तरह की जब फसलें लगाते हैं तो वो बढ़ने लग जाती है उसमें।
1: जी
0: तो जैसे टमाटर है, भिंडी है और बेल वाली सब्जियां हैं,
1: अच्छा जी
0: तो ये एक तरह से एक ग्रुप मानते हैं इनका,
1: जी
0: तो इनको घुमा फिरा के लगाएं
1: अच्छा
0: एक एकड़ में। जैसे मान लो एक बार वो लगा दी तो उसमें मान लो कोई बेल वाली ना उसकी क्या है अपने पत्ते वाली सब्जियां लगा दी या कुछ और लगा दी इस तरह, तो लगातार ये रोटेशन फसल चक्र ऐसा ना बने कि ये फसलें आ जाए
1: यानी
0: उसमें।
1: भिंडी,
0: हाँ जी
1: टमाटर और बेल वाली सब्जी, ये तो एक ही है,
0: हाँ
1: इनके
0: हाँ
1: अलावा
0: हाँ
1: दूसरी लगा ली
0: दूसरी लगा दे उसमें,
1: जी?
0: घुमा के लगाएं इनको। और
1: जी
0: कपास के पास भिंडी ना लगाएं जी,
1: अच्छा जी
0: क्योंकि ये एक तरह से खर्चा कम करने के तरीका, आपने ठीक पूछा आपने कि
1: जी
0: खर्चा कम करने का तरीका है कि जमींदार भाई मान लो कपास के पास लगा देंगे तो स्प्रे वगैरह उनको ज़्यादा करने पड़ेंगे।
1: अच्छा,
0: एक है जैसे आपने कहा कि रोग रोधी किस्में ही उनने शुरू में चुन ली
1: हाँ जी
0: तो
1: ठीक
0: भी संभावना कम है उसमें कि कीड़े
1: है
0: बीमारी
1: ठीक है,
0: कम आएंगे। हाँ
1: हाँ जी
0: जी
1: अच्छा,
0: एक थोड़ा सा और ध्यान रखें जिसमें
1: हाँ जी
0: कि ग्रसित पौधे हैं जैसे जैसे
1: अच्छा
0: सुंडी का प्रकोप होता है ना जी,
1: जी
0: तो उसमें क्या होता है कि शुरुआत में वो उसकी कोपल पे आती है ऊपर,
1: जी
0: और उसमें मान लो ऊपर से जो चोटी से मान लो 1 इंच नीचे आपको बिल्कुल ऐसे हो जाएगी जैसे मुरझा के और सूख जाएगी,
1: मुड़
0: आपको यूं
1: जाएगी
0: लगेगा जैसे किसी ने तोड़ दी हो।
1: अच्छा जी
0: तो ऐसी अगर लक्षण दिखें तो
1: जी
0: उन्हीं को इकट्ठा करके
1: जी
0: या फिर कीड़ों उसमें फलों में दिखे तो उन्हीं को इकट्ठा करके और फेंके ना, बल्कि उनको दबा दें कहीं ना कहीं ख़त्म करें।
1: अच्छा, पूरा पौधे नहीं पड़े, सब ऊपर से तोड़ ले
0: हाँ कीड़े
1: और वो
0: कीड़ों के
1: सारे
0: मामले
1: इकट्ठे कर करके इधर जमीन में
0: दबा दे
1: दबा।
0: जी। हाँ जी
1: अच्छा जी,
0: हाँ जी
1: अन्नू का नो खुला भी नहीं करे
0: और
1: डॉक्टर
0: एक
1: साहब, कई बार ये होता है
0: हाँ
1: जला भी दें।
0: किसी तक ख़त्म करें मतलब जी
1: अच्छा
0: उनको,
1: अच्छा जी
0: ऊपर ना
1: ठीक
0: रहे क्योंकि उनकी साइकिल जो है उनकी डिस्टर्ब हो जाए।
1: जी
0: और एक है जी खरपतवार भी, जैसे ऑफ टाइम में है ना जैसे खरपतवार के ऊपर भी कीड़े बीमारी मतलब आश्रय लेते हैं,
1: जी
0: तो एक कांगी बुट्टी होती है
1: अच्छा जी
0: जो कीड़े वाली जो ये जो सुंडी की बात करते हैं इसमें, वो
1: जी
0: उसके ऊपर होता कीड़ा उसका,
1: अच्छा जी
0: और वो जब फसल मिलती है उसको तो पसंद उसकी भिंडी है
1: जी
0: लेकिन इमरजेंसी में वो वहाँ भी
1: वो
0: रहता है
1: कांगी बूटी पर रहेगा
0: कांगी
1: वो
0: बुट्टी पर रहेगा।
1: जी
0: जैसे वायरस है जैसे अपना
1: जी
0: ये
1: जी
0: जो जंगली सूरजमुखी होती है
1: हाँ
0: अपने,
1: जी
0: खासकर ये खाली जगह पे होती है जहाँ पे डोले नाके जहाँ पे हो ना अपने ट्रैक्टर वगैरह नहीं चलते, कई
1: अच्छा
0: बार
1: जी
0: नालों के आसपास में, नहर के आसपास में, रोड के
1: जी
0: साइड में,
1: जी
0: वैसे देखोगे तो आप उनको जो बीमारी जो पीलिया रोग है वो उन पर वैसे ही मिलेगा आपको पूरा,
1: जी
0: तो वो अगर आसपास में है तो उनको भी उखाड़ दें।
1: अच्छा जी, तो डॉक्टर साहब जिस
0: हाँ
1: तरह
0: जी
1: भी आपने बताया कि वह कि एक तो बीज ये ले, वर्षाकालीन बीज लेना है,
0: हाँ जी हाँ जी
1: और फिर दूसरी बात यह बीज का उपचार कर लेना है,
0: बिल्कुल जी
1: और फिर बात यह है जिस तरह खाद का है या उसका, दूसरी बात पानी का, तेलीय पानी है तो
0: हाँ
1: उसके
0: जी
1: लिए भी सारे
0: जी
1: सारे, और फिर बीमारियों के लिए है वो
0: हाँ
1: सारी
0: जी
1: चीज़ें। हम किसान भाई कहने मतलब ये आपका कि जय मान लिया शुरू से ही जागरूक रहेगा,
0: हाँ जी
1: खूब देखभाल करके चलेगा, तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा, ज़्यादा फायदा ही फायदा ज़्यादा होगा।
0: बिल्कुल जी
1: तो इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर हंसराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद अशोक भाई।
2: ये तो सुनी भैया ने वर्षा

कल इन भिंडी की काश्त के बारे में बातचीत, और काफ़ी टाइम हो रहा तो भैया ने राग नहीं सुनवाओगे। आज गायक कलाकार स्मरेंगे सत्य फरमानिया और उनके साथी।

0: ये तो सुनी बहन है रागनी सत्ते फरमानी और साथियाँ की गाई हुई। और भाई अपना टाइम चल रहा है, गर्मी का टाइम है, तो भाई अपनी सेहत का भी बिल्कुल ध्यान रखे किसान भाई। दिन का जो दोपहर में काम करना पड़े भाई, सुबह शाम अपने कोई नाली डोला समारना है, कुछ और कुत्ते लड़ाई गुड़ाई का भाई, कितने ईख में कसोले लागनी है, कितने बाड़ी में कसोले लागनी है, तो गर्मी भाई थोड़ा बचाव रखें, अपना सिर के ऊपर लत्ता रखें, और सुबह जल्दी ते फिर या शाम के टाइम में भाई सीढ़े सीढ़े में अपने काम निपटाएं, ताकि जो अपना शरीर स्वस्थ रहेगा तो भी हम दिनचर्या के काम में मन लगेगा। दिनचर्या के काम जो अपने चाहे वो कसी का काम है या फिर कसोला का काम है, तो भाई थोड़ा बहुत सुबह शाम का वक्त हाथ देख के अपना खेत क्यार के काम करें, दिन में थोड़ा हलूते बचाव का अपने भीतर रहें। और भाई इस तरीके से चाहे पशुधन है अपना चाहे हम खुद हाँ, संभाल रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खेती बाड़ी में थोड़ा सघनता का काम हो जाए, मेहनत का काम हो जाए, तो किसान भाई अपना और पशुधन का भाई सारा ख्याल रख के चलें। और भाइयों नो देखे हैं कि चाहे वो कोई दिनचर्या के काम है या फिर और कोई काम है, थोड़ी योजनाबद्ध कहता है तो आजकल थोड़ा हा आधुनिक युग है, इसमें योजना के तहत खेती हम करांगे तो ही फायदा ले पाएंगे। चाहे पशुधन की बात करें, कोई सहायक धंधे की बात करें, चाहे खेती बाड़ी की, तो थोड़ा अपना खेती का पशुधन का भाई थोड़ा ठीक ढंग का हम ध्यान रखेंगे तो ही पैदावार बढ़िया मिल पाओगी, तो ही ठीक आमदनी हो पाओगी। तो आज ये देख लें भाइयों घड़ी का नहीं, कृषि जगत कार्यक्रम का यहीं पर समय हो रहा समाप्त। ये भाई थोड़ी देर में सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण संसार। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है और ये भाई सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण संसार। और भाइयों इसमें शुरुआत करेंगे एक बातचीत के द्वारा, बच्चों में टीकाकरण क्यों आवश्यक है, कितना ज़रूरी है, पूर्व प्रसारित बातचीत है। डॉक्टर सत्यवान जी अपने चौपाल में आए थे तो सुनवाऊंगे भैया ने ये बातचीत।
1: आज की हमारी बातचीत का विषय है बच्चों में टीकाकरण कितना आवश्यक, और इसमें जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सत्यवान जी को। आप डिप्टी सिविल सर्जन हैं रोहतक में। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद।
1: और सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि टीकाकरण क्या होता है।
2: देखिए बच्चों की मृत्यु दर को रोकने के लिए, क्योंकि जो पहले था हमारा बच्चों की 5 साल तक के बच्चों में काफ़ी संख्या में मौतें हो जाती थी, जिनको रोकने के लिए सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने ये इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम किया है, जिसमें ताकि बच्चों की मृत्यु दर को कम किया जा सके।
1: यानी क्या वजह इस तरह की रही है कि बच्चों में मृत्यु दर है वो ज़्यादा होता था? क्या कोई वायरस का है, जीवाणु कीटाणु विषाणु की, क्या क्या ज़्यादा असर होता
2: है? देखिए कई बीमारियां हैं जो बचपन में बच्चों को होती हैं, जैसे दस्त हैं
1: जी,
2: वो कुछ बीमारियां विषाणुओं से होती हैं, कुछ कीटाणुओं से होते हैं, बैक्टीरिया और वायरस के द्वारा फैलती हैं
1: जी।
2: जैसे दस्त है, निमोनिया है, जिनके कारण हमारे काफ़ी संख्या में बच्चों की मौतें हो जाती थी। इस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को शुरू करने के बाद हमारी मृत्यु दर में काफ़ी ठहराव आया है
1: जी। तो डॉक्टर साहब पहले यही बात करें कि बच्चों को जन्म के समय से, या पहले बात करें अगर जब माता गर्भवती होती है तो क्या उस समय से बच्चों के बचाव के लिए कोई टीकाकरण किया जाता है?
2: जी देखिए ये हमारा जो टीकाकरण किया गया है, एक किया जाता है वो बच्चे के पैदा होने से शुरू हो जाता है, और उसके बाद में 15 साल तक की आयु तक विभिन्न प्रकार के बीमारियों के बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं
1: जी।
2: जैसे कुछ टीके पैदा होते ही लगाए जाते हैं, कुछ 1.5 महीने पे, कुछ 9 महीने पे, कुछ 1-1.5 साल पे, और गर्भवती महिलाओं को भी टेटनस के टीके दिए जाते हैं ताकि जो है बच्चा स्वस्थ पैदा हो
1: जी। तो बच्चे के जन्म के समय कौन से टीके लगाए जाते हैं?
2: देखिए बच्चे के जन्म के समय हमारी जो BCG का टीका लगाया जाता है जो TB से बचाव करता है, दूसरा OPV की 0 डोज दी जाती है जो पोलियो से बचाव की जाती है, तीसरा हेपेटाइटिस बी का डोज दी जाती है जो हमारे पीलिया से बचाती है बच्चों।
1: तो डॉक्टर साहब ये जो आपने बीमारियां बताई हैं, ये जो टीके हैं ये जन्म के साथ ही लगने चाहिए या कुछ हफ्ता 10 दिन या कुछ समय तक चला सकते हैं?
2: वैसे तो ये जन्म के समय ही लग जाने चाहिए
1: जी।
2: अगर उस समय पर नहीं लग पाते हैं तो हफ्ते सप्ताह या 10 दिन के अंदर वो टीके लग जाने चाहिए ताकि बच्चे को प्रतिरक्षण जो है बचाव बीमारी से बचाव हो सके।
1: जी, तो ये तो आपने बताया जन्म के समय।
2: हाँ जी,
1: उसके पश्चात कितने उम्र के बाद टीका लगना चाहिए?
2: उसके बाद 6 सप्ताह के बाद बच्चों को टीका दिया जाता है, 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पे, यानी 1.5 महीना, 2.5 महीने और 3.5 महीने पे।
1: जी,
2: इसमें जो टीके दिए जाते हैं, एक तो DPT का दिया जाता है जो डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस से बचाता है।
1: जी,
2: और साथ में इसके साथ दिया जाता है FIPV, फ्रैक्शनल IPV की डोज, जो इंट्रावीनस पोलियो की वैक्सीन है वो दी जाती है। साथ में रोटा वायरस की डोज दी जाती है जो आप बच्चों को दस्त से बचाती है। इसके साथ ही जो कंजुगेटेड न्यूमोकोकल वैक्सीन है वो दी जाती है जो बच्चों को निमोनिया से बचाती है।
1: जी,
2: ये इसी के दूसरी डोज, यही टीके
1: जी,
2: सिवाय फ्रैक्शनल IPV, जो IPV की जो टीका है वो 10वें सप्ताह पे ना देके 14वें सप्ताह पर दी जाती है। बाकी सारे टीके 10वें और 14वें सप्ताह पे दिए जाते हैं।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने बीमारियां बताई हैं इनके क्या लक्षण होंगे, किस तरह से पहचाना कि ये इस बीमारी की वजह से बीमार हुआ बच्चा?
2: देखिए, बच्चों में जो दस्त हैं, जो वायरल भी होते हैं और दूसरी उनकी वजह से होते हैं।
1: जी,
2: जो दस्त होते हैं तो उसकी वजह से बच्चों में जो उसके जो पानी की कमी हो जाती है
1: जी,
2: जिसकी वजह से मृत्यु दर बढ़ जाती है, बच्चों की डेथ हो जाती है।
1: जी,
2: दूसरा जो है निमोनिया है, उसमें सांस बच्चा ठीक तरीके से नहीं ले पाता।
1: जी,
2: डिप्थीरिया है, उसमें गले में उसकी वो मेम्ब्रेन बन जाती है, गला खराब हो जाता है,
1: जिसको काली खांसी बोलते हैं। जी,
2: टेटनस है, टेटनस का आपको जो आपको पता ही है उसमें धनुषबाज बोलते हैं।
1: जी,
2: वो हो जाती है
1: जिसमें शरीर है वो अकड़ जाता है, जो रीढ़ की हड्डी है,
2: रीढ़ की हड्डी और मांसपेशियों में खिंचाव
1: आ जाता है। जी,
2: इसके अलावा 9वें महीने पे हम मीजल और रूबेला का टीका लगाते हैं।
1: जी,
2: उसके अलावा आपके 1.5 साल पे बूस्टर डोज देते हैं DPT की, और 5 साल पे और 15 साल पे भी TT की बूस्टर डोज दी जाती है आजकल, डिप्थीरिया और टेटनस।
1: जी,
2: जो 9 महीने पे है मिजल और रुबेला, जो है रुबेला बीमारी, रुबेला के कारण जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उसमें एक सिंड्रोम होता है CRS, तो उसकी वजह से बच्चों में जो है हृदय की वो जो होती है बीमारियां हो सकती हैं, बच्चा अंधा या बहरा हो सकता है।
1: जी,
2: तो इसलिए ये बच्चों में ये अगर MR का टीका बहुत ज़रूरी है,
1: ये बच्चों को लगना चाहिए।
2: हाँ जी।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने टीकाकरण का एक शेड्यूल बताया है, एक लिस्ट बताई है, तो क्या ये सभी टीके हमारे सरकारी अस्पताल में उपलब्ध होते हैं?
2: जी, ये प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र में
1: जी
2: और उप स्वास्थ्य केंद्र में, जो हमारे गांव में भी उपलब्ध हैं, प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर हमारे दिन निर्धारित किए गए हैं कि आज इस गांव में टीकाकरण होगा, इस गांव में इतने बच्चे हैं, उनकी ड्यू लिस्ट बना ली जाती है और उनको टीकाकरण किया जाता है। हमारा जो टीके जो आते हैं हरियाणा केंद्र की सरकार द्वारा स्टेट की सरकार को दिए जाते हैं, स्टेट की सरकार से फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट से फिर हम PHC लेवल पे हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन लेवल तक हम उनका भंडारण करते हैं, और वहीं से जो टीकाकरण के दिन पर वैक्सीन फील्ड में भेजी जाती है जहाँ पे बच्चों का टीकाकरण किया जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, टीकाकरण जब हम करते हैं तो कई बार ये देखा जाता है कि बच्चा बीमार है या उसको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, तो क्या उस स्थिति में भी उनको टीका लगा सकते हैं?
2: उस स्थिति में उनको बहुत ज़रूरी है टीका लगाना।
1: जी,
2: क्योंकि जब बच्चा बीमार होता है तो उस टाइम पे उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है।
1: अच्छा,
2: और जो ये टीके लगते हैं, टीके लगने के से उनके अंदर जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है।
1: अच्छा,
2: तो इसलिए ये अगर कोई बुखार है, हल्की खांसी है
1: जी,
2: तो उसमें इनको टीका लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कई बार क्या होता है कि मीजल्स है, उसको चकते हो गए, लाल चकते जो हो जाते हैं कि भाई इसको तो वो इस एलर्जी है, इसको हम टीका नहीं लगवाएं
1: जी।
2: जबकि वो टीका लगाना उसके बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो टीका लगाने से उसकी बीमारी एकदम से ठीक हो गई। जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो बढ़ जाती है।
1: डॉक्टर साहब, कई बार ये देखा गया कि कई महिलाएं हैं या परिवार हैं, वो ये मानते हैं कि इससे बच्चे कमज़ोर हो जाएंगे और या आगे जाके इनको कोई पता नहीं क्या दिक्कत हो, तो इस तरह की भी सोच रखते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
2: ये बहुत सारी भ्रांतियाँ थी
1: जी,
2: और ये समय समय पर चलती रहती है, जो अंधविश्वास है पुराने समय से। लेकिन आज के समय में जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार प्रसार बढ़ा है
1: जी,
2: तो इन विचारों पर रोक लगी है
1: जी।
2: अब बच्चे, अब परिवार के माता पिता स्वयं उनको बच्चों को लेके आते हैं कि हमारे बच्चों का टीकाकरण करवाएं
1: जी। डॉक्टर साहब, ये जो टीकाकरण होता है बच्चों का, तो क्या इसका कोई रिकॉर्ड भी रखा जाता है? क्या माँ बाप के पास भी कोई इसका रिकॉर्ड होता है, या कोई पर्ची कुछ इस तरह का आप देते हैं ताकि माता पिता को ध्यान रहे?
2: जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इम्यूनाइजेशन कार्ड बनाया जाता है बच्चे का
1: जी,
2: जो उसके लिए पूरी उम्र उसके काम आता है, उसे संभाल कर रखा जाना होता है
1: जी।
2: उसके कब उसको टीका लगा, जिस दिन पहला टीका लगता है उस दिन हमारी जो बहन जी टीका लगाती है वो उसको बताती है कि भाई अगला टीका इस तारीख को लगेगा, आपको बच्चे को इस दिन लेके आना है। उस तो उसका पूरा रिकॉर्ड, जो टीका लग जाता है उसके बाद उसमें उस दिन की तिथि इंद्राज हो जाती है, और उसकी एक प्रति वो जो हमारा सब सेंटर होता है जहाँ पे महिला कार्यकर्ता बैठती है, जो टीका लगाने वाले बहन जी बैठती है, वो अपने पास भी उसका रिकॉर्ड रखती है, एक रजिस्टर बना के रखती है, और उनके कार्ड का भी वो एक कॉपी रखती है, और वो बाकायदा डिस्प्ले होता है, जिससे उन्हें ये आसानी रहती कि अगले जो हमारा टीकाकरण का दिन है उस दिन हमारे कितने टीके लगेंगे, उसी हिसाब से वो वैक्सीन लेके आती है और उससे उसको काफ़ी फायदा होता है
1: जी। डॉक्टर साहब, कई बार ये देखने में आता है कि खासतौर से लड़कियों में उनमें खून की कमी हो जाती है, या कईयों में विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, इनकी कमी भी देखने में आती है, तो क्या उसके लिए भी कोई टीका या कोई इस तरह की दवाई है वो दी जाती है?
2: जी हाँ, ये बच्चों को जैसे दस्त होते हैं उस टाइम पे जिंक की गोलियां देते हैं, या आयरन की सिरप्स होती है बच्चों को, बच्चों के आयरन के सिरप्स दिए जाते हैं जो सब सेंटर लेवल पे उपलब्ध होते हैं
1: जी,
2: जो जो न्यूनतम दवाइयां जो होती हैं वो सब सेंटर लेवल पे उपलब्ध होती हैं। जैसे खून के लिए वो उनका सिरप होता है
1: जी,
2: आयरन की गोलियां होती हैं सब सेंटर लेवल पे, बच्चियों की जो किशोर युवतियां होती हैं उनकी मीटिंग होती है
1: जी,
2: वहाँ पे उनको बताया जाता है खाना कैसे खाना है, क्या खाना चाहिए, कि कैसे बनाना चाहिए, और किस सब तरह का खाना खाने से आपके किस तरह की बीमारियों में बचाव होगा, वो चीज़ें बताई जाती हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, कई बार ये भी देखने में आता है कि बच्चों के पेट में कीड़े की बहुत बड़ी समस्या होती है, जिससे खाना है वो पूरा पचता नहीं है और उससे कई दिक्कत होती है, तो क्या इसके लिए भी कोई दवाई है या कोई टीकाकरण कुछ किया जाता है?
2: जी हाँ, ये एक जो कर्मे होते हैं, कीड़े होते हैं
1: जी,
2: उनकी रोकथाम के लिए साल में दो बार जो एल्बेंडाजोल की गोलियां दी जाती हैं, एक फरवरी माह में और एक अगस्त माह में, ताकि उनका जो है अगर किसी के पेट में कीड़े हैं तो उनसे बचाव किया जा सके, क्योंकि जो कीड़े होते हैं वो बच्चों का डेवलपमेंट नहीं होने देते,
1: विकास
2: जो विकास जो होता है वो नहीं हो पाता
1: जी,
2: तो उसको रोकने के लिए एल्बेंडाजोल की जो गोलियां हैं वो साल में दो बार ये प्रोग्राम चलता है हमारा, एक हमारा फरवरी में और एक अगस्त में
1: जी। डॉक्टर साहब, ये क्या सिर्फ एक ही खुराक लेनी होती है इसमें?
2: जी हाँ, एक एक गोली बहुत है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी को बच्चे को दस्त लग जाए या कुछ उल्टी हो जाए या इस तरह की कोई समस्या होने की तो बात नहीं होती?
2: नहीं, बहुत ही कम मात्रा में, देखो ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता, कुछ परिस्थितियां होती है जिनमें ये शिकायत आती है। उसमें क्या होता है, जैसे बच्चा खाली पेट आ गया
1: जी
2: स्कूल में
1: जी
2: और उसको गोली दे दी, कुछ वो साइकोलॉजिकली मैंने कुछ खाया नहीं है, तो कुछ
1: जी
2: घबराहट की वजह से वो उल्टी जीभ मचलाना उसका हो जाता है,
1: जी
2: लेकिन जो गोली की वजह से कोई शिकायत नहीं होती है।
1: जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि बच्चा खाली पेट आ गया, तो क्या टीका लगवाना है उस समय भी बच्चे को ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इसने खाना खाया है या नहीं खाया है, कोई इस तरह की कोई शर्त?
2: नहीं, इस ऐसी कोई शर्त नहीं है, क्योंकि
1: जी
2: जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो उनका कोई शेड्यूल नहीं होता खाने का कि मैंने सुबह ही खाना है।
1: जी जी
2: जो जैसे 1 साल तक का बच्चा है वो माँ के दूध पे है, वो उसको जब भूख लगती है वो अपने आप वो ग्रहण कर लेता है।
1: जी
2: ऐसे ही छोटे बच्चों को भी परिवार में माँ है, बाप है, दादा है, दादी हैं, वो समय समय पर खिलाते रहते हैं।
1: जी
2: बच्चों में इस तरीके की कोई ज़्यादा शिकायत नहीं आती।
1: नहीं, ये तो नहीं ना कि अगर उनको टीका लगवाना है तो उससे पहले उन्होंने कुछ खा रखा हो,
2: नहीं, ऐसा ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है,
1: ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। जी डॉक्टर साहब, अब हम बात करना चाहेंगे कि बच्चे की रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास हो। टीकाकरण तो आपने एक बचाव का तरीका बता दिया, लेकिन उसकी खुद की कुछ इम्यूनिटी है वो बढ़े, तो इसके लिए क्या कुछ प्रयास माता पिता द्वारा किए जाने चाहिए?
2: देखिए, जो बच्चे के प्रतिरक्षण का जो क्षमता बढ़ाता है
1: जी,
2: वो 6 महीने तक सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क जो है, माँ का दूध
1: जी
2: दिया जाना चाहिए
1: जी,
2: जिससे उसकी जो, और ख़ास करके जो पहला दूध होता है, पीला दूध होता है, जो माँ के बच्चा पैदा होने के बाद में तुरंत बाद में बच्चे को दिया जाना चाहिए,
1: वो निकाल के फेंके नहीं,
2: वो निकाल के फेंके नहीं।
1: जी जी,
2: कुछ भ्रांतियाँ हैं, कुछ माँ दादी हमारे पुराने पुराने बुजुर्ग हैं, वो अभी भी वो एक क्या बोलते हैं वो एक रुई की वो गुट्टी गुट्टी देने की जो परंपरा थी
1: जी,
2: वो उस पर अभी जो जो शिक्षा का प्रचार बढ़ा है उस पर रोक लगी है
1: जी,
2: लेकिन फिर भी देते हैं। तो और वो जो जिससे वो पहला दूध होता है वो बच्चे का नहीं ले पाता है
1: जी,
2: वो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए
1: जी,
2: उससे बच्चों में जो इम्यूनिटी है वो बढ़ जाती है,
1: रोगों से
2: लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है
1: जी। डॉक्टर साहब, अब हम थोड़ा बात करना चाहेंगे कि क्योंकि आपने बताया जीवाणु विषाणु हैं, इनकी वजह से बीमारियां पनपती हैं
2: जी,
1: तो बच्चों में ये ना हो इसके लिए क्या सावधानी उनको रखना चाहिए, किस तरह की चीज़ें उनको खानी चाहिए और खान पान से संबंधित क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए?
2: देखिए, एक तो साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए
1: जी,
2: खाना है, और एक हमारे देहात में एक है मटका जो है, एक पहले पैंडी होती थी
1: जी,
2: जो बर्तन रखने का मटका रखने का जो स्थान था वो कुछ ऊंचाई पे होता था, क्योंकि बच्चे
1: जी,
2: का बार बार उसमें हाथ नहीं जाता
1: जी,
2: बच्चे को पानी बड़े व्यक्ति ही पिलाते थे, क्योंकि बच्चा मिट्टी में खेलता है, हाथ गंदे होते हैं
1: जी, जी,
2: तो उसी हाथ से मटके में गिलास, उसी से आप पेट में कीड़े जाते हैं
1: जी,
2: तो वो एक तो साफ़ सफाई का बहुत ज़रूरी है। 6 महीने तक माँ का दूध, उसके बाद में जो है केला है, चावल है, दाल है, इनका जो तरल पदार्थ है वो दिया जाना चाहिए। उसके बाद में साल के बाद तो बच्चा खुद खाने लग जाता है। स्वच्छ खाना और सफाई का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर परिवार में सफाई की तरफ पूरा ध्यान दिया जाता तो इन बीमारियों से 99% बचाव किया जा सकता है।
1: यानी कि जैसे शौच जाने के बाद में हाथ धोना, खाना खाने से पहले हाथ धोना,
2: बिल्कुल,
1: और सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी को अच्छी तरह से धोना,
2: बिल्कुल,
1: ये सारी
2: चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बिल्कुल
1: जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया है कि साफ़ सफाई के साथ में अच्छा भोजन हो, और अच्छे भोजन का मतलब ये भी नहीं कि ज़्यादा महंगा हो, जो आसपास हमारे खेतों में उपलब्ध है उसी से भी काम चल सकता है, और समय पर हम टीकाकरण कराएंगे तो अपने बच्चों को हम सुरक्षित रख पाएंगे, उनको स्वस्थ रख पाएंगे
2: जी।
1: तो इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर सत्यवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू।
0: ये तो सुनी भैया ने बातचीत, क्योंकि जो बच्चों में टीकाकरण है वो कितना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखा जा है कि भाई चाहे वो गर्मी का टाइम है, चाहे वो सर्दी का टाइम है, जब भी हम बच्चों की ध्यान रखेंगे, टीकाकरण टाइम पर करवाओगे, तो आने वाली जो बीमारियां हैं, कुछ कुछ पेट के रोग हैं, तो उससे अपने जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रह पाओगे, तंदुरुस्त रह पाओगे। और टेम हो रहा है भाई रागनी का, तो भैया रागनी सुनवाओगे। गायक कलाकार इसमें रहेंगे बलबीर शास्त्री और उनके साथी।

ये तो सुनी बयान है रागनी बलबीर शास्त्री और उनके साथियों की गाई हुई। और भाई गर्मी का टाइम है, थोड़ा पानीपात का हम पिंडे ध्यान रखें, शरीर का ध्यान रखें, पानी की जो पूर्ति है उन्हें समय समय पर कर दी रहनी है ताकि जो शरीर में कोई दिक्कत ना आ पाओ। और भाई दिनचर्या के काम है सुबह शाम हम निपटावें, थोड़ा दोपहर में गर्मी से बचने की कोशिश करें। तो ये देख लें भाइयों घड़ी का नहीं, ग्रामीण संसार कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त हो रहा है। चल लेंगे सारे भाण भाइया ने, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण संसार कार्यक्रम आकाशवाणी का। ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रोहतक, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ पर, न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर। अब सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम। कार्यक्रम का आगाज़ कर रहे हैं अखियों की झरोखों से फिल्म के इस गीत के साथ। हेमलता की आवाज़ है, गीत संगीत रविंद्र जैन का।

अखियों के झरोखों से फिल्म से गीत हमने सुना, जिसमें आवाज़ें थीं हेमलता और शैलेंद्र के। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, अब आपको सुनवाते हैं किसकी बीवी फिल्म से गाना, आवाज़ आशाताई की है। सुधाकर ने इस गीत को रचा है और इसके लिए धुन बनाई विजय ने।

किसकी बीवी फिल्म से गीत हमने सुना आशा ताई की आवाज़ में। चलिए अब सुनते हैं बेताब फिल्म से गाना, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की, आनंद बख्शी के बोल हैं, आरडी बर्मन का संगीत है।

फिल्म संगीत कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं। आइए सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा गाना, जिसके लिए आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने, चांदनी फिल्म से।

साहिर के लिखे गीत के लिए धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाज़ किशोरदा की थी दाग फिल्म से। फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रही हैं आकाशवाणी रोहतक से। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अब सुनते हैं लम्हे फिल्म से गाना जिसे रचा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया शिवहरि ने, आवाज़ें लता मंगेशकर और ए हरिहरन की। लम्हे फिल्म से।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आइए सुनते हैं गोलमाल फिल्म से ये गीत, बोल हैं गुलजार की, संगीत आर डी बर्मन का।

इस गीत के बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुना रहे हैं सत्ते पे सत्ता। इस फिल्म से गाना किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ें हैं। गुलशन बावरा ने इस गीत को रचा है और इसके लिए संगीत बनाया आर डी बर्मन ने।

ये आवाज़ थी लता मंगेशकर की लोफर फिल्म से। आनंद बख्शी ने इस गीत को रचा था और इसके लिए तर्ज बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुने कार्यक्रम में आखिरी गाना। गहरा दाग फिल्म से हमने इसे लिया है। स्वर हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के, हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है।

ये थी आवाज़ें रफ़ी साहब और आशा ताई की गहरा दाग फिल्म से, और इस गीत के साथ ही संपन्न हुआ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी रोहतक से बोल रहे हैं, 8:25 हो चुके हैं। अब आइए सुनते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम। कलाकार हैं चंदन दास।

आकाशवाणी रोहतक से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत कार्यक्रम। आज कलाकार हैं चंदन दास। सुन रहे हैं इनके स्वर में कुछ गजलें।

इस गज़ल के साथ ही संपन्न हुआ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब समाचार प्रसारित होंगे, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेज़ी में। रिले कर रही हैं आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
4: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।
0: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
6: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ।
7: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
6: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बतूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को कराईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर न्यूज़ ऑन EIR और DTH पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 9:15 और 21 सेकंड हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है एक फिल्म से कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं होगी प्यार की जीत, इस फिल्म से कुछ गीत। आरंभ में सुनते हैं जसपिंदर नरूला और रूप कुमार राठौड़ की आवाज़ों में ये गाना।

0: उदित नारायण और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही संपन्न हुआ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम एक फिल्म से। आज की फिल्म थी होगी प्यार की जीत। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर पर। अब प्रस्तुत है हरियाणवी लोक गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम थारी पसंद।
1: थारी पसंद कार्यक्रम सुनने वाले सारे भाण भाइयों ने अशोक भाई की राम राम। भाइयों, इस कार्यक्रम में आपने सबसे पहले दो गाना सुनवाएंगे। गायक कलाकार रहेंगे वेद प्रकाश कौशिक अलीपुरिया और कुमारी परवीन। पसंद भेजनिया है करनाल ते संदीप, आशा, सुनीता और उनके परिवार के सदस्य। ये चिट्ठी आई है आदर्श गांव बलियाली जिला भिवानी ते। पसंद भेजनिया है दर्शन लाल बंसल, सुदेश रानी बंसल, प्रवीण कुमार बंसल, ममता रानी बंसल, कमल कुमार बंसल, गर्विश बंसल और तमन्ना बंसल। ये चिट्ठी आई है गांव चौधरी वास्ते और लिखने वाले हैं राजू अग्रवाल, केशव, दक्ष, विवेक, प्रयाग और प्रियांशी। बठिंडा रोड डबवाली ते ये हमारे श्रोता हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और उनके परिवार के सदस्य। गांव मटोर जिला कैथल ते ये हमारे श्रोता हैं रामदिया, नीलम्बोत, शिशाए, बोलान, अजय टाक, विजय टाक और तमन्ना। गांव मटोर जिला कैथल ते ये हमारे श्रोता हैं रामदिया और नीलम बोत। चंडीगढ़ ते ये हमारे श्रोता हैं सतीश अनेजा, बिमला अनेजा और उनके परिवार के सदस्य। और ये चिट्ठी आई है हनुमानगढ़ राजस्थान ते। लिखने वाले हैं रजाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खां, इरफान खां, साहिल खां और जिशान खां। तो सुने भाई ये दो गाना वेद प्रकाश कौशिक अलीपुरिया और कुमारी परवीन का गायो।

भाई यान दो गाना सुने और अगली रागनी सुनवाएंगे आपने सुनील दुजानिया और उनके साथियों की गाई और पसंद भेजनिया है गांव मोई उड़ा ते संदीप प्रमोद नंबरदार जगदीश भगत राम और निशांत शर्मा गांव बुटाना ते ये हमारे श्रोता हैं महावीर सुरेश भरते रामकर्ण सुधीर आजाद और सुरेंद्र शर्मा गांव बिचपड़ी ते ये हमारे श्रोता हैं बलीराम पुनिया निरंजन जयपान पुनिया सुल्तान सिंह पुनिया और पंडित

ईश्वर सिंह भारद्वाज। गांव जाक्षी ते ये हमारे श्रोता है ओम बीरवत्स, रामबीर, राम स्वरूप और बलवान सिंह। गांव शिवानका ते ये चिट्ठियाँ और लिखण वाले हैं रामबीर बैरागी, विष्णु दिलबाग नंबरदार और उनके परिवार के सदस्य। सामड़ी ते ये हमारे श्रोता हैं डॉक्टर ओम प्रकाश, सुकंतला शर्मा और श्रीकांत शर्मा। और दौड़ ते ये चिट्ठियाँ और लिखण वाले हैं मास्टर रघुवीर शर्मा, श्री राम चैल और उनके परिवार के सदस्य। तो सुने भाई रागनी सुनील दुजानिया और साथियों की गायी। और

भाईजान रागनी सुनी, गायक कलाकार थे सुनील दुजानिया और उनके साथी। अगली रागनी आपने सुनवावांगे गायक कलाकार रहेंगे ओम प्रकाश और उनके साथी। पसंद भेजनिया है जुलाणी ते सतबीर बलवान रामचंद्र और उनके परिवार के सदस्य। बोर ते ये हमारे श्रोता हैं बब्बल जयप्रकाश रामपाल बजरंग रामरति फूल सिंह धीरू और रामबीर। जजर ते ये हमारे श्रोता हैं कश्मीर अनिल भूप सिंह रणबीर सतपाल दिलीप सिंह और जोरा सिंह। जोजू कलाते हैं ये हमारे श्रोता हैं राजेंद्र सिंह कमलेश सुल्तान प्रदीप मांगेराम और पालीराम। लुधेसर ते ये हमारे श्रोता हैं पप्पू राम घाट संतोष देवी लक्ष्मी देवी प्रियंका साक्षी और रुचिका देवी। तो सुनो भाई रागनी ओम प्रकाश और उनके साथियों की गायी उठ।

भाइयों ईब आपने एक हरियाणवी फिल्म में म्हारा पीर सासरा का गीत सुनवाएंगे और इसमें गायक कलाकार रहेंगे हेमलता और उनकी सखियां। पसंद करनिया है गांव अजायब ते सूबेदार मामन सिंह, सावित्री देवी, ऋषभ देव, ऋषि देव, नरेंद्र वीरेंद्र, दविता, अंजलि, टिया, सागर और सार्थ। बहनी बहरो तो ये हमारे श्रोता हैं ताराचंद, धीरा सिंह, महावीर, राम निवास, आजाद सिंह, चांदी राम, अभिषेक और अंजलि। मदीना ते ये चिट्ठिया और लिखण वाले हैं कृष्ण कुमार, आशा, हार्दिक, नीरज, नैतिक और स्नेहा। और खेड़ी दौलतपुर ते ये हमारे श्रोता हैं प्रीत सिंह, बिंटू, संजय कुमार, बिल्लू, जग्गा, बोखा, सुंदर और सुरेंद्र सिंह। तो भाई सुनो ये हरियाणवी फिल्म म्हारा पीर म्हारा सासरा का ये गाना, गायक कलाकार हैं हेमलता और उनकी सखियां।

भैया ने हरियाणवी फिल्म का गाना सुने, गायक कलाकार थी एम लता और उनकी सखिया। और भाइयों ईव आपने रागनी सुनवावांगे सूरज भान गंगानिया और उनके साथियों की गाई उड़। पसंद भेजनिया है शाहपुर जिला झज्जर ते नेत्रपाल लक्ष्मी राजीव तन्नू लोचब हिमांशु लोचब सुमन और प्यारी देवी। सोनीपत ते ये हमारे श्रोता हैं रामकिशन रणजीत नरेंद्र सोनू धीरज और सुरेश। खरकड़ी हिसार ते ये चिट्ठिया और लिखण वाले हैं बागाराम पवन कुमार पंकज रमेश शमशेर दिनेश सुभाष और अमरजीत। राम कॉलोनी करनाल ते ये हमारे श्रोता हैं राजेश नरेश सुरेश सतबीर और मनप्रीत। शिशाय इशार ते ये चिट्ठिया और लिखण वाले हैं अनूप दिनेश बलवान बाली चमन रणधीर और सुरेंद्र व दीपांशु। तो सुनो भैया रागनी सूरज भान गंगानिया और उनके साथियों की गाई उड़।

भाइयों रागनी सुनी, गायक कलाकार थे सरोजवान गंगानिया और उनके साथी। और भाइयों अगली रागनी आपने सुनवाओगे, गायक कलाकार रहेंगे जगबीर सिंह बलंबिया और उनके साथी। पसंद भेजनिया है गांव गादी जनपद बागपत उत्तर प्रदेश से काशीराम दलाल, बलदेव सिंह आर्य, रामपाल, दयानंद, धर्मवीर, नितिन, अर्पित, हरिओम, ओमपाल, सन्नी, निमेश, अनुज और रिडकुमल। काठा ते ये हमारे श्रोता हैं तेजपाल, राजेंद्र सिंह, जोगेंद्र सिंह, सतबीर सिंह, विकास, विशाल और उनके परिवार के सदस्य। छापरौली उत्तर प्रदेश से ये एक और चिट्ठी आई और लिखने वाले हैं जसवंत सिंह खोकर, राम कुमार, अनिल, सुनील कुमार, प्रवीण, सुमित, विनीत, सचिन, मोक्ष खोकर, तनुज खोकर व खोकर परिवार। और ढिकाणा ते ये हमारे श्रोता जयपाल तोमर, जय कुमार, रोहित, मोहित, आयुष, आरव, सूरज कला और तोमर परिवार। तो वह सुनो ये रागनी जगबीर सिंह बलंबिया और साथियों की गायी उठ।

भाइयों, कार्यक्रम के आखिर में आपने रागनी सुनवांगे, रणबीर सिंह बड़वासनिया और उनके साथियों की गाई उठ पसंद भेजनिया है गिड़काली मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। ये हमारे श्रोता है सुरेश पहलवान, कृष्ण पाल डबास, अनुज डबास, राजेंद्र, अजय डबास, नीटू और विनोद डबास, फ्रेंड्स कॉलोनी कैथर ते। ये हमारे श्रोता है रामपुर मान, रामधारी मान, पाला राम, इंद्र सिंह मान, अनिल मान, प्रवीण व दलजीत मान और उनके परिवार के सदस्य। खुशीराम कॉलोनी इसराना पानीपत ते। ये हमारे श्रोता हैं रमेश जागलान, लोकेश जागलान, सिंह राम, चरण सिंह जागलान, मास्टर राम मीर और उनके परिवार के सदस्य। गांव पांडू पिंडारा जिला जींद ते। ये हमारे श्रोता हैं बादल सिंह गिल, कमलेश रानी गिल, टीनू, डॉक्टर अंकित गिले, डॉक्टर वाणिका, पंडित जगदीश, राम भक्ति और जय भगवान। बड़बूजी सागर मध्य प्रदेश से ये हमारे श्रोता रघुनाथ, सुषमा, बबीता, ममता, विनोद, विशाल और ओम प्रकाश। आदर्श नगर मलोट पंजाब से ये हमारे श्रोता हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, सौरभ व उनके परिवार के सदस्य। और गांव कुंगड़ते हैं धर्मवीर, राधे श्याम, राम स्वरूप, धारी राम, मांगे राम और दनपत। तो सुनो भाई रागनी रणबीर सिंह बड़वासनिया और साथियों की गायों।

0: भाईजान रागनी सुनी, गायक कलाकार थे रणबीर सिंह बड़वासिया और उनके साथ थे। और भाईओ ईब घड़ी कहना देख लो, कार्यक्रम का समय हो रहा समाप्त। अशोक भाई ने इजाजत दो, सारे बाण भाइया ने राम राम।
1: आप सुन रहे थे थारी पसंद कार्यक्रम आकाशवाणी का, ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1100

मनचाही गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। संतोष शिखावत की ओर से आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी की चिट्ठियों का भी कार्यक्रम में स्वागत है। और शुरुआत कर रहे हैं इस गीत के साथ, आरजू फिल्म से हमने इसे लिया है। रफ़ी साहब की आवाज़ है, हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है। और फरमाइश आप सभी की है। आप हैं फतेहाबाद से बिट्टू मोहरवाला, गगन अमरपुरी, युवराज और भुविन, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनवर और वैशाली कटनवर का खत हमें मिला है। अमरावती से चिट्ठी लिख भेजते हैं कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, साइलिया, शोएब खान, मुस्तबा खान, रऊफ भाई और शाहिद। हिसार से आप हैं राजेंद्र सैनी और राहुल सैनी। बेमेतरा से सुरेश सारथी और पूर्णिमा सारथी भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। काकरौली महाराष्ट्र से आप हैं उत्तम जमधाड़े, स्वराज जमधाड़े, स्वरी पोपलवाड़, संघर्षा और संविधान हेगड़े।

प्रभु जी, आगरा मध्य प्रदेश से आप हैं रघुनाथ मालवीय भवरबाई, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, दुर्गा, श्यामबाबू, भावना, मधुबाला, मिलन, उमंग, आयुष और ओम प्रकाश। चर डोंगरी बिपरिया मध्य प्रदेश से दुर्गा राम साहू। चरखी दादरी से आप हैं जगनीश सांगवान। करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन, ईशप्रीत शर्मा, सोनिया, कालका, बिपाशा शर्मा, नरेंद्र तनेजा, मीनाक्षी तिवारी, किरण ठाकुर, जग्गी दुआ और प्रेमलता। बागपत यूपी से एहसान अली। सच्चा खेड़ा से आप हैं वेद बिहारी। कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा, प्रियंका, पूजा, लीलू, रितु सिंह और ऋषभ सिंह। मटोर ज़िला कैथल से आप हैं रामदिया, नीलम, अजय, विजय, तमन्ना, पायल, रामपल और धर्मवीर। डोंडी लुहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर, तामुरिया, आरती, तुषार, डोली, पूजा, डॉली, पूजा और प्रभा देवी तामुरिया। आप सभी श्रोता सुनना चाहते हैं दो बदन फिल्म से आशाताई की आवाज़। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा है और इसके लिए धुन बनाई है रवि ने।

ये गीत हमने अदालत फिल्म से सुना। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, आपको सुनवाते हैं दर्पण फिल्म से गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ है, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। और सुनवा रहे हैं आप सभी की फरमाइश पर, आप हैं कोंडागांव छत्तीसगढ़ से सुभाष चक्रधारी, कविता मुस्कान और अनुष्का चौधरी। सालर पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मेहरुद्दीन, बेसरुद्दीन और नजमुद्दीन। भिलाई छत्तीसगढ़ से आप हैं।

अशोक, श्याम, कुंवर, दीपक, प्रमिला और ज्योति बिसलपुर पीलीभीत से खत लिख भेजती हैं। बिमला वर्मा, नीतू वर्मा और प्राची वर्मा, बसंत बिहार से शरीफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, असलम अकरम, अल्फाज अंसारी, चुहलदा से आप हैं संजय ढींगिया, नमन, मुस्कान और कुणाल, और आप हैं दुल्हापुर मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, कार्तिक और बलबीर सिंह।

दिल तुझको दिया, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत आइए सुनते हैं। आवाज़ है लता मंगेशकर की, पसंद आप सभी की है। आप हैं आदर्श नगर मलोड से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी, सौरभ, शाइना और निवान शर्मा। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप, राजेश, राशि और शीतल। चंडीगढ़ से आप हैं सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। रोपड़ पंजाब से हरदीप, मीका, बलविंदर विरक, जैतेक विरक और मीका विरक। गांव बलियाली से दर्शन लाल बंसल, सुदेश रानी बंसल, प्रवीण कुमार, ममता रानी, कमल कुमार, गर्वीश और तमन्ना बंसल हैं इनके साथ। और आप हैं मोहला हिसार से राजकुमार, गीता, अमन और सानिया।

दिल तुझको दिया फिल्म से गीत हमने सुना। आवाज़ थी लता मंगेशकर की और इस गीत के साथ ही संपन्न हुआ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम मनचाहे गीत।

0: आप सुन रहे थे मन चाहे गीत कार्यक्रम आकाशवाणी का। ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर पर। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचार होंगे पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में, रिले कर रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये बात कही।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। NIA के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के CCTV फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Kiran Jha. The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Nilokar. Census Commissioner, along with the former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1, in the Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty, but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in a process of installing anti-drone system within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sanchu border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said, while threats originating across the border remains crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country.
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार
4: द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू रोल आउट एंटी ड्रोन सिस्टम फॉर ड्रोन्स एंड सिमिलर एरियल थ्रेट विद इन द नेक्स्ट 6 months. हाउएवर सिंस दीज ड्रोन्स इवेंचुअली लैंड ऑन इंडियन टेरिटरीज वी मस्ट रिमेन हाईली विजिलेंट अबाउट दोज हु मे यूज द मटेरियल्स कैरिड बाय देम फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज इफेक्टिव न्यूट्रलाइजेशन विल रिक्वायर स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन विद सिविल अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस अलॉन्ग विद प्रॉम्प्ट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन एट एवरी लेवल
2: परिणाम लक्षी कार्यवाही ही भी हमने करनी पड़ेगी।
3: Mr. Shah said strict legal action should be taken against those involved. He stressed that since the drones land in the Indian territory, close coordination with the local police and civil administration is essential to identify those receiving such consignments and to neutralize the threats effectively. External Affairs Minister Dr. S. J. Shankar chaired the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and U.S. Secretary of the State Marco Rubio attended the meeting. Addressing a joint press conference after the meeting, Dr. S. J. Shankar emphasized on further strengthening cooperation among the Quad nations in addition to assisting others. He said that the Quad nations are open societies who foster innovation and creativity in the quest of growth for prosperity. He also laid emphasis on zero tolerance for terrorism. Foreign Affairs Minister of Australia Penny Wong today called on Prime Minister Modi in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi discussed the growing India-Australia comprehensive strategic partnership in areas such as defence, trade, technology and ensuring supply chain resilience. The Prime Minister said India and Australia will work together to continue for the work for free, open, secure and prosperous Indo-Pacific. The Ministry of Railway has given its nod to start operations of the country's first hydrogen-powered 10-coach demo train. It will run at a maximum speed of 75 km per hour between Jind and Sonipat under the Northern Railway Zone. The train will use hydrogen fuel cells to generate power instead of diesel or electricity-based traction. The government has revised the minimum assured procurement price MAPP of onion stocks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. In IPL cricket, Royal Challengers Bangalore have set a target of 255 runs against Gujarat Titans in qualifier 1 in Dharamshala. In reply, Gujarat Titans were 106 for 8 in 12.4 overs when reports last came in. And Gujarat Titans won the toss and elected to bat. And that's the end of the news bulletin.
0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 और 8 सेकंड हो चुके हैं। इसी के साथ संपन्न होते हैं हमारे आज के प्रसारण। कल प्रातः 5:55 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। शुभ रात्रि। जय हिंद।